सुप्रभात। एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के बैसाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन

0: ये आकाशवाणी देहरादून है, प्रातः के 6 बजने को है। श्रोता सुने समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: भी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिसबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
2: सामान्यतः अध्यात्म का अर्थ आस्तिकता होता है। आस्तिकता का अर्थ होता है ईश्वर पर विश्वास, और ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है परम सत्ता का अस्तित्व मानना। यह परम सत्ता न्याय करने वाली, सर्वव्यापक और कर्मफल के अनुसार व्यक्ति को उत्थान पतन की प्रति भी प्रेरित करती है। वहीं अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है आत्मा से संबंध, आत्मा परमात्मा संबंधी विचार, आत्मबोध आदि। ईश्वर तत्व की प्राप्ति होने पर व्यक्ति चेतन व सहज हो जाता है, क्योंकि वह अविनाशी सनातन और परम सत्ता का ही अंश है। व्यक्ति का अध्यात्म से संबंध होते ही चित्त की

0: चंचलता समाप्त हो जाती है, बुद्धि पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाती है और काम क्रोध मोह लोभ आदि मनोविकारों से मुक्ति मिल जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जित होते ही व्यक्ति का अंतःकरण निर्माण दृढ़ संकल्प से युक्त सात्विक और देवत्व के गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। मानव जीवन प्रभु की करुणा से समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठतम उपलब्धि है। अध्यात्म मानव जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने की वह वैज्ञानिक पद्धति है जो व्यक्ति को आनंद, संपन्नता, समृद्धि, सुख और शांति प्रदान करता है। लेकिन भ्रमवश अध्यात्म का सही अर्थ न जानने वाले कुछ लोगों का मानना है कि लौकिक जीवन में अध्यात्म का कोई महत्व नहीं है और यह विषय तो योगियों और ऋषियों से ही संबंधित है, पर आध्यात्मिक विज्ञान ही व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। अध्यात्म आत्मशक्ति को प्रकट करता है और आत्मशक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन में सुख व खुशियां लाता है। अध्यात्म का अभिप्राय मात्र पूजा अर्चना नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत सभी शक्तियों व सद्गुणों का समावेश किया जाता है। अध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को मजबूत बना सकता है और आत्मशक्ति से ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अध्यात्म केवल आत्मशक्ति ही प्रबल नहीं करता, बल्कि यह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी सुदृढ़ करता है। स्वयं को आध्यात्मिक मनोदशा में रखकर एकाग्रता से इस पर चिंतन किया जाए तो आत्मशक्ति से कठिन कार्य को सहजता से परिपूर्ण किया जा सकता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन आध्यात्म का अर्थ, वाचन स्वर था कल्पना पंकज का। ये आकाशवाणी देहरादून है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना मातृवंदन के साथ।

वंदना के साथ। हर नई सुबह की पावन आभा में, हर सुर, हर शब्द, हर प्रार्थना में हम निरंतर जिनका सुमिरन कर रहे हैं, ऐसे ओम के स्वरूप, सृष्टि के आदि, स्वर, बुद्धि, शुभता और मंगल के प्रतीक गणपति को हमारा नमन है।

जब जीवन की राहें थका दें, जब मन उत्तर खोजते खोजते मौन हो जाए, तब हृदय से एक ही आवाज आती है, हे प्रभु, मेरे प्रभु। क्योंकि आप ही करुणा के सागर हैं, हमारे मन की रिक्तता को आप अपनी दया प्रेम से भर दीजिए। प्रभु, आपकी दया का एक कतरा भी जीवन में उजियारा सूने मन के हर कोने को प्रेम से सराबोर कर देता है। हमने स्वयं को आपके चरणों पर समर्पित कर दिया है।

भोले भंडारी भाव के भूखे हैं, सच्चे मन से पुकारो तो दुख की कैसी भी धूप हो शिव छाया बन जाते हैं। महादेव नाम में ही ऐसी शांति छिपी है कि जो हर मन को विश्वास देती है कि शिव शरण में सब मंगल ही मंगल है।

जीवन में कभी राग मिलता है तो कभी शोक मिलता है, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी दुखों की छांव भी होती है। लेकिन जो मन भक्ति की डगर पर चल पड़ता है वो हर मोह माया से ऊपर उठकर अंदर की शांति को पा लेता है। और जिसके मन में सतगुरु नाम का दीपक जल गया उसका जीवन मंदिर बन जाता है।

श्रोताओं, इसी शब्द के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है और विश्वास रखिए, स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित करना ही सच्ची भक्ति है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम अयोध्या वासियों को मानव तन प्राप्त करने के सौभाग्य और फलाफल का उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नौका के समान है। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भवसागर पार न कर पाए वो महाकृतघ्न और मूर्ख होता है। हे नगरवासियों, इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भक्ति के सुलभ मार्ग का अनुसरण करो। ज्ञान का मार्ग कठिन होता है, उसे सहज ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति का मार्ग अपेक्षाकृत सहज होता है, किंतु संत समागम के बिना इसकी साधना नहीं हो पाती। बड़े पुण्य अर्जित करके संतों की संगति मिलती है और पुण्य अर्जित करने का साधन है कपट त्याग कर मन वचन और कर्म से उनकी सेवा करना जो पूज्य हैं, जिनके चरण वंदनीय हैं। प्रजाजन के सम्मुख श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, देवाधिदेव महादेव का भजन किए बिना मनुष्य मेरा भक्त नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग में न तो यज्ञ और जाप की आवश्यकता है और न ही तप और उपवास की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर और उत्तरा केलकर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का।

आज सुबह 11:10 पर श्रोता सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

प्रातः 7:30 पर शैल संगीत में आज श्रोता सुनेंगे गणेश दत्त कांडपाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। प्रातः 8:30 पर सूचना परक कार्यक्रम होगा नमस्कार देहरादून। सदाबहार फिल्मी गीत हमारे श्रोता सुनते हैं सुबह 9 बजे और सुबह 9:45 पर श्रोता सुनेंगे डॉक्टर योगेंद्र सिंह से संकल्प मिश्रा की बातचीत सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत। बातचीत का विषय रहेगा हाइपरटेंशन कारण लक्षण एवं उपचार। और सुबह 10:35 पर श्रोता सुनेंगे

आज दोपहर 12:12 पर श्रोता सुनेंगे सुगम संगीत में योगेश खेतवाल के गाए भजन। दोपहर 12:30 पर घर गृहस्थी कार्यक्रम होगा, जिसमें बहनें सुनेंगी भेंट वार्ता एडवोकेट सृष्टि तिवारी से। विषय रहेगा महिलाओं के लिए विभिन्न कानून। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 1:30 पर।

अपराह्न 4:02 पर शास्त्रीय संगीत में आज श्रोता सुनेंगे पंडित कुमार बोस से लक्ष्मी ताल और रूपक ताल में तबला वादन। सायं 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। सायं 5:45 पर पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम होगा ग्राम जगत और सायं 7 बजे किसान साथी सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत।

सायं 7:50 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय एकांश देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण। रात्रि 8 बजे हिंदी वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आनंद मणि त्रिवेदी और वार्ता का विषय रहेगा सरस्वती से सोशल मीडिया तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रासंगिकता। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत में श्रोता सुनेंगे विविध कलाकारों के गाए गीत। रात्रि 10 बजे शेरी नशिस्त

0: श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप समाचार सुने।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य

0: पुनर्निर्माणस्य पञ्चसप्ततिः वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ऐषमः श्रीसोमनाथ अमृतपर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्रीसोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मन्त्रिमण्डले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्, अन्नपूर्णा भण्डारः, राज्य सर्वकारीय कर्मचारिणां कृते सप्तम वेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्य विषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षी अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतन सर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचितः श्री हिमन्त शर्मा गठबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हिमन्त बिश्वशर्मणे नूतन मन्त्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिननवीन इत्यादयः भागं गृहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभाभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमन्त बिश्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्री

परिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नबन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत अलग रखा जाएगा। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समयानुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमरीका के नागरिकों के आज पहुंचने की उम्मीद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वो नेटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचायेव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरों के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे सकता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया था। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्ररागिणी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। अब श्रोता सुने उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉट मिक्स प्लांट को प्रशासन ने सील कर दिया। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मई तक जारी रहेगी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश की संभावना, कहीं कहीं आंधी तूफान की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र के झीमार में अवैध रूप से संचालित हो रहे हॉट मिक्स प्लांट पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्लांट को सील कर दिया है। संयुक्त निरीक्षण टीम को जांच के दौरान कई अनियमितताएं मिली, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीनों से प्लांट का संचालन बिना आवश्यक अनुमति के किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण और सुरक्षा को खतरा बताते हुए इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। मामला मुख्यमंत्री पोर्टल तक पहुंचने के बाद प्रशासन, खनन विभाग और संबंधित अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में प्लांट के पास संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमति नहीं थी। साथ ही चिमनी निर्धारित मानकों से कम ऊंचाई पर पाई गई और परिसर के चारों ओर नियमानुसार 4 दीवारी भी नहीं पाई गई। खनन अधिकारी राहुल नेगी ने बताया कि नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्रशासन ने प्लांट को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है।
2: इसमें मौके स्थल पर पाया गया कि इनके द्वारा सीटी

0: सीडीए की परमिशन नहीं ली गई थी और पोर्टल भी नहीं खोला गया है करंट विभाग से, जिस कारण से इसको अवैध मानते हुए इसको मौके स्थल पर सीज किया गया। ये मगरेतर कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब पर इसमें स्थित रिपोर्ट दी जाएगी। कब तक प्लांट बंद रहेगा?
1: चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि संबंधित एजेंसी एवं प्रशासन की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए सड़क से मलबा हटा दिया है और यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। उन्होंने यात्रियों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नई टिहरी में उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा बहुउद्देश्य विधिक सेवा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नगर पालिका परिषद सभागार में आयोजित इस शिविर में आमजन को निःशुल्क कानूनी सहायता, सरकारी सेवाओं की जानकारी एवं विभिन्न प्रमाण पत्रों की सुविधा उपलब्ध कराई गई। एक रिपोर्ट।
2: कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति आलोक महरा उपस्थित रहे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि शिविर का उद्देश्य न्याय को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवाएं केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है बल्कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और श्रम विवाद जैसे मामलों में भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। शिविर में राजस्व, कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और शिक्षा तथा पशुपालन सहित कई विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान आय, जाति, दिव्यांग एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण किया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
1: उद्योग विभाग राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी से देहरादून में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान कर्मचारी प्रतिनिधियों ने स्थानांतरण, पदोन्नति, मृतक आश्रित नियुक्ति और संविदा कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर श्री चौधरी को मांग पत्र सौंपा। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कर्मचारियों की समस्याओं और सुझावों को सुनते हुए कहा कि सभी मामलों का नीतिगत और न्यायोचित तरीके से समाधान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। श्री चौधरी ने कहा कि कर्मचारी किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुन रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो चुकी है और 24 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि छात्र आवेदन पत्र 20 मई तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 24 मई तक का समय दिया गया है। श्री सिमल्टी ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को परीक्षा सुधार में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जबकि 12वीं में 1 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र अंक सुधार परीक्षा दे सकते हैं। बागेश्वर जिले की सुंदरडंगा घाटी में स्थित 15,092 फीट ऊंचे कनकाटा दर्रा को युवा ट्रैकर्स की एक टीम ने 3 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा किया। यह दर्रा सुंदरडंगा घाटी के कठिन और रोमांचक ट्रैकों में माना जाता है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों, बर्फ से ढके ट्रैक और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद दल ने यह अभियान पूरा किया। ट्रैक के दौरान खराब मौसम ने भी मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन टीम ने संयम और आपसी तालमेल के साथ यात्रा पूरी की। माउंटेन गाइड और अभियान दल के लीडर जीतू दानू ने बताया कि सुंदरडुंगा क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता इस ट्रैक को खास बनाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान युवाओं को एडवेंचर टूरिज्म की ओर आकर्षित करने के साथ पर्वतीय क्षेत्रों को नई पहचान भी दिलाते हैं।

0: इसमें 3 कनाकाटा पास पूरा, और एक जो हमारे वो सुखराम से वापस आए उसी रूट से वापस आए, और इसमें पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सेफ्टी गियर हमारे पास उपलब्ध था। और इसको हमें पूरा करने में जातुली से जातुली 3 दिन लगे, 5 तारीख से ये शुरू किया था हमने और 7 तारीख को कंप्लीट हो गया था ये हमारा।
1: पौड़ी जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी शांभवी रौथार ने बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 19 मिक्स डबल वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर एशिया बैडमिंटन ट्रायल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शांभवी ने अंडर 19 मिक्स डबल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। बेंगलोर में हुई ऑल इंडिया जूनियर अंडर 19 रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में शांभवी रौथाण व उनके साथी खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रियंका वालदिया और बाल प्रणय प्रगाड़ा को हराया। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। देहरादून से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री के देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का संयम से इस्तेमाल करने की अपील की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, पेट्रोल, डीजल व गैस का संयम से करें इस्तेमाल। इसी खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, देश हित में साल भर सोना ना खरीदें, पेट्रोल बचाएं। अमर उजाला ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है, पश्चिमी एशिया संकट, प्रधानमंत्री का देशवासियों से आग्रह, कोविड काल जैसे उपाय अपनाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हॉट मिक्स प्लांट का प्रशासन ने सील किया। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मई तक जारी रहेगी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश की संभावना, कहीं कहीं आंधी तूफान की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन प्रवाहन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम शैल संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं गणेश दत्त कांडपाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आया कि
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि आज सुबह 11:10 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रभास पाटन सोमनाथ गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधन का सजीव प्रसारण। समय याद रखेगा सुबह 11:10।
1: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
2: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
1: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
1: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
0: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
1: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: श्रोताओं, शैल संगीत कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं गणेश दत्त कांडपाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत। आइए कार्यक्रम का समापन भी करते हैं इन्हीं के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: श्रोताओं, शैल संगीत कार्यक्रम में आज आपने सुने गणेश दत्त कांडपाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत। इसी के साथ शैल संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। प्रातः के 8 बजने को है अब कुछ ही पलों में आप समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सुजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
2: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
2: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
5: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
9: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
2: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
10: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने जाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
11: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलियश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगबा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
2: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
12: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदे, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister Modi to participate in Somnath Amrit Parv in Gujarat today to also inaugurate Sardar Dham Hostel in Vadodara. Assam Governor invites Hemant Biswa Sarma to form new government in the state. Uttarakhand administration urges Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain alert and travel safely amid adverse weather conditions. US President Donald Trump rejects Iranian response to US peace proposal as totally unacceptable. And in football, India to take on host China in crucial quarterfinal match in AFC Under 17 Women's Asian Cup in Suzhou today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens not to buy gold for a year, reduce fuel consumption and conserve foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a gathering in Hyderabad, Mr. Modi called for revival of work from home practices. The remarks come against the backdrop of record high fuel prices in many nations. The Prime Minister's appeal come at a time when global crude oil prices have surged due to escalating tensions in West Asia and disruptions around the Strait of Hormuz.
14: Ek zamana tha jab sankat aata tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai lekin desh hit mein humko ye tay karna padega ki saal bhar tak घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
13: The Prime Minister also appealed to citizens to rethink discretionary spending as the country faces economic pressure from rising global energy costs. PM Modi also asked citizens to reduce edible oil consumption and urged farmers to cut dependence on chemical fertilizers imported.

नमस्कार देहरादून श्रोताओ, आज के नमस्कार देहरादून के इस अंक के साथ मैं आपकी अपनी रेडियो सखी श्रुति शर्मा लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम। श्रोताओ, हर नई सुबह हर किरण अपने साथ उम्मीदों का उजाला लेकर आती है। बीती बातों को पीछे छोड़कर जब हम मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करते हैं तो जीवन भी नए रंगों से भर उठता है। ऐसे ही आज की सुबह है जिस दिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हमारे सभी श्रोताओं को इस सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ की सभी श्रोताओं को समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओ, आस्था, इतिहास और पुनर्जागरण का प्रतीक सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति की अद्भुत पहचान है। समुद्र तट पर स्थित यह पावन ज्योतिर्लिंग मंदिर सदियों से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहा है। अनेक आक्रमणों और कठिनाइयों के बाद भी सोमनाथ मंदिर बार बार पुनर्निर्मित होकर भारत की अटूट आस्था और आत्मबल का प्रतीक बना है। आज के दिन 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इस ऐतिहासिक स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर केवल एक मंदिर का उत्सव नहीं मनाया जा रहा है बल्कि सांस्कृतिक संस्कृति धैर्य और पुनर्जागरण की भावना का भी ये उत्सव है। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। ये मंदिर श्रद्धा, साहस और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आगे बढ़ाया गया। सोमनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का वो प्रकाश है जो हर कठिनाई के बाद और अधिक उज्जवल होकर सामने आया। 75 वर्षों की ये यात्रा हमें सिखाती है कि आस्था और संस्कार कभी पराजित नहीं होते। सोमनाथ यानी स्वयं महादेव का वो दिव्य स्वरूप जहां आस्था समुद्र की लहरों की तरह अनंत दिखाई देती है। सोम का अर्थ है चंद्रमा, नाथ अर्थात स्वामी यानी चंद्रदेव के आराध्य भगवान शिव। चंद्रमा ने यही भगवान शिव की तपस्या कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था, तभी से शिव सोमनाथ कहलाए। श्रद्धा, शक्ति और सनातन संस्कृति का ये जीवंत प्रतीक है। समुद्र किनारे विराजे शिव यह ज्योतिर्लिंग मानो हर भक्त से कहता है, समय बदल सकता है, युग बदल सकते हैं, लेकिन विश्वास अमर रहता है।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओ, आइए अब जानते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि लोग पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से इस्तेमाल करें। पीएम बोले कि एक वर्ष विदेश यात्रा न करें और न सोना खरीदें। ये समय की मांग है, इसे वैश्विक संकट के समय लेने होंगे कुछ संकल्प। श्रोताओं, मौसम को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा में सावधानी बरतें श्रद्धालु। 12 और 13 मई को वर्षा के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की। लिपुलेख दर्रे से 6 साल बाद होगा भारत व चीन के बीच व्यापार। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के रास्ते 6 वर्षों बाद भारत चीन सीमांत व्यापार फिर से शुरू होने जा रहा है। केंद्र से अनापत्ति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रविवार को गढ़वाल राइफल्स में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि गढ़वाल राइफल्स का नाम सुनते ही दुश्मन कांपता है। 139 सालों की यह रेजिमेंट देश की ढाल बन गई है। रेजिमेंट ने हर युद्ध में शौर्य की नई इबारत लिखी है। और अब मौसम पर एक नजर। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। पर्वतीय जिलों में बादलों का घेरा बना हुआ है, साथ ही वर्षा के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज धूप खिलने के बावजूद तापमान सामान्य से कम बना हुआ है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन थोड़ी उमस महसूस की जा रही है। सोमवार आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहने और वर्षा और ओलावृष्टि के आसार हैं। तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे, मौसम संबंधी जानकारी लेकर ही घर से निकलें और जरूरी हो तो ही घर से बाहर जाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है।

श्रोताओं, अब कुछ बातें इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्ने में 11 मई का इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले कल की प्रेरणा भी है। 11 मई हमें साहस, विज्ञान, स्वतंत्रता और नवाचार की शक्ति का एहसास भी कराता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हौसला, ज्ञान और देश प्रेम तीनों का होना जरूरी है। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास की प्रमुख घटनाएं। 11 मई 1857 को दिल्ली में सिपाही विद्रोह भड़क उठा। 1857 को ही स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान 11 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों से दिल्ली पर कब्जा ले लिया था। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन आज ही के दिन किया था। 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का राष्ट्रपति चुना गया और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान लिया था। आज ही के दिन 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए। इसके विषय में हम आगे भी विस्तृत बातचीत करेंगे। भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए, जिसमें परमाणु शक्ति वन का सफल परीक्षण भी शामिल था, जिसका नेतृत्व डॉ एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। श्रोताओं, ये थी कुछ इतिहास के पन्नों से जानकारी। आइए अब आपका करते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं ये गीत परमाणु फिल्म से।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: श्रोताओ, आज भारत ने विश्व के इतिहास में 11 मई की तारीख को यादगार बना दिया। कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए इसे याद किया जाता है, लेकिन भारतीय विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इस दिन का विशेष महत्व है। देश में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान को सम्मान देना तथा देश के वैज्ञानिकों की सोच को प्रोत्साहित करना है। इस दिन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1998 से जुड़ी है, जब भारत ने पोखरण 2 के तहत राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में सफल परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 11 और 13 मई 1998 को किए गए कुल 5 परमाणु परीक्षणों ने भारत को वैश्विक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह अभियान बेहद गोपनीय तरीके से पूरा किया गया। बताया जाता है कि दुनिया की बड़ी खुफिया एजेंसियां और उपग्रह निगरानी तंत्र भी इसकी भनक नहीं लगा सकते थे। परीक्षण की सफलता के बाद वाजपेयी जी ने देश को संबोधित करते हुए भारत के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की घोषणा की थी। इन परीक्षणों में पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की

भूमिका भी बेहद अहम रही। उन्होंने परीक्षणों की सफलता की पुष्टि की और बाद में कलाम ने कहा कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी था, लेकिन भारत ने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इसी दिन भारत ने स्वदेशी विमान हंसा 3 का भी सफल परीक्षण किया था और त्रिशूल मिसाइल परीक्षण में भी सफलता प्राप्त की थी। इन उपलब्धियों को देखते हुए वाजपेयी सरकार ने 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस घोषित किया। इस अवसर पर वाजपेयी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया, जो आज भी भारत की वैज्ञानिक प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जाता है। भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह देश वैज्ञानिकों की उपलब्धियों, उनकी तकनीकी प्रगति और नवाचारों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करना इस दिवस का महत्व है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान को सम्मान देना है, आत्मनिर्भर भारत और नवाचार की भावना को मजबूत करना है, नई तकनीकों के माध्यम से देश के विकास को गति देना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रौद्योगिकी केवल मशीनों का संसार नहीं है, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति है। जब विज्ञान मानवता के साथ जुड़ता है, तब विकास की नई राहें खुलती हैं। आज का दिन हमें विश्वास दिलाता है कि ज्ञान, शोध और नवाचार से भारत हर चुनौती को अवसर में बदल सकता है। कलम से कंप्यूटर तक, रेडियो से रॉकेट तक, भारत की सोच और विज्ञान ने हर दौर में नए इतिहास रचे हैं।

श्रोताओ, इसी के साथ आज का नमस्कार देहरादून कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। कार्यक्रम आपका पत्र मिला में, इसके लिए आप जब आप मैसेज करें तो उस पर लिखें आपका पत्र मिला, और नंबर है हमारा 7088-000-731। इस पर आप अपना विचार साझा कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार देहरादून कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। पेश है सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सेहरा फिल्म से हमने लिया है, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल का संगीत। श्रोताओ, ये गीत विरह, प्रेम और मिलन की चाहत को बहुत कोमल भावनाओं के साथ व्यक्त करता है। केवल ये एक पंक्ति नहीं है, बल्कि उस मन की आवाज है जो अपने प्रिय तक पहुंचने के लिए हर दूरी को मिटा देना चाहती है। तो आइए आप भी सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रुतो, कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, बस दिल में एक हल्की सी खलिश बनकर रह जाते हैं, और वही खलिश कभी किसी गीत की धुन बन जाते हैं, और कई बार ये पंक्तियां बेहद नाजुक एहसास लिए हुए होते हैं, दिल की वो छोटी सी कसक जो किसी की याद, अधूरी बात या अनकहे प्रेम से जुड़ी होती है। पारसमणि फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज तो लता मंगेशकर ने दी है, पर इसके बोलों ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन ने इस गीत को अमर बना दिया है।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: श्रोताओ, कार्यक्रम का ये गीत प्रोफेसर फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज में संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। ये गीत एहसास है गांव की मिट्टी का, लोगों के स्नेह का और किसी खास के आने की खुशी का। आइए हम सब भी महसूस करते हैं उस आने वाले का।

संगीत। श्रोता, जब किसी का नाम दिल की धड़कनों में बस जाए तो हर गीत में हर एहसास सुनाई देता है और होठों से बस यही आवाज आती है।

दिल की धड़कनों में जब प्यार की मीठी सरगम घुल जाए तो गीत बनते हैं, और उसी मधुर एहसासों को लेकर आया है ये अगला गीत बैराग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। क्योंकि प्रेम की मीठी शरारत और दिल की हल्की हल्की भावनाओं को ये गीत बड़ी खूबसूरती से व्यक्त कर रहा है।

श्रोताओ, सदाबहार फिल्म गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और कार्यक्रम का अगला गीत वक्त फिल्म से, आशा भोसले की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत। और ये गीत उस खूबसूरत एहसास, उस पल को बयां करता है जब किसी अपनी की याद आने पर या उसकी प्यारी सी बात याद आने पर मन से एक गीत निकलता है और अचानक से दिल कुछ यूं मुस्कुरा उठता है।

बंदिनी, आइए आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, आवाज सुमधुर लता मंगेशकर की। श्रोताओ, प्रेम सिर्फ एक सुंदर संगम है जिसके आने से जीवन बदल जाता है। कुछ मुलाकातें सिर्फ लोगों से नहीं होती, वे दिल और आत्मा को छू जाते हैं और तब जीवन की जो सफर है ना, वो बहुत आसान हो जाता है। ऐसा ही एक मधुर सा गीत आप सबके लिए।

श्रोतो, जब प्रेम मन की गहराइयों में उतर जाए तो प्रिय केवल यादों में नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व में समा जाता है। यही एहसास है इस गीत का जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं, क्योंकि पुराने फिल्मी गीतों की दुनिया में कुछ गीत ऐसे हैं ना जो सीधे दिल की धड़कनों में उतर जाते हैं। उन्हीं में से एक अनुपम रचना है शकील बदायूनी साहब की, हेमंत कुमार का संगीत है और गीता दत्त की आवाज़। फिल्म साहिब बीवी और गुलाम।

0: श्रोता और शागिर्द फिल्म के इसी गीत के साथ जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने, ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है सेहत कार्यक्रम का। आइए इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाते हैं संकल्प मिश्रा से की गई बातचीत, डॉक्टर योगेंद्र सिंह से कर रहे हैं। विषय है हाइपरटेंशन, कारण, लक्षण एवं उपचार।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून के माध्यम से सेहत का ये सीधा संवाद है और जहां आज हम कार्यक्रम सेहत के अंतर्गत बात करेंगे ऐसे रोग की जो आपके दिल से भी जुड़ा हुआ है और दिमाग को भी असर करता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण, लक्षण और प्रबंधन पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे रक्तचाप क्या है और इसका हमारे शरीर से क्या रिश्ता है, और वो कौन सी स्थिति है जब हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में इस समय उच्च रक्तचाप है।
2: देखिए, रक्तचाप जैसे कि उसका नाम अपने आप में इंडिकेट करता है कि एक ब्लड का प्रेशर है, और जैसे आपको पता होगा कहीं पर कोई भी अगर फ्लूइड किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है। उस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको जो एक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम हार्ट का होता है, और हार्ट उस प्रेशर को जनरेट करता है जिस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है शरीर के सारे ऑर्गन में जाता है और उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। सो वो जो प्रेशर जनरेट होता है, जिस प्रेशर से ब्लड सारे ऑर्गन में पहुँचता है, वही एक रक्तचाप है। आमतौर पर मेजोरिटी केसेस में एक सामान्य ब्लड प्रेशर होता है जो कि एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और अगर एक वो सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाता है बिकॉज कई सारी चीज़ों की वजह से, जैसे अगर 140-90 से ज़्यादा आपका प्रेशर कई बार रिकॉर्ड हो रहा है, सो वो उच्च रक्तचाप की श्रेणी में आता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। वो एक एबनॉर्मल चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकती है।
1: अच्छा, आम बोलचाल की भाषा में और कई विशेषज्ञों के अनुसार भी उच्च रक्तचाप की स्थिति को साइलेंट किलर भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या इसके मायने होते हैं, आम श्रोताओं को जो जानना चाहिए?
2: जी देखिए, आम तौर पे मेजॉरिटी केसेस में जो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कई बार अगर काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से कोई विशेष तकलीफ नहीं होती है। और कई बारी किसी भी व्यक्ति को पहली बार ब्लड प्रेशर तभी पता लगता है जब कोई मेजर हार्ट का या ब्रेन का या कोई और ऑर्गन का कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है, किसी चीज़ की इमरजेंसी हो जाती है, तब जाके ये जानकारी मिलती है कि अरे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए, कोई सीरियस चीज़ ना हो जाए, तब तक पता नहीं लग पाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अंटिल अनलेस आप उसको रेगुलर नपवाते हैं या चेक कराते हैं एक सर्टेन एज के बाद।
1: आजकल देखा जाता है कि युवाओं में भी उच्च रक्तचाप के जो केसेस हैं वो देखे जा रहे हैं। पुराने समय में अक्सर ये माना जाता था या अभी भी माना जाता है कि रक्तचाप एक एज के बाद जाकर के होता है, लेकिन युवाओं में आजकल ये बहुत कॉमन हो गया। इसमें दिनचर्या का आप कितना बड़ा रोल मानते हैं?
2: देखिए, मैं जहाँ तक ये जो बीमारियाँ हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है, उसी तरीके से डायबिटीज़ या हार्ट की बीमारी है, सो ये सारी बीमारियाँ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ के तौर पे जानी जाती हैं। अगर किसी की लाइफस्टाइल व्यवस्थित नहीं है, जिसमें कि आपका खान पान, रहन सहन और आपका चलना फिरना, जो भी आपकी पूरी दिनचर्या है, अगर वो ठीक नहीं है, इन तीनों में से कोई भी बीमारी हो सकती है। उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, आपको शुगर भी हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि किसी व्यक्ति में कुछ वजहों से हो सकता है ब्लड प्रेशर पहले हो, किसी में डायबिटीज़ पहले हो, किसी में हार्ट की बीमारी पहले हो, मगर ये सारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। तो अलग अलग लोगों में इस बीमारी के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को ठीक तरीके से नहीं रखा है।
1: इसी से हम अपने अगले सवाल पर आते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि अब स्थिति उच्च रक्तचाप की बन गई है और डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए?
2: जी देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बोला कि एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है, सो लाइफस्टाइल में सबसे पहले आपका आ जाता है

0: पान, अगर आपका खान पान व्यवस्थित नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, अगर आप ओबीज हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ऑफिस में स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस, तो ये सब ऐसे आप स्मोक करते हैं, या आपको ऑलरेडी शुगर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, या आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी रह चुकी है, सो ये सब ऐसे इंडिकेटर हैं कि जिनकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। सो ऐसी परिस्थिति में एक सर्टेन एज के बाद, आमतौर पे वो एज 35 साल 40 साल मान सकते हैं, विदेशों में तो यूजली 40 साल या उससे ऊपर मानते हैं, बट अपने देश में क्योंकि लाइफ स्टाइल की बीमारियाँ थोड़ी अर्ली एज में हो रही हैं, तो आप थोड़ा कम उम्र में भी एटलीस्ट महीने में एक बार 3 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करा लें, उससे एटलीस्ट आप उसको मॉनिटर कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे कब आपका ब्लड प्रेशर एक नियमित लेवल के ऊपर बढ़ रहा है।
1: उच्च रक्तचाप की का जो संबंध है उसे अक्सर आम लोगों में ये माना जाता है कि आगे चल करके दिल की बीमारियों से भी संबंध होता है। एक विशेषज्ञ इसे कैसे समझा सकते हैं आम लोगों को?
0: देखिए, एक विशेषज्ञ के तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ, जैसे मैंने कि आपको बोला, उनका मूल कारण लाइफ स्टाइल ही होती है। इनको ऐसा कह सकते हैं कि ये भाई बहन है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम में भाई बहन है। किस व्यक्ति में किसका जन्म पहले होगा ये अलग बात है। सो इसलिए ज़्यादा संभावना ये है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है उसको आगे चल के डायबिटीज़ हो, किसी को डायबिटीज़ है हो सकता है उसको आगे चल के ब्लड प्रेशर हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम पहले हुई है हो सकता है उसको आगे चल के डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो ये किसी भी सीरीज़ में ये आ सकती हैं अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा।
1: अगर किसी को बिल्कुल असामान्य तौर पर बीपी दिखाई देता है जांच करवाने पर, तो उसका पहला जो कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एकदम से असामान्य तौर पर ज़्यादा बीपी आता है।
0: देखिए, अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, जैसे कि 140 90 से ज़्यादा आ रहा है, सो इमीडिएट कदम तो ये होना चाहिए जो वो खुद कर सकता है कि अपना जो खान पान दिनचर्या है उसको ध्यान दे और उसमें व्यवस्थित करे उसको, कि उसमें क्या वो गलत कर रहा है, अगर स्मोक करते हैं वो बंद करें, खाने में अगर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं वो छोड़ें, टेबल सॉल्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ें, अचार पापड़ नमकीन इन सब चीज़ों का सेवन जितना कम कर सकते हैं करें, जितने भी ये डब्बे वाले चीज़ें आती हैं, मतलब जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें डब्बे वाले जूस या डब्बे वाले नट्स, इन सब का सेवन जो है आप जितना भी रिड्यूस कर सकते हैं सबसे पहले वो करें, और एक डॉक्टर से ज़रूर आप सलाह लें। अगर इन सब के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आपको दवाइयों की भी ज़रूरत हो इसको नियंत्रित करने के लिए, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें।
1: डॉक्टर साहब, शुरुआती तौर पर अगर किसी का रक्तचाप बढ़ा हुआ आता है और डॉक्टर उसे दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, आम लोगों में ये धारणा है कि एक बार आपकी हाई बीपी की दवा शुरू हो गई तो आपको ज़िंदगी भर वो लेना ही होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या लाइफस्टाइल को वापस कंट्रोल करके क्या किसी केस में दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं, या दवाइयाँ ज़िंदगी भर लेनी ही पड़ती हैं? और अगर लेनी पड़ती हैं तो उनके कारण क्या हैं?
0: जी देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत ही गलत धारणा है कि अगर दवाई ले ली तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। दवाई सिर्फ आपकी ज़रूरत के हिसाब से दी जाती है, और अगर हम बीमारी का नेचर देखें तो बीमारी जो ब्लड प्रेशर की होती है उसको दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि उसको दवाइयाँ जीवन भर लेना पड़े, इसलिए नहीं क्योंकि दवा शुरू हो गई है, बट इसलिए कि बीपी की बीमारी का नेचर ही ऐसा है कि उसको दवा से कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इस बात पे आते हैं कि क्या दवाइयाँ बंद हो सकती हैं, उसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर है और वो अपनी लाइफ स्टाइल को काफ़ी करेक्ट कर लेता है, सो उस कंडीशन में कुछ केसेस में दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो उसमें अगर वो लाइफ स्टाइल को अब नियंत्रित करता है तो दवाइयों की डोज कम हो सकती है, सो ये दो चीज़ें संभव हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी को खानी पड़ती हैं, कुछ लोग अगर अपने जीवन शैली को

0: बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लेते हैं, वेट काफ़ी लूज़ कर लेते हैं, तो उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ने की भी संभावना रहती है।
1: डॉक्टर साहब, आम लोगों में ये भी भ्रांति है कि बहुत लोग दवाइयाँ इसलिए भी नहीं लेना शुरू करते हैं कि रक्तचाप की दवाइयों से उनके शरीर पर दूसरे दुष्प्रभाव होंगे। विशेषज्ञ इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या ये भ्रांति है, इसे और दूसरे रास्ते क्या हैं?
0: देखिए, ये बिल्कुल एक भ्रांति है, आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, क्योंकि मेडिकल साइंस में हर चीज़ के पीछे रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाता है कि क्या रिस्क है और क्या फ़ायदे हैं उसके, और क्या रिस्क ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं, मतलब समय बीतने पे हम उनको वापस नहीं पा सकते हैं, उस तरीके के रिस्क हैं। सो अगर ब्लड प्रेशर को देखें, सो आम तौर पे अगर ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी बढ़ा हुआ है तो उससे हार्ट अटैक, ब्रेन का अटैक, पैरालिसिस या गुर्दे की प्रॉब्लम्स, ये तीनों होने की संभावना होती है, और इन तीनों बीमारियों में जो भी डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार अगर डैमेज हो गया तो हम उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी कर लेते हैं तो हम उसके सिर्फ रिकरेंस को रोकते हैं, जो डैमेज हो चुका है उसको हम कभी वापस नहीं पा सकते। तो इसलिए हाई ब्लड प्रेशर में जो रिस्क है वो इरिवर्सिबल है और बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं कि दवाइयों का, इलाज का क्या रिस्क है। सो अगर देखें, डेफिनेटली कोई भी दवा होगी उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट आम तौर पे वो साइड इफ़ेक्ट सिर्फ 5-10% लोगों को होते हैं, 90% लोगों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आम तौर पे ये दवाइयाँ हजारों लाखों मरीजों में ट्रायल होने के बाद ही मार्केट में रिलीज़ होती हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो अगर 10 नई दवाइयाँ किसी बीमारी के लिए इजाद होती हैं, उन दवाइयों में सिर्फ आउट ऑफ 10 सिर्फ एक दवा ही इस स्टेज तक पहुंचती है कि हम उसको मरीज को अपने क्लिनिक में पर्चे में लिख कर दे सकें। तो ऐसा नहीं है, दवाइयों का जो रिसर्च है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही एग्जॉस्टिव है, बट 5-10% लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट आमतौर पर रिवर्सिबल होते हैं, वो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप दवाई बंद करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए दवाइयाँ आप ज़रूर लें, जिन व्यक्ति को अगर दवाई से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है वो अपने डॉक्टर से मिलकर उस दवाई की क्लास को बदल सकते हैं। मान लिया आपको एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ दवा से आपको साइड इफ़ेक्ट है, सो मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हैं ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए, दूसरी क्लास ऑफ ड्रग डॉक्टर आपको देगा। लेकिन दवा ना खाने से जो आप नुकसान उठा सकते हैं, जो जो नुकसान होने की संभावना है वो कई बारी काफ़ी गंभीर हो सकता है।
1: निश्चित ही डॉक्टर योगेंद्र सिंह, आपके इस जवाब से न सिर्फ लोगों की ये भ्रांति दूर हुई होगी बल्कि उनका दवाइयों पर विश्वास भी बढ़ा होगा। अब हम जानना चाहेंगे कि जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, चूंकि आपका लंबे समय का एक अनुभव रहा है लोगों के साथ जो लोग बीपी हार्ट का इशू फेस कर रहे हैं, दवाइयों के साथ एक्सरसाइज का कितना रोल है, योग का कितना रोल है, जिससे दवाइयाँ अपना सबसे अच्छा असर दिखा सकें और एक दीर्घायु कोई भी मरीज प्राप्त करे और उतना ही नॉर्मल जीवन जी सके जितना कि दूसरे लोग जीते हैं।
0: देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं, और इसलिए अगर आप व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, तो उसके करने से वो एक तरीके की एक्सरसाइज है, और जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर उससे कंट्रोल होगा या सामान्य होने की पूरी संभावना है। सो योग का डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रिवेंशन में और उसके कंट्रोल में। अब हम इसको देखते हैं कि उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो अगर हम उस नज़र से देखें तो आसन आते हैं और दूसरा लोग जो प्राणायाम करते हैं वो आते हैं। सो ब्लड प्रेशर का असर दोनों चीज़ों से होता है, आपकी फिजिकल बॉडी की वजह से भी और आपके मेंटल स्टेटस की वजह से भी। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक मेंटल स्टेट है, सो अगर आपको स्ट्रेस कम होगा, अगर आप काम होंगे, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रहेगा। तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर इन दोनों चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो आप अगर जो भी आप करना चाहें, चाहे अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं, आप योग करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों से आपको ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने में आपको हमेशा मदद मिलेगी।
1: डॉक्टर साहब, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत इस पूरे साक्षात्कार के दौरान समझा कि लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है इस बीमारी के प्रिवेंशन से भी और इस बीमारी को मैनेज करने के लिए भी। अगर हम आज के युवाओं की बात करें, हाइट और वेट के रेशियो की बात करें, कितनी मिनिमम एक्सरसाइज व्यायाम उन्हें डेली करना चाहिए, किस तरीके का

0: व्यायाम एक कामकाजी महिला हो या पुरुष हो, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल उनके जीवन का हिस्सा है, मिनिमम एक्सरसाइज होनी ही चाहिए जिससे वो इस बीमारी से दूर रहें और एक अच्छी और अच्छा और लंबा जीवन जी सकें।
1: कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज आप किसी भी तरीके की कर सकती हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। ये ध्यान रखना है कि वो एक एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें कि आपका वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग सारी चीज़ें आती हैं। वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए बिकॉज वेट लिफ्टिंग करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सो वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए। आप एरोबिक एक्सरसाइज या कार्डियो एक्सरसाइज जो होती हैं वो आप कोई भी कर सकते हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल को सूट करता है। और उसमें आपको ये ध्यान रखना है कम से कम 20 to 30 minutes पर डे, और हफ्ते में मेजॉरिटी दिन आपको करना है। मतलब अगर हम हफ्ते में 7 दिन मान लें तो कम से कम 4 दिन 5 दिन आप उसको करें। तो एक इफेक्टिव एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपने ब्लड प्रेशर और इस तरीके की लाइफ स्टाइल की बीमारियों से थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं।
0: डॉक्टर योगेंद्र, आप आकाशवाणी में आए और उच्च रक्तचाप से संबंधित जो भी सवाल हैं लोगों के मन के, उनका आपने बहुत ही विस्तार में जवाब दिया। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना डॉक्टर योगेंद्र सिंह से संकल्प मिश्रा की बातचीत। विषय था हाइपरटेंशन, कारण, लक्षण एवं उपचार। इसी के साथ सेहत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है न्यूज हेडलाइंस का।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के समर्पण को नमन किया। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से 10,978 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया। आरबीआई और ईसीबी ने केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चंपावत के जिला अधिकारी मनीष कुमार ने सड़क संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बागेश्वर जिले के गरुड़ और बैजनाथ में औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने वाला ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुल गया है। पौड़ी जिले के घुड़दौड़ी स्थित गोविंद बल्लभ पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक एवं तकनीकी महोत्सव गूंज 2026 और स्पंदन का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना वरदान बनी। पिथौरागढ़ जिले के LSM परिसर में कल से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू होंगी। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने की एंटी नारकोटिक्स कुमाऊं यूनिट ने नैनीताल जिले के दमुआ डूंगा में 5 किलो 2 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने 12 व 13 मई को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत गाइड फिल्म से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और SD बर्मन का संगीत। कल की परछाइयों को पीछे छोड़ दिया है, आज दिल ने उम्मीदों से रिश्ता जोड़ लिया है। जितने भी इम्तिहान ले ले ये जिंदगी, हमने मुस्कुराकर दर्द से सारा नाता तोड़ लिया है।

आइए आपको सुनवाते हैं कुदरत फिल्म का गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में, मसरूर सुल्तानपुरी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत। हमें तुमसे प्यार कितना ये लफ्जों में कहाँ आएगा, दिल की हर धड़कन पे बस नाम तेरा आएगा। कभी दूर जाओ भी अगर इस दुनिया की भीड़ में, तुम्हारा एहसास हर पल हमारे साथ जाएगा।

दाग फिल्म का गीत अभी किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम का ये गीत फकीरा फिल्म से आपको सुनवाते हैं, आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

और अब आज के कार्यक्रम का समापन गीत गुमराह फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत। खुद को तुम्हारे वास्ते तुमसे ही अनजान कर देते हैं, खुद को तुम्हारे वास्ते तुमसे ही अनजान कर देते हैं, चलो हम तुम्हारा काम थोड़ा आसान कर देते हैं।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। समय हुआ है प्रादेशिक समाचारों का।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप जयवीर सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान सांसद दिनेश भाई मकवाना ने कहा कि धाम में संचालित मास्टर प्लान कार्य भविष्य में श्रद्धालुओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। श्री मकवाना ने यात्री सुविधाओं, सौंदर्यकरण, नदी तट विकास, पैदल मार्गों, सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं आधारभूत संरचनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। समिति सदस्यों ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में परंपरा और आधुनिकता का संतुलित एवं आकर्षक स्वरूप विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को अधिक सुव्यवस्थित एवं सुगम सुविधाएं प्राप्त होंगी और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। प्रदेश में आज मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज बादल छाए हुए हैं। साथ ही मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में तेज हवाओं और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मैदानी जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं कल और 13 मई को मौसम की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 12 और 13 मई को प्रदेश में बारिश और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी प्राप्त करने और पूर्व सावधानी के साथ यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पूर्ण विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर कम करने का आह्वान किया। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से 10,978 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि यमुनोत्री के लिए 2,450, गंगोत्री के लिए 2,462, केदारनाथ के लिए 3,154, बद्रीनाथ के लिए 2,912 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सड़क संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने, सभी गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरते हुए सड़क को सुगम और सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बस्तिया, कोट, अमोड़ी, स्वाला समेत अन्य संवेदनशील सड़कों पर सड़क सुधार कार्य को शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने मानसून के दौरान जलभराव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राजमार्ग के किनारे झाड़ी कटान एवं नालियों की नियमित सफाई करने के भी निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता 2015 में हुए पुराने समझौते का नवीनतम रूप है। इसके अंतर्गत दोनों केंद्रीय बैंकों के बीच नियमित रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान, नीतिगत संवाद और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह सहयोग उन क्षेत्रों में केंद्रित होगा जो दोनों संस्थानों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। RBI ने कहा कि इस नए समझौते से केंद्रीय बैंकिंग प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के विकास पर संस्थागत जुड़ाव और सहयोग को और अधिक मजबूती और उम्मीद मिलेगी। पिथौरागढ़ जिले के LSM परिसर में कल से स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू होंगी। परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रभारी डॉ. कमलेश कुमार भाकुनी ने बताया कि BA, BSc, BCom, BBA, BEd व BSc के द्वितीय, चतुर्थ, छठे सेमेस्टर और MSc के MA के और MCom तथा MBA के द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाश वाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 10:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं समूह स्वरों में गाए रुहेलखंडी लोकगीत।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में
3: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं समूह स्वरों में गाए रुहेल खंडी लोकगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुन रहे हैं समूह स्वरम में गाए रुहेलखंडी लोकगीत। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, इसी रुहेलखंडी लोकगीत के साथ लोक संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरती मुखर्जी की आवाज़ में फिल्म मासूम से।

0: परफॉर्मेंस का बोलो
1: द फ्यूचर
0: मार्केट ट्रेंड टेक
2: सुनने में आएगी
3: आज की खबर में
4: पहले ही बोला था ब्रो
5: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
5: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो
8: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: FM 100.5 MHz पे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। ये श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म घर से। गीत है गुलजार का और संगीत है RD बर्मन का।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
2: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रही हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं, और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ, सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है, विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है, पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है, स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम्य पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं, और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
3: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbh Abhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbh Abhishek?
4: नमस्कार। आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे

0: तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्र घट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को ला करके, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि ला करके जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है, एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं, लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
1: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
0: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगी गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पत्त हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है। अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए
1: जी।
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं, और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए, इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है
1: जी।
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in

0: सिस्टर इज ऑफरिंग प्रेयर्स एट द सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है। मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
0: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny.
2: परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु।

विष्णुरा विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्चैक।

0: विष्णु श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम, इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स

0: The aerobatic team, the Suryakiran aerobatic team, SKAT, the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Ajay Dasharathi, performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Suryakiran aerobatic team. And early we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force, and now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the dhwajarohan is going on.
1: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में, गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्प उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखें कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
0: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
1: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
1: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है।

0: विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream, but taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहे, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन है उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में। इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार।
2: जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

0: से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायु सेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो है उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग है उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
1: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी बिना किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले।
0: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
1: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
0: जी,
1: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
0: जी।
1: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु है। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष नाभि, अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम 3 लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे स्वलोक कहा। तो इन 3 चक्रों में जब हम बात करते हैं तो 5 प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 3 प्रकार। जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है दृष्टि रूप से, भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से।

0: ग्रहण करते हैं, इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है? उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपने एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं।
1: जी, तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है।
1: जी,
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग? यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है, हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं, इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे

0: चाहूंगी।
1: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए
0: जी।
1: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए। तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को, तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें। भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की यह आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ सी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत, उसकी ये हैसियत, कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए, कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं, ग्यारह मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी, 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए, उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीति की इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की ये आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर भेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इसे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हरेक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया. माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए. सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया. सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें. ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे. विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं. नमस्कार.
3: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे. विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
4: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं. आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार.
5: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार.

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में प्रतिकूल मौसम के बीच सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने अल्मोड़ा जिले के आदर्श संस्कृत ग्राम जैती पांडेकोटा का निरीक्षण किया। संस्कृत शिक्षा और उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ऊर्जा संसाधनों की बचत हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्रहित में अग्रणी रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। श्री धामी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपने स्तर पर योगदान दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों की सहभागिता से ये संकल्प और अधिक मजबूत होगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को गांव और कस्बों तक पहुंचाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रभावी कदम उठा रहा है। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त पहल से अब हृदय रोग के मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही विशेषज्ञ परामर्श और जांच की सुविधा मिलने लगी है। इससे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को दून और कोरोनेशन अस्पताल के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि प्रेमनगर और रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ हृदय रोग ओपीडी शुरू की गई है। प्रेमनगर सीएचसी में प्रत्येक बुधवार और रायपुर सीएचसी में प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक हृदय रोग विशेषज्ञ मरीजों की जांच और परामर्श दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिल रही है बल्कि दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल पर बढ़ते मरीजों के दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।
2: वेलमेंट हॉस्पिटल जो है इंटरेस्टेड थे उसके लिए कि भाई हमारे द्वारा इस तरह की सेवाएं यहाँ पर दी जाए, तो हमने उनको प्रेमनगर में और रायपुर में अपनी ओपीडी संचालित करने की परमिशन दी है। तो जो प्रेमनगर में है एवरी वेडनेसडे उनके द्वारा कार्डिक ओपीडी की जा रही है और रायपुर में एवरी फ्राइडे जो है उनके द्वारा कार्डिक ओपीडी इसमें की जा रही है। तो अभी तक जो फीडबैक ली गई है तो अच्छा है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। लगभग 100 के ऊपर जो है लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं, उसमें लगभग 3 ओपीडी उनकी हो चुकी है।
0: पछवादून और परवादून क्षेत्र के लोगों को अब हृदय संबंधी परामर्श और उपचार के लिए शहर के बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ रहा है। देहरादून निवासी नीरज डबराल ने सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गरीब और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था बेहद लाभकारी साबित हो रही है।
3: यहाँ पर जो प्रत्येक शुक्रवार को ये हृदय रोग की जो विशेष टीमें बैठे यहाँ पर ईसीजी हो रहा है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। यहाँ पर गरीब गुरबा वर्ग आता है यहाँ पर, जिनके पास इतने पैसा नहीं हो पाता है तो कम पैसे में अपनी जांच कर पा लेता है। तो अच्छी पहल है सरकार की ओर से।
0: नैनीताल जिले में निजी विद्यालयों द्वारा महंगी पुस्तकें और अतिरिक्त शुल्क के मामलों पर जिला प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशों के क्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने 12 और निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही अब तक नोटिस पाने वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। विद्यालयों को 15 दिन के भीतर संशोधित पुस्तक सूची जारी कर एनसीईआरटी पुस्तकों को प्राथमिकता देने, विक्रेता विशेष की बाध्यता समाप्त करने, वेबसाइट पर शुल्क संरचना और बुक लिस्ट सार्वजनिक करने तथा अतिरिक्त वसूली गई धनराशि का समायोजन या वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

0: मौसम विभाग ने कल और परसों प्रदेश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और प्रतिकूल मौसम की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम की ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। श्रद्धालुओं से खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। साथ ही यात्रा के दौरान प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देश देशों का पालन करने को कहा गया है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
1: संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक कुमार गैरोला ने अल्मोड़ा जिले में ताड़ीखेत विकासखंड के आदर्श संस्कृत ग्राम जैती पांडेकोटा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गांव में संचालित संस्कृत शिक्षा और उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामवासियों से संवाद करते हुए संस्कृत भाषा और संस्कृति के संरक्षण में उनके योगदान की सराहना की। सचिव ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा की मूल आधारशिला है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं के लिए संचालित संस्कृत शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए कहा कि संस्कृत शिक्षा बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास और सांस्कृतिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के सचिव विनोद प्रसाद सिमलची ने बताया कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई से शुरू हो चुकी है और 24 मई तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि छात्र आवेदन पत्र 20 मई तक जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालयों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 24 मई तक का समय दिया गया है। श्री सिमल्टी ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10वीं परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को परीक्षा सुधार में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जबकि 12वीं में 1 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र अंक सुधार परीक्षा दे सकते हैं। पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा के बीच धारचूला में स्थानीय टैक्सी यूनियन और व्यापारियों द्वारा प्रस्तावित चक्काजाम फिलहाल टल गया है। तहसील प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद यूनियन ने आज प्रस्तावित चक्काजाम को स्थगित करने का निर्णय लिया है। धारचूला तहसील में आयोजित बैठक में स्थानीय टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों के संचालन पर नाराजगी जताई। यूनियन का कहना था कि बाहरी टैक्सियों के कारण स्थानीय टैक्सी संचालकों, व्यापारियों और होमस्टे संचालकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष परवेज नबियाल ने बताया कि परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। एआरटीओ अभिनव गडकोटी ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा तवाघाट चौराहे पर बाहरी राज्यों से आने वाले टैक्सियों की सघन जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में प्रतिकूल मौसम के बीच सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की। संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने अल्मोड़ा जिले के आदर्श संस्कृत ग्राम जैती पांडेकोटा का निरीक्षण किया, संस्कृत शिक्षा और उससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोता, आप सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म ताजमहल से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत प्रसारित किया जा रहा था आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz से। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी।

0: रखा है। सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
1: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
1: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
1: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा, खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
1: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
1: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
1: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
2: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
3: वी आर फाइन सर।
2: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स ऑल वेल?
3: यस सर।
2: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
3: Yes sir, we have seen.
4: I have seen sir.
5: I like bicycle sir.
6: I love it.
2: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is pink
9: and mine is blue.
10: My cycle has a bell.
2: Now tell me, have you ever ridden a bicycle?
3: Yes, sir!
2: How does it feel to ride a bicycle? Feels great, isn't it?
3: Yes, sir!
2: So, let's listen to a short, lovely poem on bicycle today.
3: Trin, trin, trin!
2: Do it again, please.
3: Trin, trin, trin!
2: I have a red bicycle.
3: I have a red bicycle.
2: I pedal and I ride.
3: I pedal and ride.
2: Trin, trin, trin goes the bell.
3: Trin, trin, trin goes the bell.
2: Makes my friend.

0: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया।

0: उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
1: माँ।
2: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
1: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
2: हाँ।
1: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
2: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
1: जी।
2: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
1: जानता हूं मां।
2: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
1: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
2: जाओ बेटा।
0: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक

0: युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
1: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
3: यस सर।
2: नाथ सिंह निशाना साधो।
1: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
1: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
3: जी।
2: फायर।
1: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
1: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा।

0: ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है, वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

0: अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर

0: इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित

0: करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, मैं स्टूडियो घड़ी में 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सैनिकों के लिए में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा की, जो भारतीय सशस्त्र बलों की पहली महिला 3-स्टार अधिकारी रह चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा PVSM, SM और VSM भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हस्ती है और भारतीय सेना में 3 सितारा रैंक प्राप्त करने वाली पहली महिला के रूप में उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल और भारतीय नौसेना में सर्जन वाइस एडमिरल के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त किया।

शिमला 5 MHz पे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है सैनिकों के लिए और आज हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर पुनीता अरोरा की। साथियों, लेफ्टिनेंट डॉक्टर पुनीता ने नैदानिक उत्कृष्टता से चिन्हित उनके 36 वर्षों के करियर ने सैन्य चिकित्सा, विशेष रूप से स्त्री रोग और कैंसर स्वास्थ्य के क्षेत्रों में प्रगति करते हुए लंबे समय से चली आ रही लैंगिक बाधाओं को तोड़ा। 31 मई 1946 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में जन्मी डॉक्टर पुनीता अरोड़ा के परिवार को 1947 के विभाजन के दौरान भारत आना पड़ा और ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बस गए और उनके पिता ने छोटी सी पुनीता में अनुशासन, निष्पक्षता और दृढ़ता के मूल्यों को विकसित किया।

साथ ही 1963 में डॉक्टर पुनीता अरोड़ा ने पुणे स्थित सशस्त्र बल शिक्षा महाविद्यालय में दूसरे बैच के सदस्य के रूप में दाखिला लिया। उन्होंने शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करते हुए अपने बैच में टॉप किया। अपनी चिकित्सा शिक्षा सफलतापूर्वक करने के बाद जनवरी 1968 में उन्हें सेना चिकित्सा कोर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त हुआ और उनकी पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में हुई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो फतेहगढ़ में अपने पद पर बनी रही और कठिन परिस्थितियों में इन शुरुआती अनुभवों ने दबाव में भी रोगी देखभाल के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता और प्रतिबद्धता को भी और ज्यादा मजबूत किया।

साथियों, अपनी सेवाकाल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा ने नैदानिक अभ्यास के साथ साथ प्रगतिशील नेतृत्व की भूमिका निभाई। उनकी प्रशासनिक क्षमताओं के कारण उन्हें सेना मुख्यालय में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने सभी बलों में महत्वपूर्ण चिकित्सा अनुसंधान पहलों का समन्वय किया। इस ऐतिहासिक नियुक्ति ने उन्हें सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी और भारतीय सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल के त्रिसिखारे पद को प्राप्त करने वाली पहली महिला बनाया। और 2002 में जम्मू में हुए कलूचक आतंकवादी हमले के दौरान बेस अस्पताल की कमान अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए उन्होंने त्वरित करुणापूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की। उनकी टीम ने असंख्य घायल सैनिकों, उनके परिवार और नागरिकों को समय पर उपचार उपलब्ध कराया, जिससे संकट की स्थिति में असाधारण नेतृत्व का प्रदर्शन हुआ और इस घटना ने उन्हें परिचालन दक्षता और मानवीय प्रतिबद्धता के लिए व्यापक पहचान दिलाई।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। साथ ही अगर बात करें इनके पुरस्कार और सम्मान की तो अपने शानदार करियर के दौरान लेफ्टिनेंट डॉक्टर जनरल पुनीता अरोड़ा को 15 पदक और प्रशस्तियां प्राप्त हुई, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक जो असाधारण स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। 2002 में कलचुक आतंकवादी हमले के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था और स्त्री रोग संबंधी एंडोस्कोपी और ऑनकोलॉजी सुविधाओं की स्थापना में उनके अग्रणी कार्य के लिए सेना पदक से सम्मानित किया गया और अन्य सम्मानों में विशेष पदक, संग्राम पदक, सैन्य पदक और भारत की स्वतंत्रता वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिए गए विभिन्न दीर्घ सेवा और स्मारक पदक शामिल हैं। ये सम्मान उनकी परिचालन संबंधी उपलब्धि और सेवा में निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाते हैं।

0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष नियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील केवल आर्थिक बचत के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पैठाणी स्थित राहु मंदिर पैठाणी परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण जबकि शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर नैनीताल जिले में जगह जगह निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को योग के प्रति जागरूक कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पार्किंग और सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत घर गृहस्थी।

घर गृहस्थी सुनने वाली सभी बहनों को मीरा नेगी का नमस्कार। स्वागत है आप सभी बहनों का आज के कार्यक्रम में। बहनों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार की एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण योजना के बारे में, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ बहनों, यह योजना बेटियों के भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। जैसा कि हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन कई बार आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह सपना पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सुकन्या समृद्धि योजना परिवारों के लिए एक बड़ी सहायता बनकर सामने आती है। बहनों, इस योजना के तहत माता पिता अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं और यह खाता किसी भी नज़दीकी डाकघर या अधिकृत बैंक में आसानी से खोला जा सकता है। खाता खुलवाने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। आप एक परिवार से दो बेटियों के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं। बहनों, इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें कम राशि से भी बचत शुरू कर सकते हैं। इसमें एक वर्ष में कम से कम 250 रुपये और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। कोई भी माता पिता अपनी सुविधा अनुसार हर महीने या साल में पैसे जमा करवा सकते हैं, जिससे छोटी छोटी बचत धीरे धीरे बड़ी रकम बन जाएगी और आपकी बेटी के भविष्य में भी बहुत उपयोगी होगी। बहनों, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक संगीतमय विराम।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भेंटवार्ता, जिसमें आज का विषय है महिलाओं के संरक्षण में विविध कानून, जिसकी जानकारी दे रही हैं एडवोकेट सृष्टि तिवारी। नमस्कार बहनों, आज हमारे साथ एडवोकेट सृष्टि तिवारी हैं और आज हम इनसे जानेंगे महिलाओं के लिए विविध कानून विषय पर। तो सबसे पहले स्वागत है सृष्टि आपका।
5: नमस्ते मैम।
4: सृष्टि, सबसे पहले आप बताइए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
5: मैम, भारत में महिलाओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए काफ़ी सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे संविधान में भी उल्लेखित हैं और उसके अलावा कई सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं भारत में। सबसे पहले तो भारत का जो संविधान है वो महिलाओं को कुछ ऐसे राइट्स देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो पहले हमारे महिलाओं को नहीं मिलते थे, जैसे कि समान वेतन का अधिकार। और अगर जैसे कोई क्राइम होता है तो महिलाओं को कभी भी दिन डूबने से पहले और दिन ढलने से पहले या दिन निकलने से पहले आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ये कानून संविधान में भी है और ये बाद में सीआरपीसी में भी मेंशन हुआ। उसके अलावा महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है, फिर महिलाओं को इक्वल पे एंड इक्वल वेजेस का अधिकार है, फिर एक होता है कि समानता का अधिकार, जैसे कि जिस हिसाब से आप

0: पुरुषों को ट्रीट करेंगे वैसे ही महिलाओं को भी ट्रीट करेंगे, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसे जेंडर बेस पे, कास्ट बेस पे या कोई लिंग के बेस पे कोई भी ऐसी भेदभाव नहीं होगी जो कि आर्टिकल 15 में मेंशन है। और फिर उनके साथ जैसे पहले अनटचेबिलिटी भी होती थी बहुत ज़्यादा, तो उसको एबॉलिश किया गया संविधान में ही। उसके अलावा मैम जैसे कि दहेज विरोधी कानून बनाया गया, अगर महिलाओं के लिए अगर किसी भी प्रकार की विवाह में अगर कोई दहेज लेने या देने की प्रथा जो चलती है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, ऐसा कोई भी वाकया होता है, तो उसके खिलाफ भी कानून है। हम दहेज प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था भारत सरकार द्वारा। उसके अलावा मैम जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अगर विवाहित महिलाओं के साथ अगर कोई भी इस प्रकार की कोई हिंसा होती है, अगर घर में रह के उनके ससुराल में रह के, तो हिंसा होने के बावजूद भी वो वहाँ रहने का अधिकार मांग सकती हैं।
1: घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कौन-कौन से कानून हैं?
0: मैम घरेलू हिंसा से बचाव के लिए एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी बनाया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके तहत भी हम शिकायत कर सकते हैं। और उसमें ये भी है कि जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो रिश्तों को बचाने के लिए कानून बनाया है,
1: जी
0: उसके खिलाफ आप जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप उसी घर में रहने का अधिकार मांग सकती हैं अगर कोई निकालता है तो, या फिर आप उससे मेंटेनेंस का अधिकार मांग सकती हैं बिना रिश्ता तोड़े। तो ये कानून जो है वो पनिशमेंट का भी अधिकार देता है और सुरक्षा का भी अधिकार देता है, और ये भी बचाता है कि रिश्ता किस भी प्रकार से आप बचा पाएं अपनी शादी का। जैसे कि अगर आईपीसी में भी है, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रुएल्टी होती है, मेंटल क्रुएल्टी, फिजिकल क्रुएल्टी, तो हम आईपीसी के तहत पहले शिकायत दर्ज कराते थे, जो अभी बाद में बदल के बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसका अमेंडमेंट होकर नया एक्ट आया है, तो उसके तहत भी हम क्रुएल्टी के खिलाफ जा सकते हैं। फिर अगर जैसे कोई डाउरी डेथ होती है तो उसके खिलाफ भी कानून है बीएनएस में, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है मैम अगर कोई डाउरी डेथ हो जाती है। जैसे कि अगर महिला का शादी हुआ है और 7 साल के भीतर कोई दहेज से रिलेटेड कुछ भी वाकया होता है, उसके तहत अगर कोई भी इस प्रकार की हिंसा होती है जिससे महिलाओं की डेथ हो जाती है, तो हम बीएनएस के थ्रू उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं जो कल्प्रिट है, और
1: जी
0: उसमें भी सजा का प्रावधान है।
1: कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार क्या-क्या हैं?
0: मैम कार्यस्थल पर जैसे कि बहुत पहले तो ऐसा कोई अधिनियम नहीं बना था, जैसे अगर महिलाएं कार्यस्थल पर जाती हैं तो उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत बहुत होती है, बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए। तो एक केस आया था मैम, बहुत पुराना केस है राजस्थान का, उसी केस के बाद से भारत में पॉस एक्ट का अधिनियम बना, जिसको बोलते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ अगर कोई भी यौन उत्पीड़न होता है तो उसको कैसे रोकथाम हम करेंगे, उसका निषेध कैसे करेंगे और निवारण कैसे होगा। तो उस एक्ट के तहत ये बताया गया था कि हर एक कार्यस्थल पर एक ICC कमेटी का गठन होगा, जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कहते हैं, और अगर कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का कोई भी यौन शोषण होता है या किसी भी तरह का कोई भी शोषण होता है, शोषण की परिभाषा दी गई है उसमें, कई तरह के शोषण है, अगर ऐसा कोई भी वाकया होता है तो ICC कमेटी में वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और फिर ICC कमेटी उस शिकायत को सुनेगी और उसके बाद वो अपना जो भी निर्णय होगा वो सुनाएगी, और उस चीज़ से अगर महिला सुनिश्चित रहती है तो फिर वो उसी अकॉर्डिंग चलेगी, अगर नहीं रहती है तो फिर उसके खिलाफ वो कंप्लेन भी कर सकती है बाहर जाके।
1: अच्छा, अब बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के विषय में।
0: जी
1: महिलाओं के इस विकास के लिए इसमें कैसे सहायक है ये?
0: ये एक बहुत अच्छा स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था, और कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बेसिकली नारी के उत्थान के लिए एक स्लोगन आया था कि जितना ज़्यादा हम अपनी बेटियों को शिक्षित करेंगे उतना ज़्यादा वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगी, जागरूक रहेंगी। अगर पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं तो वो अपने बहुत सारे अधिकारों को जान नहीं पाती हैं, जैसे कि संविधान में इतने सारे अधिकार दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा वो पढ़ेंगी उतना ज़्यादा वो अपफ्रंट होके अपनी चीज़ों के बारे में जानेंगी और आवाज़ उठा पाएंगी, तो और शिक्षित रहेंगी तो ही वो अपने परिवार भी संभाल सकती हैं, खुद को संभाल सकती हैं, और एक कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगी।
1: जी
0: इस वजह से ये स्लोगन भी आया था और इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक भी हुए, और उसके बाद से काफ़ी हद तक सुधार हुआ है,
1: जी
0: महिलाएं अपने राइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा जागरूक हुई हैं।
1: बाल विवाह निषेध कानून का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: मैम बाल विवाह निषेध कानून इंडिया में लागू हुआ है, काफ़ी पहले से लागू हुआ है, बहुत पहले होता था कि अभी बच्चियों की शादी लोग करा देते थे, 18 साल से कम उम्र की जितनी भी लड़कियां थी ये कस्टम की वजह से कराते थे, सबका कहना होता था कि ये हमारा कस्टम है, कल्चर है, तो हम ऐसे ही करेंगे। अभी तो ये बैन है, ये मतलब लीगल नहीं है, लेकिन अभी भी राजस्थान या यूपी के बहुत
1: जी कई जगह
0: सुदूर
1: पे देखने
0: इलाके
1: को
0: हैं
1: मिलता
0: जहाँ
1: है।
0: पे अभी भी ये होता है, उसमें वो

0: कुछ बोलते हैं कि चादर उड़ानी
1: हाँ
0: और
1: जी
0: कुछ लोकल टर्म्स हैं, तो चूंकि ये अगर कस्टम जहाँ प्रिवेल करता है वहाँ तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तो ये बैन है।
1: जी
0: और बैन इसलिए हुआ है कि मैम अगर कोई लड़की छोटी है 18 साल से कम है तो उसका विकास नहीं हुआ रहता है, मानसिक विकास नहीं रहता है,
1: शारीरिक
0: शारीरिक
1: विकास।
0: विकास नहीं होता है, और उस एज में अगर उसकी शादी हो जाती है और वो खुद बच्ची है और अगर वो खुद कोई बच्चा लेके चलेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसका उसका खुद का विकास नहीं हुआ है, वो किसी बच्चे का विकास कैसे कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ों पर बैन लगाया गया था और ये कानून बना था।
1: जी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की शिकायत कहाँ दर्ज कराई जा सकती है? जैसे कभी किसी महिला के साथ
0: जी
1: अपराध होता है तो वो इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराए?
0: मैम जैसे अगर महिलाओं के खिलाफ कोई किसी भी तरह का कोई अपराध होता है तो सबसे पहले तो उसको पुलिस के पास जाना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए। अगर घर में कोई प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा होता है तो पुलिस के पास जाएं, वहाँ कंप्लेन अपनी दर्ज कराएं। अगर वहाँ नहीं जा सकती तो महिला हेल्पलाइन है, वहाँ पे फ़ोन डायरेक्टली फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं, या फिर महिला आयोग बना है उत्तराखंड में भी है, वहाँ पे जाएं, वहाँ अपने लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। फिर महिला आयोग अपनी एक कमेटी बनाती है और वो अपने किसी एक विश्वसनीय कार्यकर्ता को वहाँ भेजेंगे, फिर वो उनकी बातें सुनते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सुलझाएं। पहले तो बातचीत से सुलझाने की कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वो कोई एक्शन लेंगे, या तो महिला आयोग खुद भी एक्शन लेता है या फिर आप डायरेक्टली पुलिस के पास जाके कंप्लेन करिए और पुलिस फिर महिलाओं के, आजकल तो महिलाओं को इतना ज्यादा राइट दिया गया है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा हार्ड अगर कुछ होता है तो फिर वो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और FIR दर्ज करती है, और इवन अरेस्टिंग का भी प्रावधान है, अगर कोई भी नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है तो अरेस्टिंग का प्रावधान है तुरंत।
1: जी अब आजकल सुनने में आ रहा है महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए जा रहे हैं,
0: जी मैम,
1: इस विषय पर जरा विस्तार से बताएं।
0: जी मैम, हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था, उसमें मैम 2005 में एक अमेंडमेंट आया, उसके थ्रू ये अधिकार दिया गया कि जो भी महिलाएं हैं उनको अपने पिता की संपत्ति में या उनका जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वहाँ उनको बेटों के बराबर का अधिकार मिलेगा, और ये बहुत बड़ा मूवमेंट आया 2005 में। तो उसमें ये हुआ कि जैसे अगर किसी के घर में बेटे नहीं हैं तो होता था कि अब प्रॉपर्टी किसको सौंपेंगे, तो अब उनको है कि बेटे नहीं है तो बेटियां प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को ही देंगे। फिर अगर कोई बेटियां अगर हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी के ऊपर तो भी वो क्लेम कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स से मांग सकती हैं प्रॉपर्टी। बट एक प्रॉब्लम आती है कि लोग अपने राइट का क्लेम नहीं करते, क्योंकि अगर अगर ये क्लेम करेंगे तो फिर वो
1: कहीं ना कहीं वो
0: पारिवारिक
1: रिश्ते
0: कलह
1: हैं
0: शुरू हो
1: खराब,
0: जाएगी,
1: सही
0: रिश्ते
1: बात
0: खराब हो
1: है।
0: जाएगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। बट ये मुझे लगता है कि अच्छा राइट शुरू हुआ था और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो लोग कर सकते हैं क्लेम, और अपने फादर से या इवन फादर भी चाहेंगे कि हमारे सारे बच्चे बराबर हों और उनको ये अधिकार मिले। तो ये बहुत बड़ी मुहिम आई थी और ये काफ़ी हद तक लोग जागरूक हैं और लोग करते भी हैं क्लेम इसके बारे में।
1: जी आपने कहा कि सिर्फ बेटे ना हो जिनके, या बेटियां ही हैं उनको संपत्ति में
0: जी
1: अधिकार दिया जाता
0: जी
1: है, लेकिन जिनकी बेटियां ही बेटियां हैं
0: जी
1: उनको तो मिलेगा
0: जी
1: संपत्ति में अधिकार, लेकिन जिनके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं।
0: मैम ये अधिकार बेसिकली दोनों के लिए है, मतलब
1: अच्छा
0: मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता था कि परिवार में बेटे नहीं होते थे तो उनको लगता था कि
1: जी,
0: हमारी संपत्ति किसको जाएगी,
1: किसको
0: तो ये
1: जाएगी?
0: एक तरह का उदाहरण है कि वो अपनी बेटियों को संपत्ति दे सकते हैं। अब जहाँ बेटे बेटियाँ दोनों हैं तो वहाँ तो बराबरी में करना पड़ेगा वो चीज़,
1: जी
0: और अगर जैसे कहते हैं लोग कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारे बच्चे सारे बराबर हैं, तो जहाँ संपत्ति की बात आती है तो कभी कभी वो चीज़ें अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर पहले होता था कि हम क्लेम नहीं कर सकते थे, अभी हम क्लेम कर सकते
1: इसके
0: हैं
1: लिए
0: बिकॉज हमारे पास
1: विशेष
0: राइट है।
1: कानून भी बन गए
0: हाँ,
1: हैं।
0: इसके लिए विशेष कानून है जो 2005 में अमेंडमेंट के थ्रू आया,
1: जी
0: इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू।
1: श्री मातृत्व लाभ अधिनियम महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है?
0: मैम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई कामकाजी महिलाएं अगर कार्यस्थल पर काम कर रही हैं, अगर वो उस टाइम प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान मैम बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और प्रेगनेंसी के बाद प्रसव होने के बाद उनको आराम की भी ज़रूरत होती है, फिर उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ आती हैं जिस टाइम वो फिर काम नहीं कर पाएंगी। तो उसके थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था, उसमें ये बोला गया कि महिलाओं को हम पेड लीव देंगे कि अगर वो छुट्टी पे जा रही हैं 6 महीने साल भर जितने भी दिन वो छुट्टी पे जा रही हैं तो 6 महीने तक का पेड लीव का प्रावधान है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत, जिससे कि उनको फाइनेंशियली सिक्योर भी रहेंगी वो, उनको कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और वो अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पाएंगी।
1: महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए समाज की क्या जिम्मेदारियां हैं?
0: समाज से

0: वो घर के बाहर आती है तो फिर वो घर की बात नहीं रहती, वो फिर समाज की बात हो जाती है। और अगर कोई बात समाज में हो रही है तो समाज का नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज है कि अगर कोई भी बात सड़क तक आती है तो हम उसमें इंटरवीन करें और फिर हम उसके खिलाफ हम खुद भी कंप्लेन कर सकते हैं।
1: सृष्टि, अंत में चलते चलते आप महिलाओं के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी?
0: मैं महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप शिक्षित बनिए और अधिकारों के बारे में जानने की कोशिश करिए। आपके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिसके बारे में आप अभी भी अनभिज्ञ हैं, आप उसको जानिए, आप संविधान को पढ़िए। संविधान में आपके बहुत सारे ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो आपके बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप जागरूक रहेंगी उतना ज़्यादा ही आप अपने राइट्स के बारे में भी अवेयर रहेंगी और उसी के तहत आप उसको क्लेम भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप फिर क्लेम कैसे करेंगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने राइट्स के बारे में जानें, जैसे
1: जानकारी
0: भी
1: बहुत ज़रूरी
0: जानकारी बहुत ज़रूरी है मैम।
1: जी सृष्टि, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था महिलाओं के संरक्षण में विविध कानून, और इसकी जानकारी दे रही थी एडवोकेट सृष्टि तिवारी। कार्यक्रम में अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहनों, सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार द्वारा अच्छी ब्याज दर दी जाती है। इस योजना में मिलने वाला ब्याज अन्य कई बचत योजनाओं से अधिक होता है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जिसका मतलब है ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता रहता है, जिस कारण लंबे समय में जमा की गई धनराशि काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस योजना में जमा राशि पर आयकर में छूट भी मिलती है। बहनों, इस योजना की अवधि 21 वर्ष है, लेकिन खाते में आपको 15 वर्षों तक ही पैसा जमा कराना होता है, उसके बाद भी जमा राशि पर ब्याज मिलता रहता है। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाती है तब उसकी उच्च शिक्षा के लिए खाते से आप कुछ राशि निकाल सकते हैं, और जब योजना के 21 वर्ष पूरे हो जाएं तो पूरी धनराशि बेटी को मिल जाती है, जिससे उसका विवाह करने में या अन्य किसी भी आवश्यक कार्यों को करने में उस धनराशि का आप उपयोग कर सकते हैं। बहनों, यह योजना पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि यह योजना सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता है, और यही कारण है लाखों परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बहनों, यह योजना केवल बचत का माध्यम नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को भी मजबूती देता है। इसलिए बहनों, हर माता पिता को इस योजना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए और इसका लाभ भी उठाना चाहिए। अगर हम आज से भी अपनी बेटियों के लिए बचत शुरू करें तो आने वाला कल उनके लिए अधिक सुरक्षित और उज्जवल होगा। बहनों, इसके बाद सुनते हैं ये गीत।

बहनों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है, कार्यक्रम घर गृहस्थी, अनुभाग कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, 248-001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अब अपनी बहन मीरा नेगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, कार्यक्रम महिला जगत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे घर गृहस्थी। FM 100.5 MHz पे ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्मी गीत गाने नए तराने। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी की खूबसूरत आवाज में फिल्म डियर जिंदगी से। गीत है कौशल मुनीर का और संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का। तो सुनते हैं ये गीत।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, ए आर रहमान के संगीत निर्देशन में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म दिल्ली सिक्स से आवाज थी मोहित चौहान की और गीत लिखा था प्रसून जोशी ने। तो आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म अक्सर से आवाज है कुणाल गांजेवाला, जयेश गांधी की, और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया और गीतबद्ध है समीर का।

श्रोताओं, गाने नए तराने प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पे। और श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सोनू निगम की खूबसूरत आवाज में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से गीत। तो आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अगला गीत शंकर महादेवन शान और के आवाज में फिल्म दिल चाहता है से।

FM 100.5 MHz पे हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत विशाल डडलानी और अलीशा मेंडोसा के स्वर में। फिल्म का नाम है ब्रेक के बाद, गीत है प्रसून जोशी का और संगीत निर्देशन है विशाल शेखर को। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीत गाने नए तराने आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप आशुतोष उनियाल से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी जिले के एकेश्वर विकास खंड में लगभग 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तिलखोली मोटर मार्ग के संगलाकोटी बैंड से संगलाकोटी गांव तक दूसरे चरण के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पैठाणी स्थित राहु मंदिर पैठाणी परिसर में चल रहे सौंदर्यकरण और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज की गई। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण, जबकि शेष शिकायतों के त्वरित निस्तारण के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हरिद्वार में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शंकराचार्य चौराहे पर बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनाए गए। साथ ही भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी गई। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर नैनीताल जिले में जगह जगह निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन। इन शिविरों के माध्यम से आमजन को योग के प्रति जागरूक कर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पे। लीजिए श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित कुमार बोस का तबला वादन।

0: और टारगेटेड रही कि सिर्फ पॉलिसी ना हो, लेकिन उस अब शायद इम्प्लीमेंटेशन ऐसी रहेगी कि सच्ची में लोगों को पहाड़ छोड़ के बाहर भागने की ज़रूरत ना पड़े।
1: क्या बात है, बहुत सारे असंख्य श्रोता आपको देश दुनिया में इस समय सुन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर उत्तराखंड के नौजवान, बहुत सारे लोग पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, होम स्टे बना रहे हैं, लेकिन बहुत कम सफ़र हो रहा है उनका तय, फिर वो बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, तो आपके 15 वर्षों के ज़्यादा के अनुभव के आधार पर आप क्या सलाह देंगे ऐसे पर्यटन व्यवसायियों को?
0: सर, ये तो सबसे खुशी की बात है कि हम लोग और हम लोगों के यंगर भाई लोग और हमारे बच्चे जो पहाड़ में पले हैं, पहाड़ में पैदा हुए हैं, वो यहीं पे अपना काम करें। शहरों की जो सच्ची बात है कि भारत के शहर इतने प्रदूषित हैं, इतने डेंजरस हैं कि हम तो नहीं चाहते कि हमारे नौजवान वहाँ पे कष्ट की ज़िंदगी वहाँ पे बिताएं। उससे अच्छा है कि अपनी मेहनत करें, क्योंकि पहाड़ और जो हिमालय क्षेत्र है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, कश्मीर हो, जम्मू हो, इस टाइप का जो प्लेग्राउंड है, इस टाइप की टोपोग्राफी भारत देश में, इस टाइप की स्वच्छता इस देश में और कहीं नहीं है, ये मैं लिखित में दे सकता हूँ। तो जो पहाड़ का नौजवान है वो इकोनॉमिक रीज़न से स्वर्ग छोड़ के जाके नरक में काम करे, ये तो कोई समझदारी नहीं है। अपना स्वर्ग में क्या है कि बेशक रोटी कम मिले लेकिन असली मिले, और घर के पास काम रहे, उसमें अपना कल्चर भी सेव होता है, अपना नेचर भी सेव होता है। एंड मेरे को ज़रूर दिख रहा है कि जब से इंटरनेट हर जगह आ गया है, जब बहुत फ़र्क पड़ गया है पहाड़ में आज के दिन में, और पता नहीं AI आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा, और ज़रूर मेरे को जो दिखता है कि जो पहाड़ का नौजवान है उसका फ्यूचर पहाड़ में नीचे नहीं है सर।
1: शानदार, एक अच्छी होप है, और आने वाला समय नौजवानों के लिए पर्यटन क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है अगर वो पूरी जिजीविषा से काम करेंगे। चलते चलते शिव नंदी को हमें आप कैसे बताएंगे कि यहाँ अलकनंदा भी बह रही है और पूरा जो ग्रामीण परिवेश है, इसके अलावा जो टूरिस्ट यहाँ आए वो उसको और क्या क्या मिलेगा यहाँ पर आकर?
0: सर, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी माँ अलकनंदा जो सामने बह रही है, ये राफ्टिंग एंड कयाकिंग के लिए इंडिया में इतनी नहीं जानी जाती, लेकिन विश्व में इसका नाम है अलकनंदा का, और जो इसके सहयोगी नदियाँ हैं आपकी, मंदाकिनी है, पिंडर है, नंदाकिनी है, बिरई है, धौली गंगा है, ये पूरे विश्व में फेमस है नदियाँ, तो पूरी दुनिया से आते हैं लोग यहाँ पे राफ्टिंग कैकिंग करने के लिए। एंड धीरे धीरे सरकार का सहयोग रहेगा तो हम शिवपुरी ऋषिकेश में इतना जो राफ्टिंग की भीड़ भाड़ है, हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा ये ऊपर आ जाए और ऋषिकेश में भी जो लोड है थोड़ा डाउन हो जाए।
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद शलभ जी हमसे बातचीत करने के लिए।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी इको और ग्रामीण पर्यटन विषय पर पर्यटन विशेषज्ञ श्री शलभ से विनय ध्यानी की बातचीत, और आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की मधुर आवाज़ में ये गीत, जो कि हमने लिया है फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से।

वेलकम बैक दोस्तों. दोस्तों, आज की दुनिया में संगीत बस एक क्लिक की दूरी पर है. मतलब मोबाइल खोलिए, ऐप चलाइए और हज़ारों गाने आपकी प्लेलिस्ट में. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक दौर ऐसा भी था जब पूरा देश एक ही जगह से संगीत सुनता था? और पता है वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी आकाशवाणी. जी हाँ, आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो. दोस्तों, एक ऐसा मंच जिसने सिर्फ खबरें ही नहीं सुनाई बल्कि भारत के संगीत को घर घर तक पहुंचाया. कभी सुबह की शुरुआत भक्ति संगीत से होती थी, दोपहर में शास्त्रीय संगीत की महफिल सजती थी और शाम होते होते फिल्मी गीत दिलों को छू जाते थे. मतलब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो लोगों की भावनाओं, यादों और संगीत का एक साथी था. और दोस्तों, अगर आज हम लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी या किशोर कुमार जैसे महान कलाकारों को इतनी गहराई से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आकाशवाणी का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. आकाशवाणी ने नए कलाकारों को मंच दिया, लोक संगीत को पहचान दी और भारतीय संस्कृति की धुनों को हर गांव और हर शहर तक पहुंचाया. और सबसे एक खास बात, आकाशवाणी ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि संगीत को सीखने और समझने का एक अवसर भी दिया. और दोस्तों, आज भी हमारे कई युवा जो हैं वो रेडियो जॉकी, सिंगर, वॉइस आर्टिस्ट या म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने का सपना देखते हैं. और उनके लिए तो आकाशवाणी एक प्रेरणा है कि आवाज़ और कला की दुनिया में मेहनत और हुनर से अपनी पहचान बनाई जा सकती है. तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है, गाने वायरल होते हैं आजकल, ट्रेंड बनते हैं और कुछ दिनों में गायब भी हो जाते हैं. लेकिन आकाशवाणी ने हमें वो संगीत दिया है जो समय के साथ और भी खास बन गया. वो गाने जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं. तो दोस्तों, अगर आप

आपको संगीत पसंद है तो सिर्फ सुनिए मत, उसे समझिए भी। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पुराने गीतों को सुनना आपकी क्रिएटिविटी और अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत बनाता है, क्योंकि असली कलाकार वही होता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। और शायद यही वजह है कि आज भी रेडियो की आवाज़ सुनते ही एक अलग सा अपनापन महसूस होता है, क्योंकि आकाशवाणी और संगीत का रिश्ता सिर्फ धुनों का नहीं, भावनाओं, संस्कृति और यादों का रिश्ता है। तो दोस्तों, आज का समय चाहे कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, लेकिन जो रेडियो और संगीत की ये जो खूबसूरत दोस्ती है ना, वो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेगी। और इसी के साथ आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम दी मूवी कटी पतंग।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भीड़ में अलग क्यों नजर आते हैं? उनकी बातों में ऐसा क्या होता है कि लोग उन्हें याद रखते हैं, फॉलो करते हैं और उनकी पहचान खुद ही उनकी ताकत बन जाती है। और आज के दौर में तो सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि लोग आपको जानें, समझें और आपकी एक अलग पहचान बने। क्योंकि आज हर इंसान किसी न किसी तरह खुद को दुनिया के सामने पेश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या लोग आपको सिर्फ देख रहे हैं या आपको याद भी रख रहे हैं? और इसी दिलचस्प सोच के साथ अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर युवा के लिए बेहद ज़रूरी बन चुका है, कि आखिर खुद को ब्रांड कैसे बनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फिर इंसान ब्रांड कैसे बन सकता है? लेकिन दोस्तों, आज के समय में इंसान खुद एक ब्रांड है, और खुद को ब्रांड बनाना मतलब अपनी पहचान, अपनी काबिलियत और अपनी वैल्यू को समझना और उस पर निरंतर काम करना। आपका बोलने का तरीका, आपका काम, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, यही आपकी पहचान बनाते हैं। और आज सोशल मीडिया का दौर है, आज के समय में लोग सिर्फ डिग्री नहीं देखते, पर्सनालिटी भी देखते हैं। और अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, सिंगिंग, गेमिंग, टीचिंग, बिजनेस या रेडियो स्टडीज़, तो लोगों को याद रहना चाहिए कि हाँ, ये वही इंसान है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो सवाल है कि खुद को ब्रांड कैसे बनाएं। सबसे पहले तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी स्किल्स पर। एक दिन मेहनत और चार दिन ब्रेक लेने से पहचान नहीं बनती। छोटे छोटे एफर्ट्स हमें रोज़ ही करने होते हैं। और दूसरा, अपनी यूनिकनेस पहचानिए। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात तो होती ही है, है ना? कोई अच्छा स्पीकर होता है, कोई क्रिएटिव होता है, कोई कॉन्फिडेंट लिसनर होता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, कई बार टैलेंट होने के बाद भी हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम शायद खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसीलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। आप बोलना सीखिए और लोगों से कनेक्ट करना सीखिए। और सबसे ज़रूरी, डिजिटल प्रेजेंस। आज सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, करियर बनाने का भी मौका देता है। जो सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि ब्रांड बनने के लिए फेमस होना ज़रूरी नहीं, वैल्यूएबल होना ज़रूरी है। खुद पर काम करना है, अपनी पहचान बनानी है, और ऐसा काम हमें करना है कि लोग हमारा नाम सुनकर हमारी मेहनत को याद करें। और इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम ट्रैक, मीका सिंह और प्रकृति कक्कड़ की आवाज़ में फिल्म मुबारका से।

तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर संपन्न होता है। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें खत द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी द्वारा, निदेशक कार्यक्रम आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रुस्पना पुल। और दोस्तों, हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthdrian@gmail.com। और साथ ही आप हमें अपने विचार व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। आप अपना ख्याल रखें दोस्तों, और आज के लिए मुझे यानी शिवानी कंडवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम सुनने वाली मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ आशीष चौहान सबका स्वागत करूं और स्वागत के साथ ही श्री महासु जी महाराज से प्रार्थना करूं कि हमारे जो जो भी श्रोता है से सभी राजी खुशी चाहिए रहे। श्रोताओं आशा करूं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और हेला का जो हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है से हम आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारा जो इलाका कार्यक्रम है से कोशा कोशा चलता जैसे कि हम रोज की तरह हमारे साथ विज्ञापन होंगे और एला की जो चर्चाएं हैं जैसे पर्यावरण संतुलन के बारे में और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और हमारे ज्वेला का एक कार्यक्रम है हमारी खैरी। हमारी खैरी गढ़वाली मुझ खैरी बोलो कि दुख जो है लोगों का सातत के ऊपर है कि ग्रामीणों की का समस्याएं हैं और सही ये ग्राम सिसई बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल जत जन समस्याएं पर आधारित कार्यक्रम है और जत का प्रस्तुत करता है विनय ध्यानी। और श्रोताओं साथ ही साथ हमारे इलाके जो गीत है चौनसारी गढ़वाली और कुमाऊनी से भी हम आप लोगों को लागे रहने सुनाऊंगे। और श्रोताओं जो कि आजकल आप लोग लागे देख दे कि रोज पानी भी लागे लाग दो और शुरू लागे जैसे कि ठंड का महीना रहा है तो जी प्रकृति का जाए हुए कि भाई कलाई ठंड है तो कलाई गर्मी है और अमुक जो आजकल के समय मुझ जला गर्मी मुझ बारिश ना तो शौकी निकली तो अलाई भी देख करूँ मौसम कोशा की पानी जो तेज रो तो लगे जब भी हम अपने आकाशवाणी केंद्र की तरफ तो लगे होंगे तो अमुक भी जगह कोई की रुकना पड़ो कहीं की ये जो पानी तो लगे तो जा प्रकृति का एक चमत्कार ही बोलो कि कलाई पानी लागो तो कलाई ठंड और कलाई गर्मी। श्रोताओं साथ ही साथ अला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी है 11 मई के दोष भारत मुझ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाऊँ जो तुक अंग्रेजी मुझ बोलो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और ऐसा जो दोष है सा 11 मई 1998 के दोष जो राजस्थान पोखरण मुझ होना था एक सफल परीक्षण जो तुक हम पोखरण दूक भी बोलो तो तुक याद मुझ आ मनाया जाऊँ और भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो बड़ी उपलब्धि तला हासिल करी थी। और श्रोताओं एक जो कारण आजकल हम लागी देख दे कि जगह जगह जो है अलग अलग देशों में युद्ध भी लगी होंगे लाइक करो कि 1998 में हमारे देश ही सोचो कि अमुक जो है परमाणु शक्ति बाजने का एक अवसर जो मिला तला तो त्यों जो है तो तू कई चीज़ें करी तो कोई छा मतलब आपको शक्तिशाली देश बनने के एक और जो अला के समय मुझे हम मेरे परमाणु हथियार होंगे तो जो लोग कोई की ना कोई की जो शक्तिशाली देशों से हम उच्च मतलब अपना हक जमाने की कोशिश भी करो पाए लेकिन जब हम मेरे चीज़ों से हैं भले तत्काल प्रयोग चाहिए ना करो ना कि भाई ये चीज़ें गलत है रोकनी चाहिए लेकिन कहा करो कि जब समय ऐसा है तो अमुक जो है तत्के ऊपर काम करना पड़ो और अला हमें एक मजबूत और विकसित देश

के रूप मुझे लागे उपरांत है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने का उद्देश्य ऐजा भी कि जो युवा है त्यों जो है विज्ञान और तकनीकी के प्रति प्रेरित करना और देश के विकास में तकनीकी के महत्व को समझाना भी। हालांकि समय मुझ जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है और संचार है, कृषि है, अंतरिक्ष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का जो महत्वपूर्ण योगदान है साबित पजाई है। तकनीकी मानव के जीवन एक सरल बढ़ने एक या आसान बढ़ने एक तेज और सुविधाजनक बढ़ने भी बजाय जरूरी है। और तो मुझे आम जगह जगह जो है एतु इससे जो है अवसर है विज्ञान प्रदर्शन या करो, सेमिनार करो, भाषण प्रतियोगिताएं और जागरूक कार्यक्रम भी लाग रो चलाऊँ देखी काई की जो प्रौद्योगिकी दिवस है सा काई मनाऊँ है कतु वास्ते मनाऊँ। श्रोताओं अंत में जाऊँ आप सब लोगों के एक ही बात सो को बोली कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आमुक सब का संदेश दो कि विज्ञान और तकनीकी कोई भी देश की प्रगति की जो आधारशिला है। जब भारत देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना तो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर आमुख आकाश बढ़ना पड़ता। श्रोताओं समय रही 5:49 आओ सुनो एक जौनसारी गीत मोड़े रे मोड़ाइया हारूल महेंद्र चौहान।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, इवली तो सुनी आप लोगों ने, रेबार और रेबार की अगली तो सुनी मोड़े मोड़ाइए हारुल महेंद्र चौहान के श्रम स्वर मुझ। श्रोताओं, आओ सुनो हमारी खैरी ग्राम सिसोई फिरोखाल पौड़ी गढ़वाल की जन समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम और जत का प्रस्तुत करता है विनय ध्यानी।

0: हो जा तो थोड़े से गांव वालों तक वो नहीं जान पा।
1: एक मांग कम से कम सामाजिक कार्यकर्ता भदोला जी ने उठाया कि एक मिनी स्वास्थ्य केंद्र की एक मां जरूरत चिकिला की, खास करे की जो स्वास्थ्य की बड़ी मांग आंद वो हमारे माता बहनों का समय मांग, जो प्रसव का दौरान या गर्भवती महिलाएं छन उनते एक में ही समुचित स्वास्थ्य सेवा मिल जाए, ये का खातिर यह मांग गाँव से सही बेटे होने चे। चला कुछ और ही बात करता गाँव का क्षेत्र का लोगों से। गाँव सिसई में जो हमारा जवान दगड़ा छन और खास करी के विद्यार्थी छन उनसे भी आवा बात करता और जनता कि ऊँख समण में कोई खैरी चे या सब कुछ भल चलने चे। आप अपनो क्या चे?
2: बजरंग पोखरियाल।
1: बजरंग पोखरियाल नो तो सकत धरियो भाई। क्या कर देना आप?
2: मैं अभी बारह पढ़ मतलब पेपर दिया।
1: अच्छा, कना गए पेपर पहले दी बताओ
2: जी।
1: तो क्या पढ़ना चो, विज्ञान या क्या?
2: साइंस।
1: अरे वाह। अच्छा, कक जन आप स्कूल?
2: बीरो।
1: तो रोज जन या वक रहो?
2: रोज जन।
1: कितना किलोमीटर चेक बैठ के?
2: पैदल 1.5 किलोमीटर।
1: पढ़े लिखे स्कूल में ठीक?
2: ठीक है, पढ़े लिखे।
1: अच्छा, अगर खास करे कि हम इंटर लेवल की बात करा तो जो हमारा विद्यार्थी छन उन समय में बाकी बच्चा तो देख साहब कोचिंग भी करना ट्यूशन भी पढ़ना, पहाड़ का बच्चों का समय खास करे सिसई का जो शिक्षा व्यवस्था छ वे पर क्या बोल देने के लिए कि आप जवान छन इंटर करना छन बोल सकते ना आप?
2: ठीक है, शिक्षा व्यवस्था तो पर काम काजी लोग रहती पहाड़ा का तो पहली बात है चापते फिर ध्यान काम रहती बाइक चल सब जगह करण पड़न फिर पढ़े पर भी फोकस।
1: अच्छा, एक बात क्या सोचियो बजरंग आपन?
2: एक बात अभी रिजल्ट आने तक नहीं सोचियो, एक बात ही सोचना।
1: अच्छा, सिसई का जो विकास कार्यक्रम छ और जो जन समस्याएं छ ऊपर हम यू काम बातचीत करना छो तो आप क्या मानना छ कि गाँव में विकास का क्या कार्यक्रम होने चाहिए? एक नई सोच है आप समय में, आप बताओ क्या होना चाहिए? या खौरे सड़क भी चाहिए सब कुछ
2: प्लान रोकना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ोतरी हुई
1: और बढ़ोतरी कन के जब लोग स्वरोजगार कर ला ये गाँव में तो स्वरोजगार का खातिर कोई कार्यक्रम चलना चाहिए उनका बाबत आपसे बड़ा भेजी जो छे ना जो रोजगार खुजाना चाहिए वो देखना चाहिए आपके यहाँ कुछ अपन व्यवसाय करना चाहिए
2: जन कोई दिहाड़ी मजदूरी करनो कोई अपूर मतलब पहाड़ी चीज भी करना जी कोई खेती बाड़ी।
1: धन्यवाद। हमारी खैरी में अब कुछ और जवान दगड़ियों से बातचीत कर दा। आप अपनो क्या चे?
3: पहले तो सभी थे नमस्कार, मेरा नाम चे सचिन कुमार, मिछु सिसे गांव बिरोखाल विकास खंड को और सभी थे नमस्कार और सभी थे मैं इन बताना चाहूँ कि हमारे गांव में क्या क्या परेशानी छी और क्या क्या होना चाहिए। जो मेरा साथी दगड़े छी मी दगड़ पड़ा छी बड़ा भैजी छी वो सब यह गाँव छोड़ के चल गई मतलब अपर नौकरी के लिए परिवार पलन तो नौकरी करना जरूरी है पैसा कमाना जरूरी है आजकल बिना पैसा कुछ नहीं होना। मैं देखो छो कि मतलब आधे से ज़्यादा मेरा जो दगड़े छी वो जाए होटल लाइन में क्या लगे यक्त बेरोजगारी तो इतना ज़्यादा छ कि मतलब इन समझ लिया तुम कि जो हमारे गाँव छ आधा गाँव तो खाली हो गया क्या कि व्यवसाय कुछ है नहीं चा बेरोजगारी चा और पूरा तो होना नहीं ची जरा बिना पानी की बहुत समस्या चा अजगाल तो मतलब पानी भरपूर हुई चा
1: मैं देखी बोडी बाड़ा हाथों में ढूंगा लेके बांदर कचाना चन है।
3: हाँ, इन हो गई कि मतलब जो आसपास खेती छा वो होनी नहीं चाहे जंगलों में आग लगनी चाहे जंगलों में कुछ रही नहीं तो जो बांदर छी उसी घर आप इधर आना डरना भी नहीं डूंगलो।
1: विकास का कार्यक्रमों का खातिर कोई लाभार्थी कोई जो आंदगड़े इंच की जेल अपन स्वरोजगार के सरकारी योजना से शुरू करी हो या
3: देख ला तो दुई चार गिणी की लोग छी जो यख मतलब अपन स्वरोजगार चलाना छी बाकी मैं देखू चुकी सब तो बहर चल गई ना और यख मतलब कुछ होनो नहीं छ ना स्वास्थ्य विभाग सही है शिक्षा मतलब थोड़ा बहुत ठीक है पर जन आप इंटर से अपर वे में जेला तो यह कुछ नहीं है बी ए वो अब हर कोई बी ए करना नहीं चाहूँ अब जन मेरी साइंस साइड चाहे तो मैं चाहूँ चाहे कि मैं बी एस सी करूँ या कुछ मेडिकल कोर्स करूँ तो अब आस पास ढूंढ जाए पर पौड़ी में तो कख नहीं मिली।
1: अच्छा, यख डिग्री कॉलेज का नजीक में
3: यख च बी दिखा लम च वक बी ए एम ए यू कोर्स ही बी एस सी शायद अब जुड़नी चे पर अब जुड़नी पर मैं लगन नहीं कि मतलब जुड़ी तो मतलब देखना चाह अभी कि कुछ नहीं जन पॉलिटेक्निक चाह बिरोखाल हम बिरोखाल हम चाह तो वक सिर्फ एक ही वो च सिविल ही सिविल तो जो अगर मैं जन साइंस बटिक छूँ तो मैं फार्मेसी करना चाहूँ चाहे तो मैं थे वक एडमिशन नहीं मिल तो मैं थे जान पाओ वहाँ चक्र में रुद्रपुर तो मैं गढ़वाल बटे कुमा जाऊँ छूँ अब गढ़वाल में कुछ है ही नहीं अब जान चे तो सीधा श्रीनगर च श्रीनगर में फिर हमारे रहन खाना जरा व्यवस्था नहीं चाहिए तो रुद्रपुर या रुद्रपुर जान पाओ मैं थे।
1: धन्यवाद, शुभकामना। माता बहनी ये बात सिसई के घास भटकाना छन डांड बटे के अपन खैरी का दगड़ में घास ले आना छन तो बताओ सुबेर बटे कर बेखुंदा तक खैरी खैरी छन लेकिन जो यख के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता छन आशा कार्यकर्ता छन या महिला मंगल दल की जो लोग छन आवा उनसे बात कर दा। आप अखनो क्या छे?
4: शोभा देवी।
1: शोभा जी, आप आंगनबाड़ी में छन?
4: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।
1: और कितना बच्चा छन आंगनबाड़ी में?
4: चार बच्चा तीन से छह वाला छी।
1: अच्छा।

0: बटे 3 साल होला 6 बच्चा।
1: क्या क्या दिन दिन आप तब पोष आहार में?
0: आजकल पोष आहार कुछ नहीं, चिप्स छी हर बा कुछ नहीं।
1: आप एक
0: गोरा का पैसा चलना छी आजकल वो आना छी बच्चों का।
1: अब ये बात में गांव सिसई की जो महिलाएं छन ना उनका समय जो खेल छ घास लकड़ू स्वास्थ्य ये पर बात करूँ छो और मैं देख हाल की दूर बटक आप घास लेना छन कक बटे लेना घास
0: घास हम बहुत मैं तिमल छोड़ बल लेना छ डान बटे
1: और के बा पेट गे छ घास को
0: ये छ बा चल गयो
1: और अब आना छो यो
0: तो रोटी भी कुछ नहीं खाई छी।
1: तो अब आप ही बताओ कि और क्या समस्याएं छन माता बहनों का समय में स्वास्थ्य की बात कर ले।
2: स्वास्थ्य भी वो एक परेशानी अल्ट्रासाउंड से वाले वो हॉस्पिटल में हम लोग को कोई करो नहीं वो सिर्फ गर्भवती खड़ी हमारे का जाना अल्ट्रासाउंड कराना खड़ी हमारे पेट में पत्थर हुई थी है हम तो वाला ये सुविधा तो दिन से कम से कम सरकार थे।
1: तो स्वास्थ्य केंद्र कक छ
2: स्वास्थ्य केंद्र बिरु खाल
1: और कोई एक मात्र छोटू स्वास्थ्य केंद्र नहीं छ
2: एम सीसाई में छ
1: पर सुविधा नहीं छ
2: दवे मिल जानी इंदर दूर दा की पर जन अल्ट्रासाउंड कराना को कोई भी वो करा मतलब हम तो रामनगर कोर द्वारा का इन जान पड़ो।
1: माता बहनियों ने बताया कि स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या छ और जो खास करी की जांच छ शारीरिक वे का खातिर यूं था बिरु खाल जान और वक भी कुछ कुछ सुविधा नहीं मिलता वो बोल देन के साहब गर्भवती महिलाओं को हूं अल्ट्रासाउंड बाइक नहीं हूं तो ये तरह की समस्या लेके ये लोग अपन जीवन यापन करना छन खेती बाड़ी छन गोर बछुर पड़िया छन उनका खातिर घास लकड़ लाना छन जंगल बटे। गांव सिसई में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छ और खास बात यह छ कि यखा का जो माता बहन छन उनके समय सबसे बड़ी खैरी स्वास्थ्य की छे। तो ये वेलनेस सेंटर में जो विभाग का तरफ बटे काम करना छन उनसे बात कर दा। नमस्कार आप अपनों क्या छे?
3: नमस्कार मेरा नाम सोनम रावत है और
1: सोनम आप ही बताए ना हम तक कि वेलनेस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं छन माता बहनों का खातिर।
3: एक हम ना लोगों तक दवाई की सुविधा मिलती मतलब जैसे ओपीडी की सुविधाएं होती है ई संजीवनी की सुविधा भी हम देते हैं जिसमें क्या होता है कि हम मतलब लोगों की बात डॉक्टरों से करवाते हैं ठीक है मतलब ऑनलाइन के थ्रू। इसके अलावा हम गांव में जाके बीपी शुगर भी चेक कर दन।
1: अच्छा एक बात बताओ दे जो टीकाकरण को कार्यक्रम जो वे तक के रूप में आप संचालित कर दन।
3: टीकाकरण का जो काम है वो मेनली हमारी ANMs का होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि टीकाकरण जितने हमारे क्षेत्र में जितने गांव आते हैं वो सब लोग मतलब महीने में एक दिन यहाँ पे टीकाकरण का दिन रखा जाता है तो वहाँ पे सारे लोग इस दिन टीकाकरण के लिए आते हैं।
1: आप अपनों क्या चाहिए?
4: लक्ष्मी देवी हमारे टाइम पर बन चाहे मिलन केंद्र बन चाहे तो ये खाल उल बन चाहे तो खाल चाल बन चाहे। हाँ
1: तो माता बहनों का छोड़ बटे क्या मांग छ सरकार से आप कि गांव सिसाई में हम तो यू दियो न तो यू इन होनु छ हम खैर से परेशान छो।
4: खैर के कारण तो यू सर पलायन हो गया इन वाला लोग बाहर चल गई सब या जबकि परेशान छ कोई साधन नहीं छी यख बच्चों खंड पढ़े खंड मतलब ढंग से स्कूल नहीं छी मेडिकल वो नहीं छी सुविधा नहीं छी यख ढंग की।
1: यख क्षेत्र का जनप्रतिनिधि छन ना यूं को क्या रुझान रहे और खास करी आप सिसई गांव की जन समस्याओं का प्रति
4: विधायक जो लोग थे वो बस वोटा के टाइम पर देखे नहीं हम तो बस वोटा के वो वोट मांगना वो एक बात तो देखे ना नहीं फिर आप 5 साल में फिर आप आला।
1: गांव सिसई में जो जनप्रतिनिधि छन वो सुस्त छन उदासीन छन और सिर्फ वोट का वक्त पर अंदन लेकिन ये गाँव में स्वास्थ्य शिक्षा और वो भी उच्च शिक्षा और दगड़ा दगड़ी यख रोजगार की समस्याओं की बात यख का लोग करना छन। गांव सिसई बीरों खाल मा आने वाल समय कुछ न कुछ विकास का कार्यक्रम ले कालो ई कामना का दगड़ी मैं विनय ध्यानी लौटनो छो गांव सिसई बीरों खाल बटके अपन आकाशवाणी स्टूडियो।
5: श्रोताओं एबिलेती सुनिया मई हमारी खैरी ग्राम सिसई बीरोखाल पौड़ी गढ़वाल के जनसमस्या पर आधारित कार्यक्रम जितका प्रस्तुत करता था विनय ध्यानी। श्रोताओं जैसे कि हम ये भी सुनो भी कि गांव के जो लोग हैं त्यों की जो समस्या है सी जो है छोटी छोटी समस्या है कि हॉस्पिटल ना थी या शिक्षा या काबलों में जो गाँव की सड़क है सही ना थी ठीक और इसी बात ईशो को सब लाइक आई कि जो गांव के लोग हैं त्यों सबसे बड़ी जो हमें ऐसी चीज़ें देवा तो भी सब आकाश पड़ दे जो हमारी बड़े बड़े शहर है बड़े बड़े क्षेत्र है त्यों की बात आई क्यों कि हमारे यहाँ हमारे तो मेट्रो है हमारे तो हवाई जहाज हमारे तो लेकिन जो गांव का लोग है जो अमुक त्यों का विकास पड़ला करना त्यों के ऐसी चीज़ें पड़ती देनी और जो गांव के बच्चे हैं त्यों को शिक्षा से अमुक जोड़ने हैं तभी जो हमारा देश प्रगति करता हमारे जब गांव प्रगति कर ले तभी हमारा देश प्रगति करता और हम सब जो है आगे से बढ़ते हम ही खाली जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं त्यों ना विकसित करने बल्कि जो गाँव के दूर दराज के छोटे

छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं त्यों व्यामोह जो है मजबूत पढ़ने त्यों व्यामोह त्यों का भी विकास करना कि जो गांव के लोग हैं त्यों गांव का ही रोजगार शोकला मिली त्यों को जो रोजगार पढ़ने जो त्यों का आपड़े 200-300 किलोमीटर जब दूर है पढ़ लो जानो या कोई कई लोग ऐसे बोसो जो 1000 किलोमीटर दूर जाओ रोजगार के वास्ते और तुत के बाद सो गाँव दे वापिस आई ना फेरा थी। तो ये तो सरकार एक भी सोचना पड़ दो और जो गांव के लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो नौकरी के वास्ते बाहर जाऊँ त्यों भी कोई की ना कोई की वापिस आना ही पड़ दो तभी हम अपने गाँव में कागज अशोक दे बढ़ाई अपने क्षेत्र कागज अशोक दे बढ़ाई और अपने जो देश है तो ब्याह में तभी कागज अशोक दे बढ़ाई। श्रोताओं आओ अब आप लोग नो गढ़वाल की तरफ और आओ सुनो एक गढ़वाली गीत गौतम देव के स्वर मुझ।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड टेक
0: सुनने में आएगी
3: आज की खबर देख
4: पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: श्रोताओं अगली तो सुनिए आप लोगों रेबार और रेबार की अगली तो सुनिए गढ़वाली गीत बसंती बोए गौतम देव के स्वर में श्रोताओं कार्यक्रम में और आगे बढ़ो और अब आप लोगों का नयो कुमाऊं की ओर आओ सुनो जो कुमाऊनी गीत ज्योति उप्रेती के स्वर मुझे

0: पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आगामी मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य स्तरीय तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सेना के शौर्य के कारण आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उन्होंने सेना के साहस और शौर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि सेना के साहस, समर्पण और त्याग के कारण दुश्मन कभी भी भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में एक सटीक रणनीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों हमारी सेनाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया, वीरता का परिचय दिया, शौर्य का परिचय दिया और पाकिस्तान को 4 दिनों के घुटने के बल आने पर मजबूर होना पड़ा। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर सेना हो गई है। बड़े बड़े जो रक्षा के उपकरण है आज भारत बना रहा है, उसकी शक्ति को भी पूरे विश्व ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। आज रक्षा उपकरणों के निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया की टॉप सूची के देशों में शामिल हो गया।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
4: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाश

0: आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: आगामी मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने आज देहरादून में राज्य स्तरीय तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कौशिक ने कहा कि सभी रेखा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF और अन्य एजेंसियां समन्वय के साथ 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य करें। उन्होंने प्रदेश भर में नालों और नालियों की सफाई के लिए विशेष अभियान संचालित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून शुरू होने से कम 2 बार इनकी सफाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए, ताकि जल भराव और बाढ़ जैसी स्थितियों को रोका जा सके। श्री कौशिक ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार टीमों की पूर्व तैनाती की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में राहत व बचाव कार्यों में देरी ना हो।
2: हमने आपदा की दृष्टि से सभी पहलुओं पर विस्तार से यहाँ चर्चा की है। सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश यहाँ से दिए गए हैं कि आप आपदा की दृष्टि से अपने जिले में अभी मानसून सीजन प्रारंभ होने से पहले जो वहाँ के जिले के अंतर्गत ऐसे नाले हैं, नालियाँ हैं, खाले हैं, उन सबको तत्काल सफाई व्यवस्था उनकी सुनिश्चित करें और प्रभावी ढंग से करें। और सभी अधिकारियों को ये आवश्यक निर्देश दिए गए हैं विभाग वाइज कि आप आपदा की दृष्टि से आने वाले समय में बहुत ही इस मानसून सीजन में प्रभावी ढंग से आप तैयारी करिए, कहीं कोई इस प्रकार की घटना होने की स्थिति में तत्काल वहां रिलीफ दिया जा सके।
1: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज लोक भवन में आयोजित लोक मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून जिलों से आए लगभग 20 व्यक्तियों ने अपनी विभिन्न समस्याएं और सुझाव राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने सभी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार और निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने शिकायत निवारण अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी मामलों को संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रेषित कर शीघ्र समाधान की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। राज्यपाल ने कहा कि लोक भवन में समय समय पर आयोजित होने वाले लोक मिलन कार्यक्रमों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं, विशेषकर पूर्व सैनिकों को सीधे सुनना तथा उनके समाधान के लिए संवेदनशील और प्रभावी पहल करना है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों ने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। हरिद्वार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 66 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 30 का मौके पर निराकरण किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों द्वारा जो भी समस्या दर्ज कराई जा रही है, उनका प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।
3: अभी फोकस ये है कि जो भी शिकायतकर्ता हमारे पास जनसुनवाई में एक बार आते हैं, उनको पुनः न आना पड़े और साथ ही शिकायतकर्ताओं को त्वरित निस्तारण हो, इसके लिए आज कई ऐसी शिकायतें थी जिसमें साथ ही में अधिकारियों को भेजा गया शिकायतकर्ता के साथ मौके पर निरीक्षण करने के लिए और अगर कोई समस्या उसका तत्काल निराकरण हो सके। इसके अतिरिक्त CM हेल्पलाइन में जो 10 शिकायतें हैं उसका भी रिव्यू किया गया। उन शिकायतों में जिनमें 36 दिन से अधिक शिकायतें जिन अधिकारियों के समीप उनके पोर्टल पर दर्ज है, उनको शो कॉज नोटिस भी दिया जाए।
1: उधर बागेश्वर में आयोजित जनता दरबार में आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी RC तिवारी ने अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
4: कुछ शिकायतें जो भूमि संबंधित थी वो SDM को निर्देशित किया गया है। कुछ इसमें बिजली के बिल के और बीच में आंधी तूफान की वजह से बिजली लाइन डिस्टर्ब होने की थी, उस पर भी बात हुई है। एक दो प्रकरण लोक निर्माण विभाग के भी थे, उनको निस्तारित करने के लिए कहा गया है। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो बजट से संबंधित होती हैं, तो हमारे विभागों की जिम्मेदारी है कि वो कंसर्न शिकायतकर्ता को ये बता दें भाई इसमें इतने बजट की आवश्यकता है और इतना समय इसमें बजट स्वीकृत कराने में लगेगा। उसी की वजह से वो कन्फ्यूजन की वजह से शिकायतकर्ता दोबारा आता है, तो इसको आगे देखा जाएगा। इसका समीक्षा जो है हर सप्ताह की जाएगी।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। आगामी

मानसून सीजन को लेकर आपदा प्रबंधन व पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य स्तरीय तैयारियों की समीक्षा की और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक मिलन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और दूरस्थ क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, ग्राम जगत कार्यक्रम की दूजी पाली मुझ आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आशीष चौहान और श्रोताओं, अला में बात कर दे पर्यावरण संतुलन के बारे में। पर्यावरण संतुलन से ऐसा अभिप्राय कि प्रकृति के विभिन्न घटक जैसे कि जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य के बीच जो आपसी तालमेल और संतुलन बनाए रखो तत्से है। जैसे प्रकृति के सारे तत्व एक दूसरे के साथ संतुलित रूप से कार्य करो तो भी पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन दो के बीच अनुकूल रूप बाजी और ऐसा जो संतुलन है सादरत्याच जीवन के अस्तित्व के वास्ते बेजाई आवश्यक है। श्रोताओं, प्रकृति अमुक जो है हर जीव एक विशेष भूमिका प्रदान रखी करी। जैसे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो है और आम कावल में ऑक्सीजन छोड़ो है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करो। ऐसे जो तुले जो जीवधारी जैसे ऑक्सीजन छोड़ो तो अमुक जो जीवधारी है त्यों को शुद्ध हवा मिलो और जो नदी है और जल स्रोत है से जीवों की प्यास के वास्ते और कृषि कार्यों के वास्ते भी बजाय आवश्यक है। जीव जंतु खाद्य श्रृंखला का बजाय महत्वपूर्ण भाग है। जे यूं तत्व मुझे कुतुई का भी आवश्यकता से ज़्यादा मैं प्रयोग करूँ तो हमारी पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़े नोटो। वर्तमान समय में जो प्राकृतिक जो पर्यावरण का संतुलन है तो जो बिगड़ने का जो कारण है जाए उसमें एक कि जो हमारी जनसंख्या है से बजाय तेजी से लागी बढ़ती और जो जैसे जंगलों की कटाई है, प्रदूषण है, प्लास्टिक है, इसका भी हम ज़्यादा उपयोग लागी कर दे, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन लागी करता या भी जो हमारा पर्यावरण का संतुलन है तो उसके वास्ते कोणिशा ठीक ना थी। जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और भूकंप जशनी आपदाएँ लगी आँदी। तो हम सबक जो है इसका विशेष ध्यान पड़ता रखना कि जो अमुक प्रकृति देने लगी तत्का हमें सही उपयोग करना और तत्के जो हम चीज़ है तो सही तरीके से चलाने के वास्ते हमें ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। श्रोताओं, अब आप लोगों को एक बार फिर हूँ जौनसार की तरफ लू, लेकिन तत्की आगे सुनो ये रह बार और जो जौनसारी गीत है सुबह रोना रातो बियाणी अंकित सहवाल के स्वर मुझ।

पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं, अभी तो सुनिए आप लोग जानसारी गीत, और अबे समय रहे उत्तराखंड मुझ कड़वाली समाचार का, आओ सुनो कड़वाली मुझ प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटाया गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में रुचि रावत। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत का दृष्टिकोण थे आने वाला 1000 वर्षों तक प्रेरित कर दिरालू। प्रधानमंत्री चार धाम और देश का अन्य तीर्थ स्थलों तय भारत की आस्था और आर्थिक प्रगति को महत्वपूर्ण स्रोत बताए। श्री मोदी पश्चिम एशिया संकट का बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना निलीन ईंधन की खपत कम करण और विदेशी मुद्रा संरक्षण में सहयोग करण को आग्रह कारी। और मौसम विभागन अगले 2 दिनों खुणे राज्य का विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बरखा को ऑरेंज अलर्ट जारी कर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोली कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा को प्रतीक। उन बोली कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत को उत्सव नहीं बल्कि यू आने वाला 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बढ़लू।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव तय संबोधित करद भगत प्रधानमंत्री ने बोली कि सोमनाथ लुखू तय यू याद दिलान कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबा समय तक मजबूत से खड़ू रह सकत जब वो अपना जड़ों से जुड़ू रहा। उन बोली कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत है न तो झुके सकद और न ही दबे सकद। प्रधानमंत्री मोदी ने बोली कि उत्तराखंड स्थित चार धाम और देश का अन्य तीर्थ स्थल न केवल भारत की आस्था और सामाजिक व्यवस्था का केंद्र छिन बल्कि वो देश की आर्थिक प्रगति का भी महत्वपूर्ण स्रोत रहने।
2: भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे। आज आप देखिए चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि केंद्र सरकार की प्रयासों का कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करुणो छ। श्री मोदी ब्याली तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष खुणाए पेट्रोल और डीजल को संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचण, सोने की खरीदारी निकरण और स्थानीय वस्तुओं तय प्राथमिकता दीन जन उपाय अपनाने की अपील करी।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

0: बोली कि प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से करी अपील, केवल आर्थिक बचत खुनैनी बल्कि आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम च। उन विश्वास व्यक्त करी कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री का आह्वान है जन आंदोलन को रूप दियाली।
1: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: राज्य का गढ़वाल मंडल में चारधाम यात्रा अपना चरम पर च और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखने को मिलनो छ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं को जन सैलाब उमड़ो छ। ब्याली बद्रीनाथ धाम में 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं भगवान नारायण का दर्शन करीन। वखी केदारनाथ धाम की यात्रा का खातिर भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचना छिन। मध्य प्रदेश का बालाघाट बटे आया श्रद्धालु डॉक्टर अंकित असाटिन अपना 1.5 साल का नौना दगड़ बाबा केदार का दर्शन करीन। ये अवसर पर उन चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं खुणे राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आभार व्यक्त करी।
2: परिवार के साथ यहाँ यात्रा करने आया हूँ और आज हम लोग ने केदारनाथ धाम की यात्रा की है। केदारनाथ यात्रा पे मुझे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला, जो यहाँ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उनका, रुद्रप्रयाग पुलिस का, कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे की है। और आज मैं एक 1.5 वर्ष के बालक को लेके यात्रा कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई यात्रा में परेशानी नहीं हुई है, जिसके लिए मैं मंदिर समिति का और रुद्रप्रयाग पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऊंचे पहाड़ पर लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद इतनी अच्छी सुगम व्यवस्था देश के जो अलग अलग स्थानों से यात्री आए उनके लिए की है।
0: मौसम विभागन अगले 2 दिनों खुणे प्रदेश का विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और प्रतिकूल मौसम की संभावना थे दिखत ऑरेंज अलर्ट जारी करूँ जो। विभाग की चेतावनी थे देखी कि गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेन चारधाम यात्रा पर आने वाला श्रद्धालुओं से अपील करी कि वो यात्रा का दौरान मौसम की ताजा जानकारी अवश्य प्राप्त करें और पूरी सावधानी का दगड़ी अपनी यात्रा की योजना बढ़ाए। ये बीच राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमनल आज आपदा से संबंधित विभागों का अधिकारियों का दगड़ी एक महत्वपूर्ण बैठक का उन बताया कि बैठक में आपदा और मानसून सत्र से पहले आवश्यक तैयारियों का संबंध में दिशा निर्देश देगिन।
3: मानसून के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, उन विभागों के साथ में और सभी जनपदों के साथ में एक अत्यंत आवश्यक बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में आपदा के तैयारी को लेकर मानसून सत्र के पहले क्या क्या तैयारी हमें की जानी है डिटेल में निर्देश दिए गए हैं। जैसे शहरी क्षेत्र में जल भराव से बचने के लिए नाले नालियों की सफाई का कार्य, जहाँ पे नदियों का स्तर ऊँचा हो गया है उसके ड्रेजिंग के कार्य, मानसून अवधि के पूर्व जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां रास्ता बंद होने के कारण आवागमन में समस्या होती है, ऐसे स्थानों पर आवश्यक राशन, खाद्य सामग्री, दवाइयां, पशुओं के लिए चारे, उनका एडवांस में संग्रहण करने के लिए, सड़कों को ठीक रखने के लिए जहां मार्ग बंद होता है वहां पर JCB मशीनें और आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती के लिए, अगर कहीं आपदा की स्थिति बनती है तो हेली इवैक्यूएशन अगर आवश्यकता पड़ती है तो लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, जो उपकरण वगैरह हमारे पास हैं उनको ठीक ठाक रखने के लिए, समुचित रखरखाव संचालन का अभ्यास करने के लिए विभागों को क्या क्या कार्रवाई करनी है डिटेल में निर्देशित किया गया है।
0: ग्रामीण विकास और रोजगार थे नई दिशा दीन केंद्र सरकारन 11 मई 2026 गुणे VBG रामजी अधिनियम 2025 तय अधिसूचित करेली। यू अधिनियम आगामी 1 जुलाई बटे देश भर का ग्रामीण क्षेत्रों में लागू वालो। ये अधिनियम का लागू होना का दगड़ी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 वी तारीख बटे निरस्त मने जालू। यहां थे विकसित भारत 2047 का राष्ट्रीय विजन का अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा में एक बड़ू बदलाव का रूप में देखे जाणू छ। नई व्यवस्था को उद्देश्य समेकित भविष्य उन्मूल और उत्पादकता आधारित ग्रामीण परिवर्तन तय बढ़ावा देण छ। नया प्रावधानों का तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो का वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना का इच्छुक वाला ऊंत है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दे जाली।

0: सरकार को बुलंद चीकी, यहाँ से आजीविका सुरक्षा मजबूत वाली, ग्रामीण आय मा वृद्धि वाली और ग्राम स्तर पर सतत विकास तय बढ़ावा मिललो। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा मा अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षा फल सुधार परीक्षक होने 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते। उत्तराखंड बोर्ड का सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टिन बताया कि परीक्षा फल सुधार परीक्षा खुणे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई बटे शुरू वेगी और 24 मई तक जारी राली। उन बताया कि छात्र आवेदन पत्र 20 मई तक जमा कर सकदीन। उन बताया कि 10वीं परीक्षा मा अधिकतम द्वि विषयों मा अनुतीर्ण छात्र छात्राओं थे परीक्षा सुधार मा शामिल होने को मौका मिललो, जबकि 12वीं मा एक विषय मा अनुतीर्ण छात्र अंक सुधार परीक्षा तय दे सकत। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत का दृष्टिकोण था आने वाला 1000 वर्षों तक प्रेरित कर दिलालू। प्रधानमंत्री ने चारधाम और देश का अन्य तीर्थ स्थलों तय भारत की आस्था और आर्थिक प्रगति को महत्वपूर्ण स्रोत बताए। श्री मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना निलीन ईंधन की खपत कम करण और विदेशी मुद्रा संरक्षण में सहयोग करने को आग्रह करी। और मौसम विभागन अगले द्वि दिनों खुणे राज्य का विभिन्न हिस्सों विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में बरखा को ऑरेंज अलर्ट जारी करूँ। यहाँ के दगड़ी ही गढ़वली में प्रादेशिक समाचार को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: श्रोताओं इतनी की दुमुख भी इजाजत अलग जो ग्राम जगत कार्यक्रम है साहित्य का समाप्त हो। नमस्कार।
2: पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

FM 100.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत, मेरे यानी चंदा मलासी के साथ। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तकनीक की उड़ान, विकसित भारत की पहचान। जी हाँ दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत समर्पित करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस को, जो हर साल 11 मई को मनाया जाता है। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीक विशेषज्ञों की मेहनत, नवाचार, उपलब्धियों को सम्मान देने का दिन है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी वैज्ञानिक शक्ति का परिचय दिया था। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस मनाया जाता है। साथियों, आज का युग तकनीक का युग है। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में तकनीक से जुड़े रहते हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष, सूचना तकनीक, डिजिटल सेवाओं और चिकित्सा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। मैं अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगी कि आज का समय नवाचार और नए विचारों का है। यदि युवा तकनीक का सही उपयोग करे तो वो न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आइए हम सभी तकनीक का सही उपयोग करें, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मिट्टी भी बिल्कुल इंसान की तरह थक जाती है? लगातार फसलें लेने और रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से जमीन की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने इसका आसान और सस्ता समाधान भी हमें दिया है, हरित खाद। जी हाँ, ढैचा और सनई जैसी फसलें हमारी मिट्टी की सेहत को सुधारने में किसी प्राकृतिक डॉक्टर से कम नहीं है। दोस्तों, आजकल मौसम बदल रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है और हर किसान चाहता है कि कम खर्च में खेत की उपज बढ़े। ऐसे समय में ढेचा और सनई की बुवाई बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। ये फसलें बहुत तेजी से बढ़ती हैं।

और मिट्टी में प्राकृतिक नाइट्रोजन बढ़ाने का काम करती है। जब इन्हें खेत में पलट दिया जाता है तो ये सड़कर जैविक खाद बन जाती है, जिससे जमीन भुरभुरी और उपजाऊ बनती है। सोचिए, बिना महंगी खाद खरीदे अगर खेत की सेहत सुधर जाए तो इसमें अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इस बार अपनी खेती में हरित खाद को जरूर जगह दीजिए और मिट्टी को दीजिए नई ताकत, नई जिंदगी। इसी संदेश के साथ आइए सुनवाते हैं आपको लोकगीत।

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: पूरे उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है जनगणना। पहले चरण में 25 अप्रैल से 24 मई 2026 तक प्रगणक द्वारा घर घर सर्वे किया जाएगा। आपकी सभी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी। कृपया सही और पूर्ण जानकारी दें, यही आपके क्षेत्र के विकास की नींव है। जनगणना 2027 आपकी भागीदारी, देश की प्रगति। ये सूचना जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, आम को फलों का राजा कहा जाता है और इस समय बागों में छोटे छोटे आम लग चुके हैं। ऐसे मौसम में सही देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि फसल स्वस्थ रहे और अच्छी पैदावार मिले। तो आइए सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता, जिसमें डॉक्टर रश्मि पवार दे रही हैं जानकारी कि आम की फसल की देखभाल कैसे करें, कौन कौन सी सावधानियाँ अपनाएं और कैसे अपने बाग को अधिक लाभदायक बनाएं। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता।
2: सभी किसान भाइयों को हमारी नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रश्मि पवार जी,

0: उद्यान वैज्ञानिक। तो सर्वप्रथम मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैम, जैसे कि हमारे बहुत से किसान भाइयों के आम और नींबू के बागान लगे हुए हैं, तो जैसे कि इस समय हम देख रहे हैं जो अब धीरे धीरे गर्मी शुरू हो रही है, तो ऐसे समय में जो आम और नींबू के जो हमारे पौधे हैं, उनमें हमें कौन कौन से ऐसे समसामयिक कार्य करने हैं जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है मैम, जैसे आपसे हमारा, आम में जैसे फल गिरते हैं इस समय, तो ये फल क्यों गिरते हैं मैम और इसका क्या कारण है?
1: आम में इस समय अगर अप्रैल माह की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी सस्य क्रियाएं हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्वप्रथम तो फलों का गिरना। वैसे तो आम में जिस हिसाब से फूल आता है उस तरीके से फूल का झड़ना हम कह सकते हैं आम है, लेकिन जब वो उससे ज़्यादा हो जाए तो हमें उसका निदान करना पड़ता है। फल गिरने की समस्या से बचने के लिए किसान भाई नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NAA की 20 PPM की दर से या 2 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर अगर वो पौधों पर छिड़काव कर देंगे तो हमें जो है ये फलों के गिरने की समस्या से उन पर नियंत्रण हो सकता है, फल कम गिरेंगे।
0: जी
1: अप्रैल माह में फल का आकार मटर के दाने के बराबर होता है। और दूसरी बात, अगर हम इस समय और दूसरी सस्य क्रिया की बात करें तो हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का छिड़काव भी करना चाहिए। इस माह में आम के बागों में यदि हम पोषक तत्वों के मिश्रण का छिड़काव करते हैं तो हमें फल की बढ़वार में मदद मिलती है।
0: जी
1: आम के फल की इस समय मार्वल अवस्था होती है। मार्वल मतलब कंचे के आकार की।
0: जी
1: से 10 से 12 दिन के अंतराल पर अगर हम 2 से 3 छिड़काव यदि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के यदि इस समय कर
0: कर
1: दें
0: देते हैं।
1: तो इससे फल हमारे अच्छे होते हैं और जो भी उनमें सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है वह भी पूरी हो जाती है।
0: जी तो मैम, जैसे कि इसे भी आपने बताया कि फल क्यों गिरते हैं, और फिर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की आपने बात की कि उसके मिश्रण का छिड़काव इस समय करना चाहिए। एक समस्या और देखी जाती है आम के पेड़ों में, गुच्छा रोग की। तो ये मैम, गुच्छा रोग क्या है और इसका जो नियंत्रण है किसान भाई कैसे कर सकते हैं?
1: देखिए, आम का गुच्छा रोग हमारे उत्तर भारत में आने वाली मुख्य समस्या है और ये तो जो है एक राष्ट्रीय समस्या है आम की। इसका जो है पूरी तरीके से नियंत्रण वो नहीं है, अभी तक ऐसे खोजा नहीं जा सका, लेकिन हाँ प्रबंधन करके हम जरूर जो है इससे कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। फूलों के गुच्छों वाली टहनियाँ जो दिखाई देती हैं, देखिए दोनों में अंतर है।
0: जी
1: आम के टहनी पर फूल आना और गुच्छा बनना दोनों अलग चीजें हैं। जब हमें फूलों के गुच्छे हुए यानी कि बहुत ही पास पास घनी दिखें तो वो गुच्छा रोग होता है, और जैसे ही हमें ये गुच्छे वाली टहनियां दिखाई दें तो हमें उन्हें धारदार व असंक्रमित चाकू से काट कर निकाल दें और उसको दूर कहीं मिट्टी में दबा दें अथवा जला दें, जिससे कि जो बाकी पौधे हैं उसकी टहनियां प्रभावित ना हो।
0: जी और इसके अलावा भी मैम, जैसे कि अगर कोई कीट इसमें लगता है तो उसके लिए क्या उपाय करें किसान भाई, और वो कीट कौन सा है मैम?
1: देखिए, इस समय दीमक का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा आम के वृक्षों में देखने को मिलता है। यदि दीमक दिखती है तो क्लोरपाइरीफॉस दवाई 0.2% की दर से या यूं समझें कि 100 लीटर पानी में 200 मिलीलीटर दवाई मिलाकर यदि हमारे किसान भाई छिड़काव करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, देखिए छिड़काव नहीं, इसका प्रयोग किया जाएगा क्योंकि दीमक के लिए है, तो ये मिट्टी में प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पे थाला बनाते हैं हमें तने के पास में इस दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा।
0: और इसके अलावा मैम, जैसे कुछ और किसान भाई अगर करना चाहें पेड़ों पर तो?
1: इस समय शुष्क वातावरण होने के कारण पानी की कमी हो सकती है और फलों का विकास प्रभावित हो सकता है क्योंकि फल इस समय बढ़त में होते हैं,
0: जी
1: तो फलों के मटर के आकार लेते ही सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए। सिंचाई को प्रत्येक 10 से 15 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। सिंचाई लगातार देने से फलों के आकार में तेजी से वृद्धि होती है। देखिए किसान भाई, यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब फूल आए, फूल आते समय आप सिंचाई ना करें। जैसे ही फूल सेट हो और हमें ये लगे कि वो एक छोटे से दाने के बराबर हो गया है और हमारा फल जो है इस समय सेट हो गया है, उस समय से आप सिंचाई शुरू करें।
0: जी। इसके अलावा भी मैम, कोई और ऐसा कीट जो आम के जो फसल है उसमें लगता हो?
1: देखिए, आम में एक जो है देखा गया है भुनगा, इसको मैंगो हॉपर बोला जाता है, इस समय आम के बागों पर प्रभाव डालता है। अतः आम के भुनगा का प्रभाव होते ही तुरंत हमें इमिडाक्लोप्रिड दवाई का प्रयोग करना चाहिए। इस दवाई के प्रयोग करने से जो है आम का भुनगा रोग जो है इसका प्रबंधन हो जाता है। 1.5 मिलीलीटर दवाई यदि हम देते हैं तो इससे, इसके अलावा यदि हम क्लोरपाइरीफॉस का भी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से या पर 100 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें तो भी हम

0: घुनघे की संख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके अलावा भी जो दूसरा कीट इसमें देखा गया है आम में, वो है फल मक्खी। आम का एक महत्वपूर्ण शत्रु कीट मान लीजिए इसे, ये फल के गूदे को खा जाता है जिससे फल बाजार के योग्य नहीं रह जाता। अतः किसान भाई, इस कीट को सही समय व समस्या से पूर्व ही प्रबंधन करना उचित होता है। फल मक्खी को, फल मक्खी ट्रैप्स कुछ प्रपंच आते हैं जिसमें मिथाइल यूजिनॉल और मेलाथियन होता है के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है। फल मक्खी की जनसंख्या जानने के लिए ये ट्रैप बागों में लटकाए जाते हैं
1: जी। और इसके अलावा भी मैम कोई कीट या फिर कोई इस तरह की समस्या हम देखते हैं अपने आम के पेड़ों में?
0: देखिए, आम के पेड़ों में अभी हमने कीटों का और बीमारियों का प्रकोप देखा। इसके अलावा कुछ ऐसे जो है जिन्हें हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं वो हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक टिप, काला धब्बा पड़ना
1: जी,
0: या आंतरिक नेक्रोसिस
1: जी।
0: यह रोग जो ब्लैक टिप रोग है, ये वहाँ होता है जहाँ हमारे बगीचों के आसपास ईंट के भट्टे होते हैं, वहाँ वाले क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता है और ये फल विकास के समय मिलता है। फल अपरिपक्व पकते हैं, बाजार भाव भी नहीं रहता, परंतु इस रोग को अगर हम समय से नियंत्रण करना चाहें तो बोरेक्स 1% या 1 ग्राम पर 100 लीटर पानी का छिड़काव कर नियंत्रित किया जा सकता है। ईंट के भट्टे दूर होने चाहिए, चिमनी की ऊंचाई 15 से 18 मीटर होनी चाहिए। देखिए किसान भाई, ये बहुत जरूरी है, यदि आप आम का बाग लगाना चाह रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि आसपास कोई ईंट के भट्टे तो नहीं है। अगर आप सुरक्षित लगाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि जो चिमनी की ऊंचाई है वो 15 से 18 मीटर होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम करीब 1.6 किलोमीटर व उत्तर दक्षिण 0.8 किलोमीटर की दूरी में ईंट का भट्टा ना हो। बोरेक्स का 0.6% व कास्टिक सोडा 0.6 से 0.8% का अगर हम 10 से 15 दिन के अंतराल पे फल सेट होने के बाद अगर प्रयोग करते हैं तो हमें जो है ब्लैक टिप की समस्या से बच सकते हैं
1: जी।
0: देखिए, ये जो काला धब्बा पड़ता है, हमारे ईंट के भट्टों से कुछ गैस निकलती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन गैस होती है। ये जो है हमारे पौधे के जो है प्रभावित करती है और काला धब्बा पड़ता है इसमें। इससे ही आंतरिक क्षय, इससे नहीं लेकिन दूसरा जो इसका डिसऑर्डर है आम में, वो हो जाता है आंतरिक क्षय। ये भी बोरोन की कमी से होता है, तो इसके लिए भी 0.8% बोरेक्स या 250 ग्राम बोरेक्स प्रति वृक्ष मिट्टी में मिलाना चाहिए
1: जी। और मैम इसके अलावा भी कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किसान भाइयों को करने चाहिए आम के पेड़ों में?
0: देखिए, इस समय जो है माह में तना व टहनियों के छेदक या पत्ती काटने वाली विविल का भी आक्रमण होता है। इन कीड़ों को मोनोक्रोटोफॉस दवाई के द्वारा अगर 0.05% उसकी दवाई का हम डोज रखते हैं तो उससे नियंत्रण किया जा सकता है।
1: तो मैम जैसे ये तो ही आम की बात, अगर हम बात करते हैं नींबू वर्गीय फसलों की, तो नींबू जैसे कि हमारे किसान भाई प्रमुखता से इसकी खेती करते हैं, तो नींबू के पेड़ों में इस समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और इस समय ऐसे कौन कौन से कार्य करने की आवश्यकता है उनको नींबू के बागों?
0: देखिए, नींबू एक ऐसा पौधा है जिसमें कि कीटों का बड़ा प्रकोप होता है। यह इसमें जैसे सिट्रस माइट इसका मुख्य कीट है, कीट पत्तियों को खाता है जिससे बहुत सारे ग्रे रंग के धब्बे बन जाते हैं, पत्तियों पर धूल ऐसे लगता है कि धूल छिटक गई हो, परंतु अनगिनत प्रौढ़ व शिशु जो है उसके पत्तियों का रस चूसते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.5% दवाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। बागानों में छोटे व नवरोपित पौधों की 1 सप्ताह के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि आपने नया बाग लगाया है तो आप हर हफ्ते सिंचाई करें। जिन स्थलों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहां नमी के संरक्षण के लिए आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं या फिर 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। इससे जो है पानी आपको कम लगाना पड़ेगा
1: जी।
0: देखिए, इसके अलावा जो दूसरे कीट की अगर नींबू में बात की जाए तो वो है सिट्रस लीफ माइनर, या जिसे कहते हैं नींबू का पत्ती सुरंगक, जो सुरंग बनाता है
1: जी।
0: यह कीट नर्सरी, नए व पुराने सभी बागों में नुकसान पहुंचाता है। पूरे देश में यह फैला हुआ है। यह नींबू की सभी प्रजातियों को प्रभावित करता है। लार्वा पत्तियों की निचली सतह पर टेढ़ी मेढ़ी सफेद रंग की सुरंगें बनाते हैं। इसकी रोकथाम हेतु प्रभावित पत्तियों को तोड़कर जला दें या फिर 1 से 1.5 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग किया जा सकता है या फिर रोगोर का भी दवाई का प्रयोग किया जा सकता है।
1: तो मैम जैसे कि अगर हम बात करते हैं खाद और उर्वरकों की, क्या तो इस समय किसान भाई खाद उर्वरक दे सकते हैं?
0: हमारे किसान भाई, कार्बनिक खाद को साल में 4 बार देना चाहिए। 1 वर्ष के पौधे को 100 ग्राम प्रति वृक्ष प्रति वर्ष, 2 वर्ष के पौधे को 150 ग्राम और 3 वर्ष के पौधे को 200 ग्राम, 4 वर्ष के पौधे को

0: 250 ग्राम, 5 वर्ष के पौधे को 300 ग्राम दिया जाना चाहिए। ये बात मैं कार्बनिक खाद की कर रही हूँ। 10 वर्ष के पौधे जब हो जाएं, तो उनको 550 ग्राम प्रति वृक्ष प्रति वर्ष देना चाहिए। देखिए फिर जो है उसके बाद में हम जो है ये डोज बाद में निरंतर वैसी ही रखी जा सकती है। अगर हम सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 500 नौ 950 ग्राम तक जाती है। पोटास की बात करें तो ये 50 100 150 200 250 और 400 ग्राम 10 वर्ष के पौधे को दिया जाता है।
1: जी किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपने सुना डॉक्टर रश्मि पवार जी को, जिन्होंने अभी आपको बताया कि आम और नींबू की जो फसल है उससे में हमें कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं और ऐसी कौन कौन सी सस्य क्रियाएँ करनी है ताकि अपने आने वाले समय में हमको अपने आम के पेड़ों से अधिक और नींबू के पेड़ों से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। तो मैम आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता आम की फसलों की देखभाल विषय पर और डॉक्टर रश्मि दे रही थी महत्वपूर्ण जानकारी। आइए दोस्तों पढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं आपको ये लोकगीत।

दोस्तों, आजकल बारिश के लगातार बने रहने से मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, लेकिन धूप में गर्मी की तासीर काफ़ी तेज़ है। गर्मी अब अपनी असली रूप दिखाना शुरू करेगी, तब तेज़ धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान जहां इंसानों को परेशान करता है, वहीं हमारे बेजुबान पशु भी इसी तपती गर्मी से बेहद परेशान हो जाते हैं। कई बार अधिक गर्मी के कारण पशुओं को हीट स्ट्रोक यानी कि लू लग जाती है, जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और दूध उत्पादन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जब पशु बहुत तेज गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं तो वो हाँफने लगते हैं, खाना कम कर देते हैं और बार बार पानी पीते हैं, और कई बार सुस्ती या बेचैनी भी दिखाई देने लगती है। यदि समय पर ध्यान दिया जाए तो पशु गंभीर रूप से बीमार भी हो सकते हैं। इसीलिए पशुओं को

जब तक। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी कर रही है कार्यक्रम को समाप्त करने का इशारा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें पत्रों के माध्यम से जरूर भूलिएगा नहीं, जरूर बताइएगा। पत्र लिखने का हमारा पता है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे यानी चंदा मलासी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: 100.5 MHz पर शाम के 7:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के दगड़ मी योगिता बिष्ट। पली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारतक दृष्टिकोण के आणवल 1000 सालों तक प्रेरित करते रहल। प्रधानमंत्री चारधाम और देशक अन्य तीर्थस्थलों के भारतक आस्था और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्रोत बता। श्री मोदी पश्चिम एशिया संकटक बीच नागरिकों हेते 1 साल तक शून्य खरीदण, ईंधन खपत कम करण और विदेशी मुद्रा बचाण में सहयोग करनक लीजी को और मौसम विभागल अगिल 2 दिनों के लीजी राज्यक विभिन्न हिस्सों खासकर पहाड़ी इलाकों में द्यो हुणक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा।

0: अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौ की सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देशक शाश्वत आत्माक प्रतीक छू। उन्होंने कौ की सोमनाथ अमृत पर्व सिर्फ अतीतक उत्सव नहन बल्कि यो आणवल 1000 सालों तक देशक प्रेरणा बनी रोल।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरातम सोमनाथ अमृत महोत्सव के संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री कौ की सोमनाथ मैसू के यो याद दिला कि कोई ल देश तबे भौते बखत तक मजबूतील ठार रह सकूं जब वो अपने जड़ों बटी जुड़ी रो। उन्होंने कौ की दुनी कोई ल ताकत भारत के न तो झुके सकी और न दबे सकी। प्रधानमंत्री मोदी कौ की उत्तराखंड स्थित चार धाम और देशक और लय तीर्थस्थल न केवल भारतक आस्था और सामाजिक व्यवस्था केंद्र छी बल्कि उ देशक आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी स्रोत रही छी।
1: भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे। आज आप देखिए चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौ की केंद्र सरकारक कोशिशों कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष कारण हई ऊर्जा संकटक प्रभावी ढंगल प्रबंधन करू रो। श्री मोदी बेई तेलंगाना राजधानी हैदराबादम एक जनसभा में मैसू हेते एक सालक लिजी पेट्रोल और डीजलक संयमित उपयोग, जरूरी नहन तो विदेशी यात्रा है भी बचनक, सुनक खरीदारी न करनक और स्थानीय वस्तुओं के प्राथमिकता देण जस उपाय अपनाण अपील करी।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल कौ की प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों हेते करी गई अपील सिर्फ आर्थिक बचतक लीजी नहन बल्कि यो आत्मनिर्भर और सशक्त भारतक निर्माणक दिशम जरूरी कदम छु। उन्होंने विश्वास जता कि राज्यक जनता प्रधानमंत्री के आह्वान के जन आंदोलनक रूप दे। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। राज्यक गढ़वाल मंडलम चारधाम यात्रा अपूर्ण चरम पर छू और श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह देखने लीजिए मिलू रो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामम श्रद्धालुओं जन सैलाब उमड़ रो। बे बद्रीनाथ धामम 22,000 हबे ज्यादा श्रद्धालुओं भगवान नारायणक दर्शन करी। वहीं केदारनाथ धामक यात्राक लीजिए बहुत संख्या में तीर्थ यात्रियां आ रही। मध्य प्रदेशक बालाघाट बटी आई श्रद्धालु डॉक्टर अंकित असाटील अपन 1.5 सालक भौदगढ़ बाबा केदारनाथक दर्शन करी। यो मौक पर उन्होंने चारधाम यात्राक व्यवस्थाओं के लीजिए राज्य सरकार और जिला प्रशासनक तारीफ करी।
2: परिवार के साथ यहाँ यात्रा करने आया हूँ और आज हम लोग ने केदारनाथ धाम की यात्रा की है। केदारनाथ यात्रा पे मुझे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला, जो यहाँ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है उनका, रुद्रप्रयाग पुलिस का, कि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने यहाँ पे की है। और आज मैं एक 1.5 वर्ष के बालक को लेके यात्रा कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई यात्रा में परेशानी नहीं हुई है, जिसके लिए मैं मंदिर समिति का और रुद्रप्रयाग पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऊंचे पहाड़ पर लगभग 16 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद इतनी अच्छी सुगम व्यवस्था देश के जो अलग अलग स्थानों से यात्री आए उनके लिए की है।
0: मौसम विभाग आने वाले 2 दिनों के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों खासकर पहाड़ी जगहों में दो और मौसम खराब होने की संभावना के देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा। विभाग चेतावनी के देखते हुए गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेल चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं हेते अपील कर रहे कि वो यात्रा के दौरान मौसम की ताज़ा जानकारी जरूर ली लो और पूर्व सावधानी दगड़ अपनी यात्रा की योजना बनाओ। यह एक बीच राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमनल आज आपदा हबे जुड़ी विभागों के अधिकारियों दगड़ एक जरूरी बैठक करी। उन्होंने बताया कि बैठक में आपदा और मानसून सत्र हबे पली जरूरी तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दी गई।
3: मानसून के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं, उन विभागों के साथ में और सभी जनपदों के साथ में एक अत्यंत आवश्यक बैठक आहूत की गई है। इस बैठक में आपदा के तैयारी को लेकर मानसून सत्र के पहले क्या क्या तैयारी हमें की जानी है डिटेल में निर्देश दिए गए हैं। जैसे शहरी क्षेत्र में जल भराव से बचने के लिए नाले नालियों की सफाई का कार्य, जहाँ पे नदियों का स्तर ऊँचा हो गया है उसके ड्रेजिंग के कार्य, मानसून अवधि के पूर्व जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां रास्ता बंद होने के कारण आवागमन में समस्या होती है, ऐसे स्थानों पर आवश्यक राशन, खाद्य सामग्री, दवाइयां, पशुओं के लिए चारे, उनका एडवांस में संग्रहण करने के लिए, सड़कों को ठीक रखने के लिए जहां मार्ग बंद होता है वहां पर जेसीबी मशीनें और आवश्यक मानव संसाधन की तैनाती के लिए, अगर कहीं आपदा की स्थिति बनती है तो हेली इवैक्यूएशन अगर आवश्यकता पड़ती है तो लोगों का रेस्क्यू करने के लिए, जो उपकरण वगैरह हमारे पास हैं उनको ठीक ठाक रखने के लिए, समुचित रखरखाव संचालन का अभ्यास करने के लिए विभागों को क्या क्या कार्रवाई करनी है डिटेल में निर्देशित किया गया है।
0: ग्रामीण विकास और रोजगार के नई दिश दीते हुए केंद्र सरकार 11 मई 2026 हते VBG रामजी अधिनियम 2025 के अधिसूचित कर है। यो अधिनियम अणवल 1 जुलाई बटी देशभरक ग्रामीण इलाकों में लागू है जल। यो अधिनियमक लागू होने दगड़े महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 उई तारीख बटी निरस्त मानी जल। इके विकसित भारत 2047 राष्ट्रीय विजनक अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचे में एक ठुल बदलावक रूप में देखी जा रो। नई व्यवस्था का उद्देश्य समेकित भविष्य उन्मुख और उत्पादकता आधारित ग्रामीण परिवर्तन के बढ़ावा देण छू। नई प्रावधानों के तहत हर गांव परिवार जैक वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करणक इच्छुक हल उनके हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों मजदूरी आधारित रोजगार वैधानिक गारंटी दी जाए। सरकार कुण छू कि यैल आजीविका सुरक्षा मजबूत हेल, ग्रामीण आय मिले वृद्धि हेल और गांव के स्तर पर सतत विकास के बढ़ावा मिलल। उत्तराखंड बोर्डक 10 और 12 परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र परीक्षाफल सुधार परीक्षाक लीजिए 24 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकनी। उत्तराखंड बोर्डक सचिव विनोद प्रसाद सिमलटील बता कि परीक्षाफल सुधार परीक्षाक लीजिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 मई बटी शुरू है गये और यो 24 मई तक चले। उन्होंने बताया कि छात्र आवेदन पत्र 20 मई तक जम कर सकनी। दसम ज्यादातर द्वि विषयों में अनुत्तीर्ण है नंतिनु के परीक्षा सुधारम शामिल होने का मौका मिलल, जबकि 12 में एक विषय में अनुत्तीर्ण है नंतिन अंक सुधार परीक्षा दी सकनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारतक दृष्टिकोण

धर्मकें अणवल 1000 सालों तक प्रेरित करते रहल। प्रधानमंत्री चार धाम और देशक अन्य तीर्थस्थलों के भारतक आस्था और आर्थिक प्रगति के महत्वपूर्ण स्रोत बता। श्री मोदी पश्चिम एशिया संकटक बीच नागरिकों हेतें एक साल तक शून्य खरीदण, ईंधन खपत कम करण और विदेशी मुद्रा बचाण में सहयोग करनक लिजी को। और मौसम विभागल अगिल 2 दिनों के लिजी राज्य विभिन्न हिस्सों में खासकर पहाड़ी इलाकों में द्यो हुणक ऑरेंज अलर्ट जारी कर रो। यह कदगण कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। शाम के 7:40 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए किशोर कुमार की आवाज में शुरुआत करते हैं फिल्म संगीत की, नमक हराम फिल्म से, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून से मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार को प्रसारित होने वाला हमारा विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण, जिसमें हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में घटित उन तमाम बड़ी और छोटी घटनाओं की जो आपको और हमारे युवा साथियों को जाननी जरूरी है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उन तमाम घटनाओं की जानकारियों से जो हाल ही में हमारे देश और प्रदेश में घटित हुई। श्रोताओं, शुरुआत तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव और TVK की सरकार की गठन प्रक्रिया से करते हैं। श्रोताओं, दक्षिण भारत की राजनीति में मई 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने विधानसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया। चुनाव के बाद गठबंधन और समर्थन जुटाने की प्रक्रिया कई दिनों तक चर्चा में रही। अंततः वाम दलों और VCK के समर्थन से सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ। यह पहली बार माना जा रहा है कि फिल्म जगत से आए विजय ने सीधे सत्ता की राजनीति में इतना प्रभाव दिखाया है। इसमें तमिलनाडु की पारंपरिक द्रविड़ राजनीति में नया समीकरण बना है। श्रोताओं, अगली बड़ी घटना भारत में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम लॉन्च होने की है। मई 2026 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम शुरू किया। इसे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। इस तकनीक की मदद से किसी भी क्षेत्र विशेष में भूकंप, बाढ़, भारी बारिश और अन्य आपदाओं की चेतावनी सीधे मोबाइल फोन पर भेजी जा सकेगी। उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्यों के लिए यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्रोता, उसके साथ ही अप्रैल 2026 में भारत के सेवा क्षेत्र में तेजी दर्ज की गई। घरेलू मांग बढ़ने से होटल, पर्यटन, परिवहन और अन्य सेवाओं में सुधार देखने को मिला। PMI की रिपोर्ट के अनुसार मार्च की तुलना में अप्रैल में विकास दर बेहतर रही। हालांकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी रही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात स्थिर रहे तो भारत की अर्थव्यवस्था को और गति मिल सकती है। श्रोताओं, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होने की घोषणा हुई। भारत सरकार ने अप्रैल 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने की घोषणा की। यात्रा जून से अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे का मार्ग फिर चर्चा में आया। कोविड और सीमा तनाव के बाद यह यात्रा लंबे समय से प्रभावित थी। यात्रा बहाल होने से धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार और सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रोताओं, साथ ही अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस परियोजना से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसे उत्तराखंड के आर्थिक विकास की बड़ी उपलब्धि मान रही है। मई 2026 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है। यह खबर चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच काफी महत्वपूर्ण रही। श्रोताओं, साथ ही उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2026 में सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एडवेंचर पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस आयोजन के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में उत्तराखंड को एविएशन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला है। राज्य में हेली सेवाओं, पर्वतीय एयर कनेक्टिविटी और पर्यटन आधारित उड्डयन सेवाओं के विस्तार को इसका प्रमुख कारण माना गया। चारधाम यात्रा और दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ाने की दिशा में यह उपलब्धि अहम मानी जा रही है। श्रोताओं, साथ ही देहरादून में आयोजित डिजिटल समिट के दौरान सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नैना एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो विशेष रूप से चारधाम यात्रा में मददगार साबित होगा। दरअसल हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित डिजिटल समिट के दौरान सुरक्षा और निगरानी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाले अत्याधुनिक नैना एआई सिस्टम को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इस उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड जैसे पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना है। ये स्मार्ट सिस्टम सार्वजनिक स्थानों पर

0: संदिग्ध व्यक्तियों की सटीक पहचान करने और हाईवे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर तुरंत अलर्ट भेजने में पूरी तरह सक्षम है। नैना एआई मुख्य रूप से रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए कार्य करेगा, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को तेजी से सूचना मिलेगी और समय रहते आवश्यक कार्यवाही संभव हो सकेगी। श्रोताओं, हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में अत्यधिक अस्थिर 219 लटकते हुए ग्लेशियरों यानी हैंगिंग ग्लेशियर की पहचान की गई है। दरअसल हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन के भीतर 219 संवेदनशील और अत्यधिक अस्थिर यानी लटकते हुए ग्लेशियरों की पहचान की गई है। लटकते हुए ग्लेशियर मुख्य रूप से पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर टिके होते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के कारण इनकी पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। इन अस्थिर ग्लेशियरों के अचानक विखंडन से विनाशकारी हिमस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ का गंभीर खतरा रहता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। अलकनंदा नदी भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गंगा नदी तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है और यहाँ किसी भी आपदा का सीधा प्रभाव मैदानी इलाकों तथा जल विद्युत परियोजनाओं पर पड़ेगा। भू वैज्ञानिकों ने इन संवेदनशील क्षेत्रों को नो गो जोन घोषित करने और किसी भी आपदा से बचाव हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली को तत्काल मजबूत करने की स्पष्ट सिफारिश की है। श्रोता, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद को नियंत्रित करने के लिए नए कानून का मसौदा तैयार किया। पहाड़ी क्षेत्रों की सांस्कृतिक पहचान और सीमित भूमि संसाधनों को बचाने के उद्देश्य से यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस विषय पर पूरे राज्य में सामाजिक और राजनीतिक बहस देखने को मिल रही है। श्रोताओं, साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू होने की घोषणा के बाद उत्तराखंड प्रशासन ने पिथौरागढ़ और लिपुलेख मार्ग पर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीमांत क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया है। इससे स्थानीय लोगों के रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के अवसर पर मई 2026 में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का पाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। इस बार सरकार ने यात्रा मार्गों पर डिजिटल पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच और ट्रैफिक प्रबंधन का विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। श्रोताओं, इसी बीच जोशीमठ भूधसाव क्षेत्र में पुनर्वास कार्य भी तेज हो गया है। जी हां, अप्रैल 2026 में जोशीमठ क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजा वितरण का कार्य तेज किया गया है। सरकार ने असुरक्षित भवनों को हटाने तथा सुरक्षित स्थानों पर आवास निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा लगातार भूमि की निगरानी भी की जा रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि आपदा प्रभावित लोगों को स्थायी राहत देने के लिए दीर्घकालिक योजना तैयार की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार ने पर्वतीय जिलों चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है। उच्च गुणवत्ता वाले सेब और अखरोट के पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पारंपरिक खेती के साथ नगदी फसलों और फल उत्पादन से ग्रामीण युवाओं की आय बढ़ाई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड का अखरोट और सेब देश के बड़े बाजारों में नई पहचान बना सकता है। श्रोता, इसी बीच दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। देश की यह सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में से एक है। श्रोता, यह एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबा है। इसके निर्माण से दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 6 से 7 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे रह गया है। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा बनाई गई है, जिसका हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। श्रोता, इसके साथ ही ज्ञान दर्पण का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी जयवीर सिंह को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की विशेष प्रस्तुति ज्ञान दर्पण। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर अनंत मणि त्रिवेदी की हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय है सरस्वती से सोशल मीडिया तक, महावीर प्रसाद द्विवेदी।

0: की प्रासंगिकता।
1: जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में समय समय पर अनेकानेक कवियों, लेखकों, उपाध्यायों, उपन्यासकारों, समीक्षकों, आलोचकों, शोधकर्ताओं तथा साहित्य सृजनकर्ताओं ने जन्म लिया है और समाज, वसुधा व मानव जाति के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व जीवन अर्पित कर दिया है। ऐसे ही महनीय आचार्य थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो अपनी लेखनी के बल पर तब और अब तथा आगे भी साहित्यकारों के मध्य प्रासंगिक हैं, जिनका महान व्यक्तित्व, अद्भुत कृतित्व, साहित्य साधना, समालोचना और सर्वांगीणता यह दर्शाती है कि सरस्वती की आराधना से सोशल मीडिया तक आज भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रासंगिकता बरकरार है। हिंदी साहित्य के महान विद्वान, अमर कलाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1864 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर नामक गांव में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिता पंडित राम सहाय द्विवेदी सेना में नौकरी करते थे। आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, इस कारण पढ़ने लिखने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। पहले घर पर ही संस्कृत भाषा और साहित्य पढ़ते रहे। बाद में रायबरेली, फतेहपुर तथा उन्नाव के स्कूलों में पढ़े, परंतु गरीबी ने पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश कर दिया। आचार्य द्विवेदी जी उसके बाद मुंबई चले गए। वहां उन्होंने तार का काम सीखा। बाद में जीपीआई रेलवे में 22 रुपये मासिक की नौकरी कर ली। अपने कठोर परिश्रम तथा ईमानदारी के कारण इनकी निरंतर पदोन्नति होती गई। धीरे धीरे ये 150 रुपये मासिक पाने वाले हेड क्लर्क बन गए। नौकरी करते हुए भी आचार्य जी ने अध्ययन जारी रखा। संस्कृत, अंग्रेजी तथा मराठी का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। उर्दू और गुजराती में भी इनकी अच्छी गति हो गई। मुंबई से इनका तबादला झांसी हो गया। आचार्य श्री स्वावलंबी और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कुछ दिनों के बाद किन्हीं कारणों से उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही इतने प्रभावपूर्ण थे कि उस युग के सभी साहित्यकारों पर उनका प्रभाव था। वे युग प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी साहित्य में वह युग द्विवेदी युग नाम से प्रसिद्ध हुआ। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी में यह महान साहित्यकार जगत को शोकमग्न छोड़कर परलोक सिधार गया। गर्व की बात है कि आज पारंपरिक ज्ञान से सोशल मीडिया तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रासंगिक है। जब तक विद्या, बुद्धि, विनम्रता, रुपये, पैसे आदि चीजें सिर्फ अपने या अपने परिवार के उपयोग में लाई जाती हैं, तब तक हम मात्र एक व्यक्ति रहते हैं, पुरुष रहते हैं। जब हम अपनी बुद्धि या अन्य अर्जित वस्तुओं का उपयोग समाज तथा साहित्य के लिए करना प्रारंभ कर देते हैं, तभी हम महत्ता की ओर उठने लगते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे सरस्वती के वरद पुत्र हैं, जो धैर्य, नम्रता, निर्भीकता, प्रत्युत्पन्न मतित्व, सहिष्णुता, प्रबल इच्छा शक्ति तथा सुललित रचनाकार आदि गुणों से संपन्न हैं। साहित्य सृजन में वे उदारता और प्रेम के प्रतीक हैं। द्विवेदी जी के प्रत्येक काम के पीछे उनकी बलवती इच्छा शक्ति का वेग छिपा है। महाकवियों से लेकर महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य चाणक्य, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रानंदन पंत आदि राष्ट्र कवियों तक युग ने जिसे अपनी जीवा पर लिख लिया, वह साहित्य का युग रचनाकार, समाज का आदर्श साहित्य सृजनकर्ता बन गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का व्यक्तित्व तथा रचना धर्मिता दोनों ही इतने प्रभावपूर्ण थे कि उस युग के सभी साहित्यकारों पर उनका सम्यक प्रभाव था। मां सरस्वती की कृपा से आचार्य द्विवेदी जी युग प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी साहित्य में वह युग द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक ओर आलोचना की नींव डाली तथा दूसरी ओर कवियों और लेखकों को व्याकरण सम्मत शुद्ध हिंदी भाषा लिखने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने नवीन छंदों की ओर कवियों का ध्यान दिलाया तथा लेखकों को लिखने के लिए खूब प्रोत्साहित किया। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का सर्वांगीण विकास तथा भाषा का संस्कार किया। वे एक भावुक कवि, कुशल लेखक, योग्य संपादक, महान आचार्य तथा श्रेष्ठ समाज सुधारक सब कुछ थे। उन्होंने हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का खूब विकास किया। उन्हीं के प्रयासों से हिंदी में जीवनी, यात्रा वृत्तांत, कहानी लेखन, उपन्यास, समालोचना, व्याकरण कोश, अर्थशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन तथा धर्म इत्यादि विविध विषयों का समावेश हुआ। आचार्य द्विवेदी जी की विलक्षण योग्यता, कार्य कुशलता और साहित्य सेवाओं से प्रसन्न होकर नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी ने आचार्य की पदवी से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन ने विद्या वाचस्पति की पदवी से विभूषित किया, सम्मानित किया। रचना संसार में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विलक्षण कार्य किया। उनकी मौलिक रचनाएं, अनुदित रचनाएं गद्य पद्य के रूप में साहित्य जगत को निरंतर पल्लवित और पुष्पित कर रही हैं। आचार्य द्विवेदी जी की मौलिक रचनाओं में अद्भुत आलाप, रसज्ञ रंजन साहित्य सीकर, विचित्र चित्रण, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्य संदर्भ आदि प्रमुख हैं। जबकि अनुदित रचनाओं में रघुवंश, हिंदी महाभारत, कुमार संभव, बेकन विचारमाला, किराता अर्जुनीय, शिक्षा एवं स्वाधीनता, वेणी संहार तथा गंगा लहरी आदि सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। अन्य मौलिक पद्य रचनाओं में देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जवली व्रतम, समाचार पत्र संपादन स्तवह, नागरी, कान्यकुब्ज अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन हिंदी काव्यमाला, कविता कलाप आदि प्रमुख हैं, जो 1892 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक लिखी गईं, जिनकी रचनाएं की गई। संस्कृत साहित्य का ऐसा कोई ग्रंथ द्विवेदी जी ने नहीं छोड़ा जिसका अनुवाद हिंदी गद्य या पद्य में न किया हो। उन्होंने पद्यों में महाकवि कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद किया, कुमार संभव का अनुवाद किया, साथ ही अन्य अनुवाद भी किए। गद्यों में पंडित राज जगन्नाथ के भामिनी विलास का अनुवाद किया, अमृत लहरी का अनुवाद किया, यमुना स्तोत्र का भावानुवाद किया, महाभारत की कथा का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया, रघुवंश, वेणी संहार, संस्कृत कवि भट्ट नारायण रचित नाटक का अनुवाद किया, मेघदूतम के साथ महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम का अनुवाद किया। इस तरह न जाने कितनी रचनाओं से हिंदी साहित्य का सुंदर श्रृंगार आचार्य द्विवेदी जी ने किया है। युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य एवं पद्य दोनों का संतुलित विकास किया। श्री भारतेंदु जी द्वारा जो पौधा लगाया गया था, द्विवेदी जी ने उसे अपने प्रभाव से पुष्ट ही नहीं किया, बल्कि आलोचना की कैंची से उसे छांट तरास कर सुंदर और संस्कृत रूप भी दिया। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की विविध विधाओं का जन्म हो चुका था, हिंदी गद्य का प्रचार भी प्रारंभ हो चुका था, किंतु हिंदी गद्य का स्वरूप अभी तक स्थिर नहीं हो पाया था। भाषा में व्याकरण संबंधी अनेक दोष थे। आचार्य द्विवेदी जी ने इन दोषों को समझा और हिंदी गद्य को शुद्ध, व्यवस्थित तथा परिमार्जित करने की न केवल बातें कहीं अपितु उसका बीड़ा भी उठाया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी कवियों के सामने व्याकरण सम्मत काव्य भाषा का आदर्श उपस्थापित किया। उनसे पूर्व हिंदी काव्य में ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य था। द्विवेदी जी ने खरी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने खरी बोली में काव्य रचना करने के लिए कवियों को खूब प्रेरित किया। कविवर मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जैसी खरी बोली के कवियों को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को ही प्राप्त है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार ठीक से संभाला। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य की जो सेवाएं की, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इसमें श्री द्विवेदी जी के आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित होते थे, जिनमें उस समय के लेखकों, कवियों तथा उनकी कृतियों की कटु आलोचना होती थी। इस प्रकार

0: उन्होंने एक ओर तो आलोचना की नींव डाली तो दूसरी ओर कवियों और लेखकों को शुद्ध व्याकरण सम्मत हिंदी लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नवीन छंदों की ओर कवियों का ध्यान दिलाया तथा लेखकों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का सर्वांगीण विकास तथा भाषा का संस्कार किया। आचार्य द्विवेदी एक भावुक कवि, कुशल लेखक, योग्य संपादक, महान आचार्य तथा श्रेष्ठ समाज सुधारक सब कुछ थे। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य का सर्वतोन्मुखी विकास किया। उन्हीं के प्रयत्नों से हिंदी में जीवनी, यात्रा, वृत्तांत, कहानी, उपन्यास, समालोचना, व्याकरण कोश, अर्थशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन तथा धर्म आदि विविध विषयों का समावेश हुआ। आचार्य श्री की विलक्षण योग्यता, कार्यकुशलता और साहित्य सेवाओं से प्रसन्न होकर नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी ने आचार्य की पदवी से तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ने विद्या वाचस्पति की पदवी से विभूषित किया था। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के समय में भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रासंगिक हैं। द्विवेदी जी की भाषा एवं शैली की बातें करें तो आपने सरल प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य रचना की है। संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू के आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करने में उन्होंने संकोच नहीं किया। उनकी वाक्य रचना सर्वथा हिंदी के व्याकरण तथा प्रकृति के अनुकूल है। संस्कृत भाषा के लंबे लंबे समासों से आपकी भाषा मुक्त है। द्विवेदी जी महान शैली निर्माता थे। उनकी शैली में उनका सुंदर व्यक्तित्व झलकता है। द्विवेदी जी के विषयों में श्री जगन्नाथ शर्मा ने कहा है कि साधारणतया विषय के अनुसार भाव व्यंजना में दुरूहता आ ही जाती है, परंतु द्विवेदी जी की लेखन कुशलता एवं भावों का स्पष्टीकरण एकदम स्वच्छ तथा बोधगम्य होने के कारण सभी कुछ सुलझती हुई लड़ियों की भांति पृथक दिखाई पड़ता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी एक महान शैलीकार थे। उनकी शैली में उनका व्यक्तित्व झलकता है। गद्य की शैली तथा भाषा का परिमार्जन कर उन्होंने एक युग निर्माता का कार्य किया था, जो सर्वथा स्तुत्य, वंदनीय तथा अभिनंदनीय है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी की हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय था सरस्वती से सोशल मीडिया तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रासंगिकता। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम में विविध कलाकारों के गाए गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे विविध कलाकारों के गाए गीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का श्रोताओं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, संगीत हमारे जीवन का हम सफर है जो हमारी वीरान दुनिया में रंग भरते हैं। तो आइए फिल्म संगीत की शुरुआत

0: सांवरिया फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शैल हाड़ा की आवाज में, समीर के बोल मोंटी शर्मा का संगीत था। श्रोताओं, गीतों का सिलसिला हम रखेंगे जारी, लेकिन पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
0: फिल्म संगीत में भूत फिल्म से अगला गीत आप सभी तक पहुंच रहा है मांचल गुजराल और अखिल सचदेवा की आवाजों में।

0: अगला गीत हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले पहुंचाते हैं ये जरूरी संदेश।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
0: लव यात्री फिल्म से अगला तराना है आतिफ असलम की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, तनिष्क बागची का संगीत।

फिल्म संगीत में कबीर सिंह फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत तुलसी कुमार और अखिल सचदेवा की आवाजों में। अखिल सचदेवा का मधुर संगीत, कुमार के बेहतरीन बोल।

0: फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा

0: पीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों

0: कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026, खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण

0: क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60-day

0: गीतों का सिलसिला हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
0: रजिया सुल्तान फिल्म से ये गीत आप सभी तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज में।

0: फिल्म संगीत में अगला गीत आप सभी तक पहुंचाने से पहले सुनवाते हैं ये संदेश।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा?
2: हाँ
1: क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है।
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब

0: बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
1: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दूसरा आदमी फिल्म से आइए सुनते हैं अगला गीत, जिसे लिखा है मजरूह ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के।

श्रोताओं, अब फिल्म संगीत में वक्त हो रहा है आपको आखिरी गीत सुनवाने का, लेकिन जाते जाते आपसे इतना कहेंगे कि आप सभी श्रोता खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही फिल्म संगीत में बातों बातों में इस फिल्म से आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, राजेश रोशन का संगीत, अमित खन्ना के खूबसूरत बोल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शेरी नशिश्त। प्रतिभागी कवि हैं जनाब अहमद नौशाद, मोहतरमा मुनिका मंतशा, जनाब मोहम्मद आसीन और सार मंजूर अहमद।
1: सामईन हजरात और मज़ शोराए कराम, आज आकाशवाणी देहरादून के चैनल से एक अजीम शान मुशायरा मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें शायरा और शोराए कराम तशरीफ़ लाए हैं। उनके इसमें ग्रामी इस तरह है, जनाब नौशाद अहमद नौशाद जो कोरदुआ से तशरीफ़ लाए हैं, और

0: मोहतरमा मुनिका मंतशा, आप भी देहरादून से ही तशरीफ लाई हैं, और जनाब मोहम्मद यासीन अहमद, आप रुड़की से तशरीफ लाए हैं, सार मंजूर अहमद कोटद्वार से हाजिर हुआ। तो लीजिए आज की इस शेरी नशिश आकाशवाणी देहरादून में ये मुशायरा मुनक़िद होने जा रहा है। इसकी शुरुआत हम इस तरह से करते हैं, गजल की शम्मा जलाने की शाम आई है, गजल की शम्मा जलाने की शाम आई है, कुछ आज सुनने सुनाने की शाम आई है। तो मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब नौशाद अहमद नौशाद को, आप कोटद्वार तशरीफ आए हैं इस मिसरे के साथ। मुझको यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, मुझको यूं ही नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाओ दाबे हैं बुजुर्गों के तफन आया। तो मैं गुजारिश करूँ जनाब नौशाद अहमद नौशाद से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें।
1: बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। एक मतले से अपने सफर का आगाज करता हूँ, आप लोग समाअत फरमाएं। यहाँ पर बेगरज आखिर किसी से कौन मिलता है, यहाँ पर बेगरज आखिर किसी से कौन मिलता है, जरूरत खींच लाती है खुशी से कौन मिलता है, जरूरत खींच लाती है खुशी से कौन मिलता है। चार मिसरे और समाप्त फरमाए के फकत एक दो नहीं चारों दिशाएं हार जाती हैं, फकत एक दो नहीं चारों दिशाएं हार जाती हैं, चरागे इश्क के आगे हवाएं हार जाती हैं, चरागे इश्क के आगे हवाएं हार जाती हैं, जिदों में आके तुम हमसे ताल्लुक तर्क मत करना, जिदों में आके तुम हमसे ताल्लुक तर्क मत करना, अनाए जीत जाएं तो वफाएं हार जाती हैं, अनाए जीत जाएं तो वफाएं हार जाती हैं। चार मिसरे और समाप्त फरमाएं, तुम्हारे साथ अगरचे हम मोहब्बत में नहीं होते, तुम्हारे साथ अगरचे हम मोहब्बत में नहीं होते, मुसलसल मुबतला जहनी अजियत में नहीं होते, मुसलसल मुबतला जहनी अजियत में नहीं होते, कभी भी दिल की और किस्मत की आपस में नहीं बनती। मिसरा देखें आप, कभी भी दिल की और किस्मत की आपस में नहीं बनती, जो दिल में होते हैं अक्सर वो किस्मत में नहीं होते,
2: क्या कह रहे हो, वाह वाह वाह वाह,
1: जो दिल में होते हैं अक्सर
2: वो किस्मत में नहीं होते।
1: चार में से और समाप्त फरमाए, उसके बाद ये गजल
0: आता करें
1: के अपने होठों पे हरदम सजाए मुझे, अपने होठों पे हरदम सजाए मुझे, तू गजल की तरह गुनगुनाए मुझे, तू गजल की तरह गुनगुनाए मुझे, अब तुझे मैं मनाना नहीं चाहता, अब तुझे मैं मनाना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ तू ही मनाए मुझे, मैं ये चाहता हूँ तू ही मनाए मुझे।
0: वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा।
1: ये गजल के मतलब यूं समझ फरमाए, सर को ढांकते हैं तो सर को ढांकते हैं तो पांव खुलने लगते हैं, सर को ढांकते हैं तो पांव खुलने लगते हैं, फैलने से पहले ही हम सिमट ले, फैलने से पहले ही हम सिमटने लगते हैं। हुस्ने तो मतलब समाज फरमाए कि अपने भी तो पल भर में,
0: अपने भी तो पल भर में
1: गैर लगने लगते हैं, अपने भी तो पल भर में गैर लगने लगते हैं, कुछ सवाल कर लो तो लोग बचने लगते हैं, कुछ सवाल कर लो तो लोग बचने लगते हैं, चार पैसे लोगों की जेब में जो आ जाएं, यासिर साहब
2: जी जी,
1: चार पैसे लोगों की जेब में जो आ जाएं तो खुदा के लहजे में बात करने लगते हैं, तो खुदा के लहजे में बात करने लगते हैं। और ये मशवरा भी है और शेर भी दिया आप समाप्त फरमाएं कि मत किसी से कह देना अपनी कोई कमजोरी,
0: मत किसी से कह
2: देना,
1: मत किसी से कह देना
2: अपनी कोई
1: अपनी कोई कमजोरी, लोग खुल के इज्जत

0: पे वार करने लगते
1: वाह
0: हैं,
1: वाह वाह,
0: लोग
1: बहुत उम्दा,
0: खुल के
1: बहुत उम्दा,
0: इज्जत पे
1: क्या कहने लगते,
0: वार
1: बहुत
0: करने
1: उम्दा जी,
0: लगते
1: वाह वाह वाह,
0: हैं,
1: नौशाद साहब, वाह वाह,
0: हम बदल गए हैं तो आपको है हैरत क्यों?
1: अच्छा हम बदल गए हैं तो
0: बहुत,
1: आपको है हैरत
0: हम
1: क्यों,
0: बदल गए हैं तो
1: आपको है
0: आपको है हैरत क्यों? कर गिरे पत्ते रंग बदलने
1: रंग
0: लगते
1: बदलने, वाह
0: हैं,
1: बहुत
0: क्या
1: उम्दा
0: बात,
1: शेर,
0: क्या बात,
1: अच्छा अच्छा है,
0: अच्छा शेर,
1: अच्छा
0: हम बदल गए हैं तो
1: शेर है,
0: आपको है हैरत
1: हैरत
0: क्यों?
1: क्यों,
0: टूट कर गिरे पत्ते
1: रंग बदलने,
0: रंग बदलने लगते हैं, असल में हम उस लम्हे आदमी नहीं रहते,
1: अच्छा
0: असल में हम उस लम्हे
1: आदमी नहीं रहे,
0: आदमी नहीं रहते, दूसरों को जब कमतर हम
1: हम समझने
0: समझने
1: लगते, वाह
0: लगते
1: वाह वाह,
0: हैं,
1: बहुत उम्दा,
0: बिल्कुल
1: वाह वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: बढ़िया बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया,
1: उम्दा, वाह वाह,
0: दूसरों को जब कमतर
1: हम समझने
0: हम
1: लगे,
0: समझने लगते हैं। और ये शेर मत फरमाए मंजूर साहब, कि ये
1: देख
0: है अपना पागलपन
1: ये है अपना पागलपन,
0: या के जख्म गहरा है,
1: वाह वाह,
0: ये है अपना
1: पागलपन
0: पागलपन
1: या के
0: या
1: जख्म,
0: के जख्म
1: जख्म
0: गहरा
1: गहरा है,
0: है, जिस पे रोना बनता है उस पे हंसने लगते हैं,
1: बहुत उम्दा,
0: बहुत
1: बहुत
0: बढ़िया
1: उम्दा, अच्छा शेर है, वाह
0: ये
1: वाह
0: है
1: वाह,
0: अपना
1: बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा,
0: पागलपन
1: बहुत उम्दा,
0: या
1: क्या
0: के
1: कहें,
0: जख्म
1: जख्म
0: गहरा
1: गहरा है,
0: है,
1: अच्छा शेर,
0: जिस पे रोना बनता
1: उस
0: है
1: पे हंसने,
0: उस पे हंसने
1: वाह वाह वाह,
0: लगते हैं, जिस पे रोना बनता है उस पे हंसने लगते
1: अच्छा
0: हैं,
1: अच्छा वाह
0: मकसद
1: वाह,
0: समाज फरमाए,
1: हाँ
0: बात जब कभी नौशाद
1: हाँ
0: गुलसिता पे हक की हो, बात जब कभी नौशाद गुलसिता पे हक की हो, हर किसी की आंखों में हम
1: हम
0: खटकने
1: खटक,
0: लगने
1: क्या
0: लगते
1: कहें, बहुत
0: हैं,
1: उम्दा
0: क्या
1: शेर,
0: बात,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: उम्दा, हर
1: वाह वाह
0: किसी
1: वाह
0: की
1: वाह, भाई
0: आंखों
1: बहुत
0: में
1: बढ़िया,
0: हम खटकने लगते
1: बहुत
0: हैं।
1: बढ़िया, सामईन हजरात, अभी नौशाद अहमद नौशाद अपने कलाम से नवाज रहे थे। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश गुजार हूँ मोनिका मंतशा से, इन मिसरों के साथ के बदन के सारे जजीरे शुमार करते हुए, बदन के सारे जजीरे शुमार करते हुए मैं थक गई हूँ समंदर को पार करते वाह वाह
0: हुए,
1: वाह वाह,
0: और एक शेर और, के चांद भी हैरान दरिया भी परेशानी में है, चांद भी हैरान दरिया
1: दरिया भी
0: भी परेशानी
1: परेशानी में
0: में
1: है,
0: है, अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है,
1: क्या
0: मैं
1: ख्याल है,
0: मोनिका मंतशा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें।
1: बहुत शुक्रिया मोहतरम जी, गजल का मतला समाप्त फरमाएं।
0: अदा करें।

0: वो सामने थे मुलाकात,
1: वो नहीं
2: अच्छा मोनिका
0: वो
2: जी,
0: नहीं
1: क्या कहने, बहुत
2: पाई।
1: सामने
2: बहुत
1: से
2: शुक्रिया,
1: मुलाकात,
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा
0: शुक्रिया।
2: अच्छा पढ़ रही
0: वो
2: हैं जी।
0: सामने थे मुलाकात, हो नहीं
1: और मीठा मीठा तरन्नुम भी
0: पाई।
1: खूबसूरत है आपका।
0: बहुत
1: वाह वाह
0: शुक्रिया
1: वाह
0: इनायत साहब।
1: वाह,
0: शेर देखिएगा,

0: नसीब वो बरसात हो नहीं पाई। एक शेर ये भी देखें, तलाश करती रही खुद को उम्र भर लेकिन
1: तलाश करती रही खुद को उम्र भर लेकिन।

0: हसी रात
1: हसी रात मैंने
0: को
1: खूबसूरत सी है।
2: वाह वाह
0: नहीं पाई,
1: बहुत सुंदर,
3: वाह वाह वाह वाह,
2: अच्छा पढ़ रही
0: अभी
2: हैं आप।
0: तलक वो हसी रात
1: ही
0: हो
1: नहीं वो नहीं
0: नहीं पाई। और मंतशा का ये मक्ता
1: जी
0: समाप्त
1: जी
0: फरमाए।
1: इनायत इनायत
0: हेमंतशा की तरह वो भी क्या दीवाने से,
2: हेमंतशा
1: की
2: की तरह
1: तरह
2: क्या
1: वो
2: वो
1: भी
2: भी
1: क्या
2: दीवाने
1: दीवाने
2: से।
1: से
0: हेमंत

0: खूबसूरत गजल
1: बहुत
0: आपने
1: शुक्रिया,
0: पढ़ी।
1: बहुत
0: वाह
1: शुक्रिया
0: वाह जी,
1: जनाब। और एक गजल के चंद शेर और
0: जी जी
1: समाप्त करना,
0: इनायत फरमाइए।
1: मतलब हाजिर करती हूँ।
2: इशारा
1: कैसा ये हाल इश्क में तुमने जनाब कर दिया।
2: कैसा ये हाल इश्क में तुम

0: गए लबों पे खामोशी, चेहरा
1: क्या
0: किताब
1: कहने
0: कर दिया।
1: मंत्री
0: बहुत
1: साहब,
0: शुक्रिया
1: वाह
0: जनाब,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह,
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें शेर, सोचा था मुस्कुराएगा

0: वाह क्या
1: लेकिन
0: वाह
1: वाह लेकिन बहार
0: वाह वाह
2: गुलशन खराब कर दिया
1: गुलशन खराब कर दिया बहुत
0: अच्छा जी जिंदाबाद
1: बहुत शुक्रिया बहुत
2: अच्छा पढ़ रही है अच्छा पढ़ रही है
1: देखिए अगला शेर के
2: इरशाद
1: क्यों

0: वाह वाह
1: ने
0: वाह,
1: दिया,
0: तो
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छा
1: शुक्रिया
0: पढ़े
1: आपका,
0: थे, बहुत अच्छा
1: बहुत
0: पढ़े थे।
1: शुक्रिया।
2: जनाब मोहतरमा मोनिका मंतशा अपने कलाम से सामाईन को महसूस फरमा रही थी।
0: अभी माशाल्लाह जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी निज़ामत जनाब मंजूर अहमद साहब मंजूर फरमा रहे हैं। इससे पहले भी जो बड़ा खूबसूरत कलाम, बड़ा खूबसूरत उनका लहजा, मोहतरमा मंतशा साहिबा, मैं
1: शुक्रिया।
0: उनके बाद दावत सुखन दे रहा हूँ, उनको दावत सुखन देता हूँ इन चार मिसरों के साथ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। वो चार मिसरे यूँ हैं कि राज थे जो पोशीदा दोस्तों के सीनों में, राज थे जो पोशीदा दोस्तों के सीनों में, आ गए सरे महफिल चंद ही महीनों में।
1: क्या
0: इस
1: बात
0: लबो
1: है,
0: लहजे के शायर जनाब मंजूर अहमद मंजूर साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ, वो अपना कलाम पेश फरमाएंगे।
2: आखिरी
0: पेश
2: दम है
0: फरमाएंगे।
2: कोई उससे कहे तेरे बगैर,
0: आखिरी दम है कोई
2: आखिरी दम
0: उससे कहे
2: है
0: तेरे
2: कोई उससे कहे
0: बगैर,
2: तेरे
0: तेरे
2: बगैर,
1: बगैर,
2: तेरे बीमारे मोहब्बत को शिफा मुमकिन नहीं।
1: वाह
2: वाह
0: वाह,
2: वाह वाह
0: तेरे
2: वाह,
0: बीमारे
2: शानदार,
0: मोहब्बत को शिफा
2: शिफा
0: मुमकिन
2: मुमकिन
0: नहीं।
2: नहीं। और शेर देखें कि खुद मसीहा दुश्मने जाहों तो फिर,
0: खुद मसीहा दुश्मने जाहों तो फिर,
2: खुद मसीहा दुश्मने जाहों तो फिर किस तरह बीमार फिर बच जाएगा मुमकिन
0: वाह वाह
2: नहीं।
0: वाह,
2: और से देखें कि जब खिजां तेरा मुकद्दर बन गया मंजूर, तो
0: जब खिजां
2: तेरा
0: तेरा
2: मुकद्दर
0: मुकद्दर
2: बन
0: बन
2: गया
0: गया मंजूर
2: मंजूर, तो
0: तो
2: फिर बहारों से हो तेरा सामना
0: मुमकिन
2: मुमकिन
0: नहीं,
2: नहीं।
0: मुमकिन
2: वाह
0: नहीं।
2: वाह, तो
0: बहुत
2: तरन्नुम
0: बढ़िया
2: से गजल पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ सामईन
1: जी
2: हजरात
1: जी जी
2: और
1: जी
2: शोरा इकराम से,
1: अता कर,
2: कि
1: अता कर।
2: मतलब यूं है कि कुछ खैर

0: क्या कह के तसल्ली दूं तुझको दिले सौदाई।
1: मंजूर साहब क्या कह के तसल्ली दूं तुझको दिले सौदाई,
0: क्या तसल्ली दूं तुझको दिले सौदाई।
1: बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मंजूर साहब, अच्छा क्या तरन्नुम है आपका।
0: खबर उनकी और शेर मुलाजा कीजिए।
1: इरशाद इरशाद
0: के दरियाए मोहब्बत का ये राज नहीं खुलता,
1: दरियाए मोहब्बत का ये राज नहीं खुलता।

0: किस समत है कम
1: हाय किस सिमत
0: पानी,
1: है गहराई,
0: किस सिमत है
1: क्या क्या
0: गहराई
1: शेर है
0: में,
1: भाई,
0: वाह
1: शेर है
0: वाह
1: भाई,
0: किस
1: लाजवाब।
0: सिमत
1: भाई एक तो शेर
0: है,
1: ऊपर से तरन्नुम आपका जो है,
0: वाह
1: सच
0: किस
1: में लाजवाब,
0: सिमत है
1: वाह वाह
0: कम
1: तरन्नुम बड़ा सहरंगेज है
0: पानी।
1: आपका,
0: आजा
1: वाह
0: आजा,
1: वाह। पहले से ऐसा
0: किस
1: पढ़ते आप?
0: सिमत है कम पानी, किस सिमत है
1: वाह वाह वाह, अच्छा है
0: गहराई,
1: ये।
0: कुछ खैर खबर की।
1: वाह
0: और सर
1: वाह
0: देखे कि
1: वाह,
0: जिस जख्म को वो छू ले, बतौर खास तवज्जो चाहूंगा शेर पर, कि जिस जख्म को वो छू ले फूलों सा महक
1: क्या
0: जाए।
1: भाई क्या
0: वाह
1: बात है,
0: जख्म को
1: वाह
0: वो छू
1: वाह वाह
0: ले
1: वाह,
0: फूलों
1: फूलों
0: सा
1: सा
0: महक
1: महक
0: जाए,
1: जाए।
0: जिस जख्म को वो छू ले फूलों
1: क्या बात है, फूल

0: नौजवान
1: मसीहाई।
0: बहुत अच्छा पढ़ रहे
1: हैं। आखिरी शेयर कर रहा हूँ कि इस रस्म मोहब्बत के अंदाज निराले हैं।
0: इस रस्म मोहब्बत के

0: हंसने की खता की थी,
1: रोने की सजा पाई,
0: रोने की सजा पाई, हंसने की खता की थी,
1: रोने
0: की
1: सजा पाई,
0: कुछ खैर खबर उनकी लाती नहीं पुरवाई, क्या कह के तसल्ली दूं तुझको दिले सौदाई, कुछ खैर खबर की। अब इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। आप जो हैं रुड़की से तशरीफ लाएं, मोहतरम जनाब यासीन अहमद साहब, बेताब आपका तखल्लुस है। इन अशारों के साथ उनको दावत सुखन दे रहा हूँ कि मत पूछिए दामन क्यों अशकों से भिगोया है, मत पूछिए दामन क्यों अशकों से भिगोया है, एक दाग पुराना था उस दाग को धोया है। तो मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब यासीन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजे।
2: कि वक्त जाने कब बदल दे अपने तेवर क्या पता,
1: वक्त जाने कब बदल दे अपने तेवर क्या पता,
2: वक्त जाने कब बदल दे अपने तेवर क्या पता, चलते चलते कब कहाँ लग जाए ठोकर क्या पता, चलते चलते कब कहाँ लग जाए ठोकर क्या पता, वक्त जाने कब बदल दे अपने तेवर क्या पता, चलते चलते कब कहाँ लग जाए ठोकर क्या पता, और आज का हर एक लम्हा आओ जी भर कर जिए, आज का हर एक लम्हा आओ जी भर कर जिए, कल नजर के सामने कैसा हो मंजर क्या पता, कल नजर के सामने कैसा हो मंजर क्या पता। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश नवाजिश।
1: अच्छा पढ़ रहे हैं।
2: और शेर अर्ज किया है कि यूं तो वो हंस हंस के बातें मुझसे करता है मगर,
1: अच्छा
2: यूं तो वो हंस हंस के बातें मुझसे करता है मगर, चल रहा है जाने क्या क्या उसके अंदर क्या पता, चल रहा है जाने क्या क्या उसके अंदर क्या पता। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, नवाजिश नवाजिश। कि यूं तो वो हंस हंस के बातें मुझसे करता है मगर, चल रहा है जाने क्या क्या उसके अंदर क्या पता,
1: लाजवाब इसका अंदाज,
2: और चल रहा है जाने क्या क्या। शुक्रिया मेहरबानी। के छोड़कर गुलशन को हम सहरा तलक तो आ गए,
0: छोड़कर
2: गुलशन को हम सहरा तलक तो आ गए, अब कहाँ ले जाएगा आगे मुकद्दर क्या पता, छोड़कर गुलशन को हम सहरा तलक तो आ गए, छोड़कर गुलशन को हम सहरा तलक तो आ गए, अब कहाँ ले जाएगा आगे मुकद्दर क्या पता, अब कहाँ ले जाएगा आगे मुकद्दर क्या पता, और कब किसी तकदीर का वो बंद ताला खोल दे, कब किसी तकदीर का वो बंद ताला खोल दे, कब किसी कतरे को वो कर दे समंदर क्या पता।
0: शुक्रिया।
2: कब किसी तकदीर का वो बंद ताला खोल दे, कब किसी तकदीर का वो बंद ताला खोल दे, कब किसी कतरे को वो कर दे समंदर क्या पता, कब किसी कतरे को वो कर दे समंदर क्या पता। और एक गजल के और चंद अशार
0: हटा के,
2: इस दिल का तलबगार बहुत देर से आया।
3: अच्छा बहुत बढ़िया।
2: देखिए अर्ज क्या है, मतलब कि इस दिल का तलबगार बहुत देर से आया, तू जिंदगी में यार बहुत देर से आया, इस दिल का तलबगार बहुत देर से आया, तू जिंदगी में यार बहुत देर से आया, और किरदार सबके शेरज क्यामत देखेंगे खूबसूरत शेर, के किरदार सबके तेरी कहानी में आ गए,
1: किरदार

0: बातिल की
1: बातिल
0: तरफदारी में
1: की तरफदारी में आए
0: आए
1: हैं
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: लोग,
0: लोग,
1: मेरा ही तरफदार बहुत देर से
2: बहुत
1: आया।
2: देर से आया।
0: अच्छा पढ़ रहे
1: बहुत
0: हैं
1: कि
0: लोग,
1: बातिल की तरफदारी में आए हैं बहुत लोग,
3: वाह
1: बातिल की तरफदारी में
3: आए
1: आए
3: हैं
1: हैं
2: हैं
1: बहुत
2: बहुत
1: लोग,
2: लोग,
1: मेरा ही तरफदार जरा बहुत देर से
3: बहुत
1: आया,
3: देर से आया। वाह
1: मेरा ही तरफदार
0: बहुत
1: बहुत देर
0: देर
1: से
0: से
1: आया।
0: आया।
1: और बेताब मक्ता अर्ज कर रहा हूं
0: जी
1: कि
3: जी
1: बेताब हिजरे यार में जिंदा रहे मगर,
3: हाँ
0: बेताब हिजरे
1: बेताब
0: यार
2: हिजरे
0: में
2: यार
1: हिजरे यार में जिंदा रहे
3: जिंदा रहे
1: मगर,
2: मगर
1: दिल को मेरे करार
2: करा
1: बहुत
2: बहुत
1: देर
2: देर
1: से।
2: से
1: बहुत
3: क्या
1: शुक्रिया
3: बात,
2: मक्ता
1: नवाजी
2: बहुत
1: कि
2: मक्ता
1: बेताब
2: चांदा
1: हिजरे यार में जिंदा रहे मगर,
0: जी
1: बेताब हिजरे यार में
0: जिंदा रहे
1: जिंदा रहे मगर,
2: मगर
1: दिल को मेरे करार
2: करार
1: बहुत
2: बहुत
1: देर से
2: देर है।
1: आया।
3: वाह वाह वाह वाह। अच्छा
1: और ये शेर बहुत कि जो रास्ता कभी सुल्हा का नहीं अपनाते,
3: वाह,
2: जो रास्ता कभी सुल्हा
0: सुल्हा का
2: का
0: नहीं
2: नहीं अपना,
1: जो रास्ता कभी सुल्हा का नहीं अपनाते वो खानदान अदावत में मारे जाते।
2: बहुत
3: वाह
2: खूब,
3: वाह वाह।
1: जो रास्ता
0: कभी सुल्हा
1: कभी
0: का,
1: सुल्हा का नहीं अपनाते वो खानदान अदावत में मारे जाते हैं, और जो अपना हक भी भिखारी की तरह मांगते हैं,
2: बहुत खूब,
0: जो अपना
3: वही
0: हक भी भिखारी की तरह मांगते
1: जो
0: हैं,
1: अपना हक भी
3: भिखारी
1: भिखारी की
3: की
1: तरह
3: तरह,
1: मांगते
2: बहुत
1: हैं,
2: उम्दा,
1: वो लोग अपनी हिमाकत में मारे जाते
2: बहुत
0: अच्छा
3: हाँ।
0: है साहब।
1: कि जो अपना हक भी भिखारी की तरह मांगते
0: बात
1: हैं,
0: साहब, बहुत
1: जो
0: खूब बांधा
1: अपना
0: आपने हिमाकत
1: शुक्रिया
0: को,
1: शुक्रिया
3: सही बात,
0: अच्छा बांधा
1: जो अपना
3: बहुत,
1: हक भी भिखारी की तरह मांगते हैं वो लोग अपनी हिमाकत में मारे जाते हैं।
2: बहुत। अभी आप आकाशवाणी देहरादून से शेरी नशिस्त, एक अजीम उस्सान जो मुशायरा मुनक़िद हुआ उसको आप महसूस फरमा रहे थे। इसमें जो शायरा और शोरा हजरात तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं नाम फिर दोबारा जिक्र कर दूं। मोहतरम जनाब नौशाद अहमद नौशाद, आप कोटद्वार से तशरीफ़ लाए, और जनाब मोहतरमा मोनिका मंतशा, आप भी देहरादून से तशरीफ़ लाई हैं, और मोहतरम जनाब यासीन अहमद, आप रोड़की से तशरीफ़ लाए हैं, और मैं खाकसार मंजूर अहमद मंजूर कोटद्वार से हाजिर हुआ। इस नशिस्त का को इख्तिताम पर पहुंचती है और आज का मुशायरा यहीं पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेरी नशिस्त। प्रतिभागी कवि थे जनाब अहमद नौशाद, मोहतरमा मुनिका मंतशा, जनाब मोहम्मद आसीन और सार मंजूर अहमद। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है, लेकिन मेरे प्यारे श्रोताओं, ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। जी हाँ, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में एक बार फिर मैं सुषमा जोशी आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। 7088000731 यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर। रोजाना की तरह इस नंबर पर भेज दीजिए अपनी फरमाइश। नंबर एक बार पुनः सुन ले, 7088000731। आप सभी के खुशहाल और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और जो हमारे नियमित श्रोता हैं उनकी फरमाइश हम तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है, तो बिना किसी देरी के फरमाइशी गीतों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। और बढ़ते हैं कार्यक्रम में पहली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है गंज डुंडवारा से शमशूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। हमें फरमाइश लिख भेजी है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हमारे प्यारे श्रोता हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख।

इसी के साथ ही करूला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और सुएब खान। फरमाइश हम तक पहुंची है शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर मोहम्मद जैन, जन्नत और विष्णु अग्रवाल जी। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है राजनगर कांति निकेतन कुशेश्वर से कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में लखनऊ ऐशबाग से हमें फरमाइश लिख भेजी है मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, रश्मि गुप्ता और नीलम गुप्ता। ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश हमें लिख भेजी है। आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। ये अगली फरमाइश है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा। इसी के साथ ही प्रोग्राम में हमें मैसेज लिख भेजा है शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। हमारी अगली फरमाइश करता है आप है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एस के पप्पी खुराना। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंचाई है गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया ने। हमें फरमाइश लिख भेजी है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेही खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद शिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। हमें फरमाइश लिख भेजने वाले श्रोता हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। इसी के साथ ही प्रोग्राम में हमें फरमाइश भेजी है बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार। ये अगली फरमाइश है गांव हरुहीड़ चांडील झारखंड से तुलसीदास महोतो, कल्पना महोतो, मनोरमा महोतो, मन मोहिनी महोतो, दीनबंधु महोतो। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंचाई है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। हमें फरमाइश लिख भेजी है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये अगली फरमाइश है फजिलका पंजाब से खेड़ा परिवार, आप है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वानी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है चंडीगढ़ सिटी से शेफ आली, सैफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। हमें फरमाइश लिख भेजी है संभलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। ये अगली फरमाइश है सेक्टर 5 कुंडी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और प्यारी बीबी गर्वी। ये अगली फरमाइश हम तक पहुंची है नर्मदा पार्क मंगल बीड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। हमें फरमाइश लिख भेजी है जमशेदपुर झारखंड सुपाही शाही गांव से निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, देवेन जी। और ये अगली फरमाइश है बड़ा बाम्बो सुपाही साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा, दीपाली और देवेन जी। ये अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है पद्मा टॉकीज नेपा नगर MP से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। ये अगली फरमाइश है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा,
सायना शर्मा और निवान।

शर्मा, हमें फरमाइश लिख भेजी है। ये अगली फरमाइश है रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से, प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके। ये अगली फरमाइश है मुक्कम पोस्ट फूलचिंचोली, तालुका पंढरपुर सिटी से, जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज़ मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नसीर मुलाड़ी, चाचा चाची और इनका पूरा ही परिवार। तो आइए, आप सभी की फरमाइश पर स्वीकार किया मैंने फिल्म से ये पहला गीत सुनवाते हैं आपको, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

श्रोताओ, रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये दिन के शोर को थामकर सुकून भी लाती है। यही तो वो खूबसूरत समय होता है जब हम अपने ख्वाबों से मिलते हैं और अपने दिल की बातें सुनते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से, और प्रोग्राम में ये फरमाइश हमें लिख भेजी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शहर दरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। ये अगली फरमाइश है सहारनपुर से मोहम्मद साजिद अब्बाजी, शमीम आशमा शमा साहिबा अब्बाजी, मोहम्मद बिलाल अब्बाजी, खुशी मंतशा, बेबी इस्माइल। हमें फरमाइश लिख भेजी है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौशल। ये अगली फरमाइश है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबनार अंसारी और आलिया अंसारी। हमें फरमाइश लिख भेजी है काठ गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से राजेश खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना, एमी। ये अगली फरमाइश है श्री शिब्बन हैरी बेल नैनीताल से। हमें फरमाइश लिख भेजी है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, और केथल हरियाणा से प्रोग्राम में हमसे जुड़े हैं मधु नायक। हमें फरमाइश लिख भेजी है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ये अगली फरमाइश है बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। और दौलतबाग मुरादाबाद से प्रोग्राम में हमें मैसेज कर रहे हैं अंसार हुसैन और समीर मलिक। ये अगली फरमाइश है आप है देहरादून उत्तराखंड से नीतिका वोहरा। हमें फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा ने। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है अनारकली बाजार जगराहू से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। ये अगली फरमाइश है मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताहुर रहमान और शेख हबीबुर रहमान। ये अगली फरमाइश है कृष्ण की नगरी मथुरा से शबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। ये अगली फरमाइश है गांव फ्रांसी हिसर से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। हमें फरमाइश लिख भेजी है सिओहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीम और कादिर चौधरी। ये अगली फरमाइश है तेलंगाना से छोटा पूरन, पृथ्वी, बाला प्रसाद, सूरज बाली और भानुराज। ये अगली फरमाइश है सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया। हमें फरमाइश लिख भेजी है कॉलोनी करगेना बरेली यूपी से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवर्ती भारती, खनक, शुगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रीथव सिंह। ये अगली फरमाइश है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा यूपी से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, शाइना फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी प्यारी मुस्कान। हमें फरमाइश लिख भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। ये अगली फरमाइश है करेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। हमें फरमाइश लिख भेजी है करणवीर हाउस भूचो कीचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह

जोड़ा मंजीत कौर, जोड़ा करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजोत। ये अगली फरमाइश है नीलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। इसी के साथ ही मलकापुर से हमें फरमाइश लिख भेजी है नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेरकर। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंचाई है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिद्दा, छिंदा जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये अगली फरमाइश है जो हमें लिख भेजी है आप है तेलपुर से सुमन और पूनम। इसी के साथ अगली फरमाइश है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान, सचिन युवान और आर के राजा। हमें फरमाइश लिख भेजिए जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांगड़े। ये अगली फरमाइश है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। ये अगली फरमाइश है व्हाइट फील्ड बेंगलोर से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और इसी के साथ रामगढ़ कैंट से आप हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। इसी के साथ श्रोताओं सुनवाते हैं आपको प्रोग्राम में अगला फरमाइशी गीत जूली फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, हर रात अपने साथ एक खूबसूरत चांद और अनगिनत तारे लाती है, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हर अंधेरे के बाद भी रोशनी मुमकिन है। जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है परी महल कासगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, एम असलम सैफी, इल्मा खान और मास्टर जाहिद अली। जी हाँ, आपका नाम हमने शामिल कर लिया है और मुझे उम्मीद है आपकी अब शिकायत भी दूर हो गई होगी। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय वर्मा, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। हमें फरमाइश लिख भेजी है गाँव कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। हमें फरमाइश लिख भेजी है नया पारा भिरई ज़िला बालोद छत्तीसगढ़ से बरसत कुमार ठाकुर, सरोज बाई ठाकुर, ईश्वर राज पप्पू ठाकुर और साथ में है प्रोग्राम में जो हमें मैसेज कर रहे हैं जमशेदपुर कदमा से कुमारी प्राची ठाकुर, देविका ठाकुर, साधना और मोना ठाकुर। हमें फरमाइश लिख भेजी है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा, असद, अरहान और मोहम्मद आलम हाशमी। ये अगली फरमाइश है करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। इसी के साथ ही आप है सिंधौली बरेली से जीशान वारसी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप लोगों से हमारा नाता ऐसा बन जाता है कि जैसे बरसों की जान पहचान हो, है ना? और यही तो सबसे प्यारा नाता और सबसे गहरा रिश्ता होता है। जी, इसी के साथ अगली फरमाइश है पटियाला रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तोयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और परिवार के सभी सदस्यगण। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से आप है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। हमें फरमाइश लिख भेजी है मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बाजी, शाहनवाज अब्बाजी, शहनाज अब्बाजी, नवीद हसन अब्बाजी, सुहेल हसन अब्बाजी, रशीद वारसी, अनम अब्बाजी और यशफ अब्बाजी। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है आप हैं गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान अंसारी, उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और शमशुल कमर राही। हमें फरमाइश लिख भेजी है कस्बा चिलकाना ज़िला सहारनपुर से ज़रीफ़ अंसारी, नईम अंसारी और डॉक्टर अमीर मुन्ना नजीम। ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुँची है आप हैं सुभाष पार्क नवीन सहदाबा दिल्ली से, किशु आप लिख रहे हैं, नीलम, स्वाति, किशन वंजानी और किशु, नीशु और छोटी गुड़िया टुक टुक। ये अगली फरमाइश है व्हाइटफील्ड बेंगलोर से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यंदी भूषण, संस्कृति और पौरुष। ये फरमाइश है गांव जाखोद राजस्थान से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। पटेल नगर मौलाउट से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया, आरजू जजूरिया और गुड्डू। ये अगली फरमाइश है मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान और अफजर अली नगमा नाज मंसूरी। अगली फरमाइश है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोकर फातिमा। ये अगली फरमाइश है आप हैं नर्मदा पार्क मंगलवीड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। हमें फरमाइश लिख भेजी है

जिशान मंसूरी, आयान मंसूरी, राशिद मंसूरी, आप हैं जलालाबाद शामली यूपी से। अगली फरमाइश करता है हमारे कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द। ये अगली फरमाइश है राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर और आपका पूरा ही रामेकर परिवार। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान और समरीन परवीन। ये अगली फरमाइश है राहट गांव कैंप से हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका। हमें फरमाइश लिख भेजी है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यगण। इसी के साथ ही श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम फरमाइशी गीत।

0: इसी गीत के साथ ही मेरे प्यारे सभी श्रोताओं, आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही मुझे यानी अपनी दोस्त सुषमा जोशी को दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। रात्रि के 11 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत

का उत्सव नहीं है बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.